0: the continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the Women Commission, the Mahila Thana, the Human Rights Commission, the Office of the Commissioner of the Police, we were made to run from pillar to post. And it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered. That too in a very shoddy manner. Thereafter, we have been witnessing the grant of bail almost uncontested, the proceedings conducted under undue pressure in the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time, from 9:30 to 5 till in the evening, the courts are getting changed. There must be some certain reason behind it.
1: Navnidhi ji, main aapke paas aana chahungi. परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियां थी। त्विषा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
2: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीजें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं।
1: जी,
2: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे गलत डिसीज़न हो जाता है कई बार, इसको आप जो है हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे, जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है और मैं इसमें आज हिचककर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो एमपी के लोकायुक्त थे, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाएँ। अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये गॉड PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया।
3: In a major boost to healthcare infrastructure in rural Bihar, Adani Group Chairman Gautam Adani, alongside Dr. Preeti Adani, Chairperson of the Adani Foundation, inaugurate the Adani Akhand Jyoti Eye Hospital at Mastichak in Saran District. Take a look at the special report.
4: In a major push for rural healthcare in Bihar, the Adani Group has launched a 150 crore rural vision care initiative in Saran. Chairman Gautam Adani performed the groundbreaking ceremony for the initiative, which is being developed in partnership with Akhand Jyoti Eye Hospital.
5: अखंड ज्योति के साथ में जो हमारा नाता ये लास्ट तीन महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका कैसे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं, और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटिया लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशन इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा।
4: About 70 kilometers from Patna, the project is designed to deliver affordable eye care to undeserved communities while also creating a strong rural healthcare and training network. The initiative aims to significantly improve access to treatment in remote regions.
5: Adani Group ka ek mantra bhi raha hai, the business ke saath saath mein, ki seva hi sadhana hai. Aur seva hi sadhne ke mantra ke saath saath हम हमारा हर प्रयास इस तरह से रहेगा कि खाली बिजनेस के लिए हम यहाँ नहीं आए, उसके साथ साथ में हम सेवा करते हैं तो वो हमारे को अंदर की खुशी और मिले।
4: The project adds to the Adani Foundation's expanding vision care program, which has already carried out nearly 2 lakh screenings across 11 states ahead of completing 30 years this August. With a focus on rural healthcare and skilling, the project marks a significant step in expanding medical access in Bihar. Bureau Report, NDTV.
3: We are stepping into a very short break. News and updates continue on the other side.

0: assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
1: Illegal migrant, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी प्रतिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नकार।
2: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
3: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
4: ओडिशा का है, जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
5: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ इंडस्ट्री।
6: द पीपल ऑफ केरला अंडरस्टूड द रियल पॉलिटिक्स ऑफ सीपीएम एंड आई लेफ्ट द डेमोक्रेटिक फ्रंट।
7: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: तहत हत्या हुई है, और मैं इसमें आज हिचक कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ, इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो एमपी के लोकायुक्त हैं, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह। और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाए। अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की, जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया।
1: मीनवाइल माय कॉलीग दिव्यांकर हैज फाइल्ड अ ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स हाउस इन नोएडा। हियर्स व्हाट ही फाउंड।
2: भोपाल में रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह की बहू तुषा शर्मा के सुसाइड के मामले में नए नए जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं, और NDTV की टीम की मौजूदगी तुषा शर्मा के जो ग्रेटर नोएडा वाला घर है उसके ठीक बाहर है, और मेरे ठीक पीछे जो ये सोसाइटी आप देख पाएंगे 16th Avenue गौर सिटी 2, इसी सोसाइटी में जो के ब्लॉक है वहाँ पर तुषा शर्मा अपने माता पिता के साथ रहती थी। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तुषा ने जो 11-12 मई की रात में भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 31 साल की तुषा शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और जिसके बाद मायके पक्ष ने उसकी सास रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह और जो पति तुषा के हैं समर सिंह पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। और जो शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उसमें हैंगिंग बताई गई है वजह है जिसके चलते तुषा की मौत हुई है, और कई जगहों पर शरीर में चोट भी जो है वो भी मिली है। और ससुराल पक्ष ने अंतिम संस्कार के लिए शव मांगा तो मायके पक्ष यानी तुषा के जो परिवार वाले हैं माता पिता हैं उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। और आपको बता दें कि तुषा मूल रूप से जो नोएडा है यहीं पर बीते 15 सालों से अपने माता पिता के साथ रह रही थी, और एक साल पहले जो शादी है उनकी भोपाल में हुई थी, रिटायर्ड जज के परिवार की वो बहू थी, लेकिन किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई ये लगातार सवालों के घेरे में है। इसी को लेकर तुषा शर्मा के जो पिता हैं वो ससुराल वालों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से लगातार तुषा को प्रताड़ित किया जा रहा था, और जिसके चलते तुषा ने जो सुसाइड जैसा कदम है वो उठाया।
1: Well, you know, the investigation into the death of Tusha Sharma is now focusing intensely on the final 15 minutes before she was declared dead. According to her family, Tusha called her mother at 10:05 p.m. on the 12th of May and spoke about alleged harassment at her matrimonial home. Her brother says the call disconnected abruptly after Tusha's husband entered the room, and what happened next is now central to this case. The family says they repeatedly tried contacting Tusha, her husband and other family members, but they received no response initially. But at around 10:15 p.m., the in-laws allegedly answered the call. The family says they urged them to immediately check on Tusha. Then at approximately 10:20 p.m., the family was informed that Tusha was not breathing. She was later taken to a hospital and declared dead on arrival. Police have registered a case against the husband and mother-in-law under charges including dowry harassment and abetment to suicide. Investigators, meanwhile, are now examining call records, digital evidence, also forensic findings, to establish whether the timeline and statements actually align consistently. And of course, beyond the investigation itself, this case is once again raising disturbing questions around alleged harassment within marriages, delayed intervention, and whether warning signs communicated privately are being recognized too late. My colleague Harpreet is tracking the latest for us. She joins us live at the moment. Harpreet, we're given to understand investigators are now closely examining the final 15-minute timeline before Twisha Sharma's death.
3: अब बिल्कुल देखिए ट्यूशा के परिजनों का भी यही कहना है कि बहुत जल्दबाजी में ये पोस्टमार्टम किया गया है और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उन्हें भरोसा नहीं है। ये पोस्टमार्टम भोपाल एम्स में किया गया है। मौत की वजह बताई गई है कि उसके गले में फंदा लगा था और उसने खुद फंदा लगाकर आत्महत्या की है। परिजन पिछले 7 दिन से यही मांग कर रहे हैं कि ट्विशा का एक और पोस्टमार्टम यानी सेकंड पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में करवाया जाए जिसमें उनको सही रिपोर्ट की उम्मीद है। उनका कहना है कि जो ससुराल वाले हैं वो कह रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कह रही है कि ट्विशा ने आत्महत्या की है, उसने फंदा लगाकर खुद को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन ट्विशा के परिजनों का कहना है कि ये थ्योरी गलत है। ट्विशा को मारा गया है, उसकी बॉडी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मल्टीपल इंजरीज भी मिली हैं, यानी कि पहले उसे मारा पीटा गया और बाद में जब उसकी मौत हो गई तो फांसी के फंदे पर चढ़ाकर इसे आत्महत्या बता दिया गया। इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि ट्विशा की मौत 12 मई को हुई थी और आज तक उसका शव भोपाल एम्स के मोर्चुरी में रखा हुआ है। परिजनों ने अभी तक शव नहीं लिया है। उनका कहना है जब तक न्याय नहीं मिलेगा, पोस्टमार्टम दिल्ली एम्स में करवाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तब तक वो ट्विशा का शव भोपाल एम्स मॉर्चुरी से नहीं लेंगे। 7 दिन बीत चुके हैं और भोपाल एम्स के डॉक्टर्स ने भी पुलिस को कहा है कि बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो सकती है। ऐसे में परिजनों को कहा जाए कि वो ट्विशा का शव लें और उसका अंतिम संस्कार करें। फिलहाल आज ट्विशा के पति की अग्रिम याचिका जो जमानत की लगी है उस पर सुनवाई होनी है और ये उम्मीद भी की जा रही है कि पुलिस भी कोर्ट में अपील कर सकती है कि ट्विशा के परिजन उसकी डेड बॉडी भोपाल एम्स से लें और उसका अंतिम संस्कार करें। तो फिलहाल आज देखना होगा कि क्या ये अनुमति पुलिस की तरफ से परिजनों को दी जाएगी, इसके साथ ही क्या उसके पति को आज जमानत मिलेगी या नहीं, या फिर सेकंड पोस्टमार्टम की अनुमति ट्विशा के परिजनों को मिलेगी। जी
1: well, as Harpreet is reporting from Bhopal, Twisha's family is raising questions about the postmortem that's already been conducted, requesting for a fresh one to be conducted at Ames, Delhi. Harpreet, meanwhile, we are given to understand the family has alleged pressure surrounding termination of a pregnancy and also the transfer of financial assets.
3: बिल्कुल देखिए परिजनों का यही कहना है कि वो बिल्कुल भी तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक कि सेकंड पीएम की उन्हें रिपोर्ट नहीं मिल जाती, अनुमति नहीं मिल जाती। जब अनुमति मिलेगी, अगर सेकंड पीएम होगा तो उसकी जो रिपोर्ट होगी उसके बाद वो अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन वो किसी भी बात को, ना पुलिस ना ही शासन की बात को मानने के लिए कल उन्होंने मुख्यमंत्री के OSD से भी मुलाकात की थी, लेकिन परिजन किसी भी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जब तक सेकंड पीएम की अनुमति नहीं मिलेगी वो ट्विशा का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। उसकी डेड बॉडी अभी भी भोपाल एम्स की मॉर्चुरी में रखी हुई है। पेच यहीं पर फंस रहा है। उम्मीद है कि आज पुलिस कोर्ट में अपील कर सकती है, जिसके बाद कोर्ट निर्देश ट्विशा के परिवार को दे सकता है कि वो डेड बॉडी ले जाएं। लेकिन देखने वाली बात है कि आज कोर्ट की तरफ से क्या निर्देश मिलेंगे।
1: Harpreet, as always, thank you so much for breaking down the latest details for us. We will of course revert to you for regular updates. Well, as this investigation into Twisha Sharma's death intensifies, investigators are now trying to answer a series of critical unanswered questions. The first one revolves around timing. What exactly happened between 10:05 p.m. when Twisha last spoke to her mother and 10:20 p.m. when the family says they were informed she was not breathing? Police are now examining call records, statements and also forensic evidence to reconstruct those final minutes. Then comes the post-mortem findings. The report mentions death due to antemortem hanging, but it also notes multiple antemortem injuries on the body. Investigators will now try to determine how those injuries were sustained and whether they are connected to the circumstances surrounding Twisha's death. Another major question is the medical response timeline. As we've already mentioned, the family has alleged there was a delay in taking Twisha to hospital despite the facility actually reportedly being nearby. So police are expected to verify hospital records and movement timelines too. You must note, investigators are also examining why repeated calls made by the family after Twisha's final conversation allegedly went unanswered for several minutes. And finally, investigators may look at whether Twisha had previously shared concerns about the alleged harassment she mentioned with friends, with relatives, or through any online communication, especially after reports of an alleged Instagram conversation have surfaced.

0: publicly. So at this stage, police have registered a case of dowry harassment and abetment to suicide, and this investigation remains ongoing. All right, on that note, let's turn our attention now to the Prime Minister's action-packed agenda. He arrived in Sweden after receiving a ceremonial fighter jet escort. He held talks that focused on trade, on artificial intelligence, on defense, and green transition cooperation. In fact, he was awarded Sweden's highest honor in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and visionary leadership. And addressing a joint press briefing, Prime Minister Modi announced that India had elevated ties with Sweden to a strategic partnership, adding that cooperation between the two democracies was important in a turbulent global political landscape. We've got crucial reactions lined up for you. Listen in, followed by my colleague Mohammed Ghazali's report.
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है, जिन्होंने भारत-स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और स्वीडन ने के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। इंडिया ईयू एफटीएसए इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे। उर्सुला जी के शब्दों में कहूं तो यह मदर ऑफ ऑल डील्स है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप और मोबिलिटी एग्रीमेंट से हमारी स्ट्रेटेजिक और पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप को नई गहराई मिली है। इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने हमारी साझेदारी को सशक्त बनाया है।
2: The European Union, Sweden and India all recognize the immense potential that lies in deepening our partnership, not least when the world is as complicated and unpredictable as it obviously is today. Prime Minister Modi, your visit marks another milestone in this history of India-Sweden relations. Today we have launched a strategic partnership and a joint action plan for our shared objectives.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
4: What's the drum?
5: Full of these people.
6: Kolkata tram.
7: The highest number of voters.
8: Tamil Nadu votes decisive.
9: Tafrat Afrika mahal hai. Udhampur patrao kya gaya ha.
10: I've always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
11: TVK headquarters here.
12: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
13: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
14: Fast moving, but still relaxed. Informative, but still unbiased.
10: So I really love the channel. I saw Shiv sir, and I was really excited to meet him and tell hi. So I'm really happy I met you sir. Thank you so much.
15: Happy meeting NDTV team here.
16: Thanks for NDTV.
17: Padmija Joshi.
18: Shreya Shide.
19: This is Shreya Ghosh.
20: Sandeep Chaudhary.
21: Manoj Yalowiwal.
22: Deepak Bopanav.
23: This is Vikte.
24: Tanushka Datta.
25: Sam Daniel.
26: Vika Ramaswamy.
27: Ritu Raj Purohit.
28: Shiv Arur.
29: To all our viewers who've joined us, thank you very much for spending your time, for trusting NDTV.
30: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
31: वाओ मामा क्या स्वाद है।
30: अरे मेरे राजा
32: सबका राजा आर प्योर मसाला।
33: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल। वी आर विथ यू।
34: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेश घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी पट्टीबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
35: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ। भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
36: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
37: ओडिशा का है। जगन्नाथ की रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
38: I think it will be good to bring back the confidence of industry.
39: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
40: And that kind of victory is truly astonishing, and I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
2: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
41: द फ्रंट लाइंस ऑफ कारगिल, द फ्यूरी ऑफ ऑपरेशन सिंधू,
42: सो मेनी अटैक्स,
41: द केओस एंड क्राइज ऑफ डिजास्टर ज़ोन्स, द फाइटर जेट कॉकपिट्स and the world's most defining interviews.
42: It's incredible.
41: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
42: Welcome to Left, Right, Center.
41: Hard facts.
42: War struck country.
41: Hard questions.
42: In the Ukraine.
41: 30 years of trust.
43: In the Kargil area.
42: North Ukraine.
43: In France. In Italy.
42: At Srinagar.
43: INSP France.
42: Vishnu Shom for NDTV.
41: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: is the accused here, also the father-in-law. The father-in-law and the husband both have been arrested by police officials today. The incident took place in Jaipura of Ecotech 3. This is in Greater Noida. More details are awaited in the suicide case that happened in Noida as well 14 months ago. The marriage took place. The marriage took place on the 11th of December 2024. The woman was died, was passed away. Her husband and his family were repeatedly demanding 50 lakhs from her is what we understand. And this was in the form of dowry. And the family had already given them a Scorpio car and 11 lakh cash that was given to them and gold that was worth over 50 lakh that was also given. My colleague Akhil joins us with more details on this. Akhil, a Greater Noida case has now emerged even as we were dealing with something that happened in Noida. Tell us what's happening, what happened in the case of the woman who died in Greater Noida. Where did this happen and what are the police saying?
1: Well, that's right. If you see, this is a case of greed and recklessness in which what we have seen that an unfortunate tragedy has come out from Gautam Budh Nagar's Greater Noida area in which what we have seen that a 25-year-old Deepika Nagar, a young woman, died by suicide. This is what the initial inputs have come out. But the family members are alleging that in-laws family basically pushed her from the terrace. So what is the actual reason? Things will come out in the later stage. But right now you can see the visuals just outside the Sector 94 postmortem house. This is the mortuary center where we are standing right now. And I'm going to speak to some of the family members over here. Achha, mujhe ye bataiye, kya naam hai aapka?
2: Sunil Nagar.
1: सुनील जी, क्या रिश्ता है आपका दीपिका नागर?
2: जी, भतीजी लगती है.
1: भतीजी लगती है
2: जी.
1: पूरा का पूरा मामला क्या है, कब, किस रात हुआ, कितने बजे हुआ?
2: ये रात हमारे पास कॉल आई उसके ससुराल से, दीपिका नागर के, कि आपकी बिटिया गिर गई है और आप हॉस्पिटल में आ जाइए. तो जब परिवार के लोग शारदा हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ देखा कि बेटी के ऊपर मारपीट के निशान थे बहुत ज़्यादा और वो बेसुध. तो डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि ये अब नहीं रही. तो उसके बाद जो ससुराल वाले थे वो वहाँ से भाग गए और बुरी तरह से मारपीट करके उसकी
1: जो शरीर पे जो वुंड्स हैं, किस तरह के जख्म जो है, किस तरह
2: पूरे शरीर पर कट के निशान भी हैं, मारपीट के निशान हैं, नील पड़े हुए हैं पूरे शरीर पर, काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान हैं. काफ़ी
1: कट के जो लेजेंस के मार्क, कट के मार्क्स अलग होते हैं, ठीक है. अगर कोई इंसान सुसाइड करता है, कूदता है, ठीक है, उसके चोट अलग.
2: इसके तो कट के निशान भी हैं, पेट में एक छेद भी हो रखा है जो कि संभवतः या तो गोली मारी गई है या कोई सरिया या पेचकस नुमा कोई चीज़ उसके पेट में दी गई है.
1: इस मामले के अंदर पुलिस ने अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है, लड़की के पिता, पति को और उनके ससुर को. क्या आप संतुष्ट हैं अभी तक के इन्वेस्टिगेशन?
2: हम अभी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है क्योंकि जिस तरह से बेटी को दुर्दांत तरीके से तड़पा के मारा गया है, उसके पूरे परिवार की गिरफ्तारी होनी चाहिए. सही है, उसमें चार पांच लोग और हैं जिनके नाम है, उसकी जो सास है, नंद है, सब लोगों के नाम है इसमें, बाकी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है. ये जो व्यक्ति है ये भूमाफिया टाइप का व्यक्ति है और राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति है. जो इसके जो ससुर है मनोज, ये राजनीतिक रसूख है इसका अच्छा खासा. तो ये प्रभावित करने का प्रयास करेगा पूरा इस मामले को, ये क्योंकि इसका रोज का काम है पुलिस प्रशासन के पास में उठना बैठना, वहाँ पे प्लॉटिंग करता है, लोगों के प्लॉटों पे कब्जे करता है. इसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे वहाँ पे पहले से दर्ज है.
1: पहला सवाल, अगर आपको ये सारी चीज़ें पता थी तो उस घर में बेटी क्यों दी? और दूसरा सवाल, जब आपने शादी करी बेटी की 14 महीने पहले, उसके बाद आपने स्कॉर्पियो कार दहेज में भी दिया, दहेज देना भी गलत है, ठीक है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि फिर वो लोग फॉर्च्यूनर मांग रहे थे और 50 लाख कैश एडिशनल मांग रहे थे, डिस्पाइट डैट कि आपने उनको पहले जो है 50 लाख का सोना भी दिया, तो आपने पुलिस में पहले कंप्लेन क्यों नहीं की?
2: देखिए, मैं बताता हूँ, जो पहला जो जब शादी करते हैं तो उस टाइम पर जो भी दिया जाता है, हर पिता अपनी बेटी के लिए अपने हैसियत के हिसाब से देता है, ठीक है. उसे आप एक बेटी के लिए गिफ्ट के तरह से आप मान सकते हैं, उसमें कोई मांग वाली बात नहीं होती है, जो पहला जो होता है. दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपको पहले पता नहीं था. हर आदमी के दो चेहरे होते हैं. हमें जब बताया गया था इसके बारे में तो इनका बताया गया था कि इसके स्कूल हैं, इसका वाकई में वहाँ पे स्कूल है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ये जो स्कूल है ये सारा अवैध प्रॉपर्टी पर इसका निर्माण है और इसका जो काम है ये अवैध प्रॉपर्टी पर कब्जा करता है और इस तरह से ही भूमाफिया बना हुआ है.
1: लोगों के परिवार की बेटी को कितने महीने से परेशान कर रहे थे वो?
2: इसको कई महीने से परेशान किया जा रहा था, मांग की जा रही थी. तो इन्होंने, बेटी ने कल अपने पिताजी को फ़ोन करके बताया, तो इसके पिताजी वहाँ पे गए, तो घर पे जाकर के इन्होंने आराम से समझाया, बातें की, तो कोशिश की कि ऐसी चीज़ें हैं, पारिवारिक चीज़ें हैं तो आराम से हल हो जाएँ, कुछ ऐसा ना करना पड़े. लेकिन जैसे ही वो वापस घर आए, घर आने के कुछ घंटे बाद ही, आधे या एक घंटे के बाद ही कॉल आ गई कि आपकी बेटी को चोट लग गई और आप हॉस्पिटल आ जाइए. तो जब वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे तो

0: बेटी मरी।
1: एक चीज और बताइए, दिन ब दिन जो है वो लालच ग्रीड जो है वो बढ़ता जा रहा था, आखिरी में जो डिमांड्स थी तीन बड़ी मांगें क्या?
2: थैंक यू सो मच। लेट्स आल्सो लिसन इन टू व्हाट द मदर ऑफ द विक्टिम सेड टुडे, मदर ऑफ दीपिका नागर, हु हैज अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे आफ्टर बीइंग हैरेस्ड एंड बीटन अप बाय हर इन-लॉज इन ग्रेटर नोएडा। हर मदर हैज स्पोकन एंड दिस इज व्हाट शी सेड।
3: क्या हुआ आपकी बेटी के साथ?
4: ओ भैया, हम वो तो कुछ भी ना पता कहा हुए है। ओ भैया, मो न पतो कुछ भी, भैया मैं वो पते न कुछ भी कहा करो हुयो मेरी की गए।
5: अच्छी वाली गई हमारी बेटी तो यहाँ से।
4: भैया मैंने तो अच्छी, अरे मोचा तो कल भी अच्छी बतलाई। ओ मेरी लाडो,
3: कैसे पता लगी आपको?
5: उन्होंने फोन करा था।
4: फोन आया उनको ही। ओ
5: अब तुम्हारी बेटी जीने पर से गई थी।
3: क्या हुआ आपकी बेटी के साथ?
4: ओ भैया, हम वो तो कुछ भी न पता कहा हुए है।
2: We are also tracking Tusha Sharma's death mystery. A 33-year-old Noida woman was found dead 5 months after her marriage. While Tusha's family has claimed harassment, in-laws have said that the death was by suicide. Tusha's father has said that Tusha's husband and her mother-in-law, a retired judge, are the main culprits in this case. Now, in the latest update, Tusha's latest Insta chat has also surfaced, where she had written to her friend on how she feels completely trapped in the marriage. Now, the final 15 minutes before Tusha's death have become the biggest focus of the investigation that's going on. According to the family, Tusha called her mother at 10:05 p.m. and she spoke about the alleged harassment that she was going through in her home by her in-laws. And this was at 10:20 p.m. that her family was informed that Tusha was not breathing anymore. This has raised several questions and several serious questions about what really happened. Yesterday, Tusha's father and cousin spoke to NDTV describing what they went through. Listen in to what they said.
6: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्यवाही करी है उससे परिवार कितना संतुष्ट है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है। क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को, एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, उस इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है? आशीष जी,
7: यस मैडम, एब्सोल्युटली। द मोमेंट वी रियलाइज्ड दैट आवर डॉटर हैज पास्ड, द मोमेंट वी गॉट द कॉल दैट शी इज नो मोर, द थ्री वर्ड्स दैट वर स्पोकन टू अस, वी इमीडिएटली स्टार्टेड फ्रॉम दिल्ली, from Ajmer, the family came here, and after coming here, all we are seeing, all we have witnessed is horror. When we saw the dead body of my sister, the injuries that she was carrying, the continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the national, the women commission, the mahila thana, the human rights commission, the office of the commissioner of the police, we were being run, we were made to run from pillar to post. And it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered, that too in a very shoddy manner. Thereafter, we have been witnessing the grant of bail almost uncontested, the proceedings conducted under undue pressure in the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time? From 9:30 to 5 till in the evening, the courts are getting changed. There must be some certain reason behind it.
6: Navnidhi ji, मैं आपके पास आना चाहूँगी। परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियाँ थी? त्विशा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,

0: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीज़ें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं
1: जी।
0: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार को दिया कि पापा अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे गलत डिसीज़न हो जाता है कई बार, इसको आप जो है हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना। और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको ले कर जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए। ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है और मैं इसमें आज हिचक कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ। इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो एमपी के लोकायुक्त थे जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है। मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाए। अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की जो दूसरा समर सिंह है उसकी एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी जबकि इनको पता था कि ये PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया।
1: So those are the family members of Twisha Sharma, 31-year-old woman from Noida who got married to an influential family in Bhopal in Madhya Pradesh. She died under very mysterious circumstances on the 12th of May. And now her family members are demanding justice and transparency. They've also approached the Chief Minister's office in this regard. And they feel that it is the in-laws who have played a murky role in the passing away of their daughter. But the in-laws have said that this is entirely death by suicide. But what does the post-mortem report of Twisha Sharma say with regard to her cause of death? The anti-mortem details, which is the pre-death details, say that the death took place by hanging by ligature, which is the strap that's used in suicides. The report also says that Twisha was alive at the time of the hanging. Injuries have also been recorded. Multiple injuries have been recorded in the body. Bruises and other wounds have been found in different parts of the body. Pregnancy details have emerged on medical termination of pregnancy that was done a week earlier. That's what we know from the report. Forensic examination samples have been sent to the FSL lab, and this is to check for toxic substances for poisoning. Remember, Twisha Sharma, just minutes before she passed away, she died, she reached out to a friend of hers and she said that she felt trapped in her marriage. Now, her family members have intensified their protest, seeking justice and transparency in the investigation. My colleague Harpreet joins us with more details on this. Harpreet joins us from Bhopal. Harpreet, ye bataiye ki इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं, इन लॉज जो हैं त्विशा शर्मा के, इनका क्या कहना है और पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कहां तक गया है, और जो इनके फैमिली, त्विशा के जो फैमिली मेंबर्स हैं, इन्होंने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस तक को बताया है इसके बारे में, उनकी तरफ से कोई इंटरवेंशन हुआ है कि नहीं?
2: बिल्कुल, देखिए 5 महीने पहले जिस बेटी की शादी धूमधाम से की गई थी, अब उस बेटी की मौत के बाद न्याय के लिए उसके परिजन पिछले 7 दिन से भोपाल में लड़ाई लड़ रहे हैं। कल वो मुख्यमंत्री के OSG से मिले थे और उन्होंने यहाँ पर भी गुहार लगाई थी कि त्विशा का सेकंड पोस्टमार्टम करवाया जाए, इस केस को दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए, उसके पति और सास पर और ज़्यादा जो कड़ी धाराएँ हैं वो लगाई जाए। इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक पहलू ये भी है कि मौत को त्विशा की 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक उसका पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम होने के बाद भी उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। उसके परिजनों ने उसका शव अभी तक नहीं लिया है। भोपाल एम्स की मॉर्चुरी में उसका शव रखा गया है। भोपाल एम्स प्रबंधन ने पुलिस को पत्र लिखा है कि जल्द से जल्द ये शव यहाँ से उठाया जाए, क्योंकि अब डिकम्पोज होने की स्थिति में ये शव पहुँचने वाला है। इसके साथ ही अब पुलिस ने भी यहाँ पर निवेदन किया है ट्विशा के परिजनों से, लेकिन ट्विशा के परिजन किसी भी हाल में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, यानी कि कड़ी धाराएं और उसके पति और सास पर नहीं लगाई जाएंगी, उसकी जमानत जो उसकी सास को शुक्रवार को मिल चुकी है वो रद्द नहीं की जाएगी। भोपाल एम्स से अब जो फर्स्ट रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, उसके बाद दूसरा जो पोस्टमार्टम है वो दिल्ली एम्स में करवाया जाए और दिल्ली में ये मामला शिफ्ट किया जाए। ये मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी वो ट्विशा का शव भोपाल एम्स मॉर्चुरी से नहीं लेंगे, उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आज इस मामले में अपडेट ये है कि ट्विशा का परिवार और उसके ससुराल पक्ष एक बार फिर भोपाल कोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर ट्विशा के पति की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई है। वहीं ट्विशा का परिवार आज अपील कर सकता है कि इस जो पोस्टमार्टम की मांग वो कर रहे हैं दिल्ली एम्स में, वो अपील आज कोर्ट में कर सकते हैं। पुलिस भी अपील कर सकती है कि ट्विशा का परिवार भोपाल एम्स में जो उसका शव रखा है वो लें और उसका अंतिम संस्कार करें। तो रोजाना मामला उलझता जा रहा है, बजाय सुलझने की 7 दिन हो चुके हैं और ट्विशा का परिवार कम से कम 20 सदस्य अभी भी भोपाल में मौजूद है।
1: The last rites are yet to be performed. Thank you, Harpreet, हमसे जुड़ने के लिए. Let's also tell you what happened in the final moments before Twisha passed away at 10:05 p.m. on the 12th of May. Twisha Sharma, the woman from Noida who was married to a family, an influential family in Bhopal, she has died under mysterious circumstances. But it was just minutes before her death at 10:05 p.m. on the 12th of May that Twisha made a call to her mother. It was a distress call. She alleged harassment, abuse by her in-laws, and she shared details of the troubles, the trauma that she was facing inside her house. And during this emotional conversation, the call was suddenly disconnected after Twisha's husband reportedly entered the room. That's what investigators have told NDTV. She was alarmed by the abrupt silence. The family immediately started making repeated attempts to contact her. Remember, Twisha had made this call to her mother, and just minutes before she passed away, she sent an Insta post to her friend as well, saying that she felt trapped inside her marriage. But when there was no response that the family got from Twisha's phone, neither from Twisha nor from any member of the family inside the house, 10 minutes later, around 10:15 p.m. is when the in-laws, Twisha's in-laws, finally answered the phone call. Moments later, at approximately 10:20 p.m. is when the family, Twisha's family, was informed that her daughter was not breathing. She was then immediately rushed to the hospital where doctors declared her dead on arrival. This was a 31-year-old woman, Twisha Sharma, from Noida, who was married to an influential family in Bhopal. Her family has intensified their protests against Twisha's in-laws, saying that they have played a very, very important role in what they call the murder of their daughter. We have to wait and see what happens. They've also asked the Chief Minister of Madhya Pradesh to intervene in this matter. With that, it's time for a short break. More news and updates on the other side.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: सबका राजा आर्टियोर मसाला।
5: इकोनॉमी, बिजनेस, वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी, नॉइज फिल्टर्ड, नंबर्स डिकोडेड, इनसाइट्स दैट रीवायर योर वर्ल्ड व्यू। फ्रॉम गवर्नेंस टू ग्रोथ, we connect the dots. Your daily edge, your global advantage. India Business Report with me, Gauri Dwivedi, weeknights on NDTV Profit.
6: Launch control, 0 to 100.
7: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
8: This car makes no sense, yet it makes every sense.
9: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
10: Your friend said, ye le le. We said, maybe not.
11: Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: This focus of the investigation. According to the family, Trisha called her mother at about 10.05 p.m. and spoke about alleged harassment at her matrimonial home. At 10.20 p.m., the family was informed that Trisha was not breathing, raising serious questions about what happened during those crucial 5 minutes after that conversation that Trisha had with her mother. Yesterday, Trisha's father and cousins spoke to NDTV describing their ordeal.
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्यवाही करी है उससे परिवार कितना संतुष्ट है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है. क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को, एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है? आशीष जी,
2: yes madam, absolutely. The moment we realized that our daughter has passed, the moment we got the call that she is no more, the three words that were spoken to us, we immediately started from Delhi, from Ajmer. The family came here, and after coming here, all we are seeing, all we have witnessed is horror when we saw the dead body of my sister, the injuries that she was carrying, the continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the Women Commission, the Mahila Thana, the Human Rights Commission, the Office of the Commissioner of the Police, we were made to run from pillar to post. And it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning of the night of 15th, that the FIR was registered. That too in a very shoddy manner. Thereafter, we have been witnessing the grant of bail almost uncontested, the proceedings conducted under undue pressure. In the chamber of the judiciary, the family heckled outside the chamber. What makes the courts getting changed not once, not twice, thrice, even the fourth time, from 9:30 to 5 till in the evening, the courts are getting changed? There must be some certain reason behind it.
1: Navnidhi ji, main aapke paas aana chahungi. परिवार के लिए आपके लिए एक बहुत दुख का समय है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस दुर्घटना के पहले परिवार में किस तरह की परिस्थितियां थी? त्विशा ने आपको क्या कभी परिवार के आपसी रिश्तों के बारे में, समीकरणों के बारे में कुछ भी खुलकर बताया? नवनिधि जी,
3: एक बाप होने के नाते बेटी तभी अप्रोच करना चाहती है अपने फादर को जब चीजें बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में पहुंच जाती हैं।
1: जी,
3: और इस बात का इंडिकेशन उसने कई बार मुझको दिया कि पापा अगर मेरी बात नहीं बनी तो मैं इनको छोड़ के चली आऊँगी, मैं जो है आगे इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ. मैंने बेटी को कई बार बोला कि बेटे गलत डिसीजन हो जाता है कई बार, इसको आप जो है, हम इसको मानेंगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई और आप जब आपको ऐसा लगे तो आप चली आना. और उसने अपने टिकट्स भी करा रखे थे जो टिकट जानबूझ करके कैंसिल कराए गए, हमारे भी टिकट थे जाने के, हम उसको लेके जाने वाले थे, वो भी कैंसिल कराए गए. ये एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हत्या हुई है और मैं इसमें आज हिचक कर नहीं कहना चाहता हूँ, मैं आपको खुल करके बताना चाहता हूँ. इनके बहुत क्लोज रिलेटिव हैं जो एमपी के लोकायुक्त थे, जिनका नाम है मिस्टर सत्येंद्र सिंह, और आज तक जो भी मुझे जो लाचारी सिस्टम की दिखने की आई है कि लोकायुक्त के खिलाफ तो कोई खड़ा ही नहीं होगा, जुडिशरी के खिलाफ कौन खड़ा होगा, लोकायुक्त के खिलाफ कौन खड़ा होगा, ये साफ दिखने में आ रहा है. मेरी बेटी का PM2 कराने के लिए मेरा राइट था, मुझे फोर्स किया जा रहा था पहले दिन से कि मैं बॉडी ले लूँ और इसको क्रिमिनेट कर दूँ ताकि इनके सारे साक्ष्य जो है ख़त्म हो जाए. अभी मैंने कल बॉडी PM2 के लिए अप्लाई किया, कमिश्नर साहब ने ओके किया, फिर बाद में मुझे पता चला कि कमिश्नर साहब के पास में कुछ प्रेशर आया हुआ है, वट एवर द रीज़न, उन्होंने बोला कि ये आपको जुडिशरी से आपको इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी. जब जुडिशरी से परमिशन का मतलब ये है कि कल कोर्ट के पास एक एंटिसिपेटरी बेल की जो दूसरा समर सिंह है उसकी

0: एंटिसिपेटरी बेल लगी हुई है, मतलब डायरी एक जगह एंगेज रहेगी, दूसरी जगह मुझे करने के लिए कम से कम काफ़ी टाइम घुमा दिया जाएगा। अभी जब बॉडी जो है 3 से 5 डिग्री पर रखी गई थी, जबकि इनको पता था कि ये गॉड PM2 के लिए जाने वाली है, तो आज मैंने सुबह जब एप्लीकेशन दी है और जब लोग गए हैं यहाँ से, तब स्पेशल स्ट्रेस के बाद बॉडी को -4 में रखा गया है।
1: Let's just quickly take you through the final moments before Twisha's death. At about 10:05 p.m. on the 12th of May, Twisha made a distress call to her mother, alleging harassment by her in-laws and sharing details of the ordeal she was facing inside her marital home. During the emotional conversation, the call was suddenly disconnected after Twisha's husband reportedly entered the room. Alarmed by the abrupt silence, the family immediately began making repeated attempts to contact her, but there was no response, neither from Twisha nor from any member of the family inside the house. Nearly 10 minutes later, at around 10:15 p.m., the in-laws finally answered the phone. Moments later, at approximately 10:20 p.m., the family was informed that Twisha was, quote-unquote, not breathing. She was rushed to the hospital, where doctors declared her dead on arrival. My colleague has also filed a ground report from the parents' house. We talk about Twisha's parents' house in Noida.
2: अब भोपाल में रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा के सुसाइड के मामले में नए नए जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं, और NDTV की टीम की मौजूदगी ट्विशा शर्मा के जो ग्रेटर नोएडा वाला घर है उसके ठीक बाहर है, और मेरे ठीक पीछे जो ये सोसाइटी आप देख पाएंगे 16th Avenue गौर सिटी 2, इसी सोसाइटी में जो के ब्लॉक है वहाँ पर ट्विशा शर्मा अपने माता पिता के साथ रहती थी। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ट्विशा ने जो 11-12 मई की रात में भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 31 साल की ट्विशा शर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, और जिसके बाद मायके पक्ष ने उसकी सास रिटायर्ड जज गिरबाला सिंह और जो पति ट्विशा के हैं समर सिंह पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। और जो शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक सामने आई है उसमें हैंगिंग बताई गई है वजह है जिसके चलते ट्विशा की मौत हुई है, और कई जगहों पर शरीर में चोट भी जो है वो भी मिली है। और ससुराल पक्ष ने अंतिम संस्कार के लिए शव मांगा, तो मायके पक्ष यानी ट्विशा के जो परिवार वाले हैं माता पिता हैं उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। और आपको बता दें कि ट्विशा मूल रूप से जो नोएडा है यहीं पर बीते 15 सालों से अपने माता पिता के साथ रह रही थी, और एक साल पहले जो शादी है उनकी भोपाल में हुई थी। रिटायर्ड जज के परिवार की वो बहू थी, लेकिन किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई ये लगातार सवालों के घेरे में है। इसी को लेकर ट्विशा शर्मा के जो पिता हैं वो ससुराल वालों पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी तरफ से लगातार ट्विशा को प्रताड़ित किया जा रहा था, और जिसके चलते ट्विशा ने जो सुसाइड जैसा कदम है वो उठाया।
1: Time to bring you some details from the post-mortem autopsy report as well. Let's just take you through some of them. The victim was alive during hanging is what this report states. There have been multiple injuries found on Twisha's body as well. Also, several minor injuries before death have emerged in that report. And medical termination of pregnancy is also a part of that report, and that report states that the medical termination of pregnancy performed a week before. So clearly there was a lot of duress, a lot of stress that Twisha was under is what we have figured for now. Anurag is joining me live from Bhopal on the story. Anurag, we do know that Twisha's husband is still missing. He's absconding. What details do we have on Samarth Singh for now?
3: His anticipatory bail plea will just come, I think, in an hour or so at the Bhopal court. And so far, the family of Twisha, yesterday they protested again, in front of the Chief Minister's house, and they met the OSD of the Chief Minister. They demanded a second post-mortem at AIIMS in New Delhi. We also have a few chats of Twisha in which she has expressed the anxiety of life, and she was talking to her friend and she said that I have been under anxiety because I'm sitting at home. I want to do something with my life. Shadi makes your family, but you cannot stop working on yourself for yourself regardless where you are. She also warned her friend against marriage, and she said Shadi के लिए शादी मत करना, सोच समझकर आगे बढ़ना, फिलहाल बस यही कहूँगी. सो दीज वर द क्लेम्स मेड बाय द फैमिली ऑफ तुषा शर्मा, बट इक्वली सेंसेशनल क्लेम, एंड वी ऑल्सो हैव द कॉपी ऑफ द व्हाट्सएप चैट्स, द एंटिसिपेटरी बेल प्री एप्लीकेशन ऑफ गिरिबाला सिंह, अ रिटायर्ड जज, इन विच शी हैज़ मेड सम यू नो कॉमेंट्स, एंड शी हैज़ सेड दैट Tusha allegedly displayed withdrawal symptoms when deprived of narcotics. She has said this, Gyaribala Singh, in her anticipatory bail plea, and she was being treated. She has also produced prescriptions of noted psychiatrist here, Dr. Satyakant Trivedi, and she said that she was also referred to Counselor Kakoli Rai. She has named these doctors in her anticipatory bail plea. Her behavior reportedly changed significantly after pregnancy and later miscarriage. This is what Gyaribala Singh, retired judge, has to say. And she has also said that no dowry was ever demanded, and Tusha received regular financial support through online transfers ranging from 5,000 to 50,000. So now, the screenshots of the payments made by Samarth and Gyaribala Singh to Tusha has also surfaced, and these documents are submitted to the court as a part of the anticipatory bail plea of Gyaribala Singh.
1: All right, Anurag, we're going to talk more about this at the top of 1 p.m. as well. This is very important to note that the anticipatory bail plea of Tusha's husband should be heard in about an hour from now. Some very, very important points being made by Anurag there. We'll come back to him at the top of 1 p.m. But there are big questions that emerge from this entire incident. The first, what happened between 10:05 and 10:20 p.m. on the night that Tusha died? What explains the multiple anti-mortem injuries that her body suffered? Thirdly, was there a delay in taking Tusha to hospital? Number four, why did no one answer the family's repeated calls after Tusha had called her mother and she had explained to her that things weren't too well inside the house in Bhopal? And finally, did Tusha previously report harassment to anyone? Big questions also over the termination of pregnancy, which now her in-laws term as a miscarriage. Unfortunately, that's not the only disturbing story that we're getting you on alleged dowry harassment. A 14-month-old marriage has ended in tragedy in Greater Noida and Uttar Pradesh. A 25-year-old woman, Deepika, died after allegedly falling from the third floor of her in-law's home. Her family has accused her husband and in-laws of dowry harassment and murder, alleging demands for a Fortuner SUV and 50 lakh rupees in cash. According to the complaint, Deepika had called her family on the 17th of May, which is yesterday, claiming she was being beaten by her husband and in-laws. Hours later, relatives were informed that she had fallen from the roof and suffered critical injuries. Police have arrested the husband and father-in-law while further investigation is underway in this highly disturbing case.
4: वही हम वो तो कुछ भी न पतो कहा हुए है वो वही हम वो न पतो कुछ भी भैया मैं वो पते न कुछ भी कहा करो हुए मेरी की गए
5: अच्छी वाली गई हमारी भी तो यहां से
4: भैया मैंने तो अच्छी अरे मोटा तो कल भी अच्छी बतलाई ओ मेरी लाडो
6: कैसे पता लगी आपको
5: उन्होंने फोन करा
4: फोन आया उनको ही
7: घटना मेरी बेटी थी जी जलपुरा गांव में उसकी शादी की थी 1.5 साल पहले और उसे दरिंदों ने कल रात मार दिया दहेज के लोभ में उसे मार दिया
8: कब से प्रताड़ित कर रहे थे
7: प्रताड़ित उसे तो 10 महीने से लड़की बराबर हमें बोल रही थी और हम आके उसे समझा भी जाते थे बता भी जाते थे बाकी उन पे कोई फर्क नहीं आया किसी तरह का
9: आखिरी बार कब बात हुई थी बेटी से और
7: बेटी से कल भी बात हुई थी कल मैं मिला भी था बेटी से और उसके बाद जो है उन्होंने जैसे ही हम घर चले गए मैं कल आया था वहाँ पे उसे समझाने के लिए बात करने के लिए बाकी वो उसके बाद भी उन्होंने जैसे ही ये लगभग 11:30-12 बजे के करीब उन्होंने मुझे फोन किया 12:30-12:30 बजे के करीब चोट के निशान भी है मेरी बेटी के और उसे मारने के बाद छत पे ले जाकर उसे नीचे फेंक दिया
10: किस तरह का दहेज डिमांड थी क्या मांग
7: दहेज क्या थोड़ा था जी फॉर्चूनर गाड़ी 51 लाख रुपए हालांकि मैंने दिया भी बहुत।

0: देने की कोई ऐसी नीति जितनी मेरी औकात थी वो दिया भी था मैंने।
1: आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।
2: हमारी बेटी को कुछ नहीं होता, राजी खुशी गई थी यहाँ से। उन्होंने फोन करा कि तुम्हारी बेटी छत से गिर गई। उसके पापा मिलके आए थे 11 बजे रात। अच्छा कुछ भी नहीं था, राजी खुशी अपनी बेटी से मिलके आए थे। हमें रात को फोन आता 11 बजे, हम यहाँ से सब जाते। 1 बजे फोन करा उन्होंने, अब तुम्हारी बेटी गिर गई। हमने वहां जाके देखी तो खूब तो उन्होंने मार रखी थी और छत से उठा के नीचे फेंक दी। हमें जगह हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने कह दीजिए ये तो खत्म हो गई। अब ये बताओ हमें क्या चाहिए, हमारी बेटी मार दी जीते जी, ये बताओ है? क्या कुछ नहीं दिया था, हमने बहुत तगड़ी शादी करी थी अपनी बेटी की और अच्छे से पाला था उसको, और आज उन्होंने मार दी हमारी बेटी।
3: The death of 25-year-old Deepika has now triggered serious allegations from a family who claim this was not a suicide or accidental fall, but a case of sustained dowry harassment that ended in murder. According to the family, Deepika was allegedly being pressured by her husband and in-laws for a Fortuner SUV and 50 lakh in cash. They claim she was subjected to repeated mental and physical torture inside her husband's home. The family says Deepika made a distress call just hours before her death, crying and allegedly telling them that she was being beaten, she was being harassed. Relatives claim they had repeatedly tried to intervene and resolve the dispute between both families, but later that night, the family says they were informed that Deepika had allegedly fallen from the roof. Her relatives, however, are questioning that version of events, claiming there were visible injury marks on her body and blood coming from her nose and ears. Deepika's family is now directly accusing her husband and in-laws of murder, demanding strict action and a thorough investigation into what they call a brutal dowry death. Akhil is joining us live from Noida at this point. Akhil, what have you gathered during your reporting on this very disturbing incident? We've heard from the family members, but I want to understand what the defense has been so far when it comes to Deepika's husband's family, because this is a very serious charge that Deepika's family is alleging against the in-laws.
4: Well, Vedika, if you see right now, I'm just standing outside the mortuary center. And towards my right, if you see, there's a high-rise supernova tower, which is approximately 18-floor plan building. And just opposite to this building, if you see the other side of the road, this social stigma story that has come out, in which what we have seen that there are two different sides. One side is of the economic rise that we have been seeing, the digital India. And another side of this story, if you see, what we have been witnessing over here in the same Noida itself, that is an incident which has taken place, which has shaken the soul of this very city. Right now, I'm joined by the deceased father over here. अच्छा नागर साहब, ये बताइए कि कितने लंबे समय से आपकी बेटी को परेशान किया जा रहा था?
5: बेटी को शादी के दो तीन चार महीने बाद ही शुरू हो गए थे जी।
4: शादी में जो है आप लोगों ने डाउरी दी थी, डाउरी में स्कॉर्पियो कार दी, कैश दिया 11 लाख रुपए, जेवरात दिए, उसके बाद भी मांगा जा रहा था।
5: उन्हें फॉर्चूनर गाड़ी चाहिए थी जी, 51 लाख रुपये चाहिए थे।
4: तो आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं दर्ज कराई?
5: नहीं, पुलिस में क्या, वो तो ये सोच रहे थे एक ना जाने चल जावे। हर आदमी सोचता कि भी आ गई बात बन जावे, पुलिस में कंप्लेंट तो जब होती है, पुलिस में कंप्लेंट तो लास्ट हो गया ना, सारा ही कर दिया उन्होंने। कल तो बहुत कोशिश करी उसे बचाने की कि भी बात बच जाए।
4: कल आपको इन्फॉर्म किसने किया, बेटी ने इन्फॉर्म किया या परिवार वालों ने इन्फॉर्म किया? कब पहुंचे आप वहां पर अपनी बेटी को देखने के लिए?
5: मैं बेटी का फोन आया था मेरे पास, जो मैं उसके कहने पर मैं गया था और वहां से मिल गए, उनसे बात करके उन्हें समझा के बोल के सब करके जब वहाँ से मैं निकला तो आधे पौने घंटे बाद मेरे पास कॉल आती है कि भाई आपकी बेटी दीपिका जो वो गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ गिर गई, जीने पे गिरी है, बाथरूम में गिर गई, कहाँ गिर गई? तो उन्होंने कही वो छत से गिर गई है। तो छत से गिर गई और हम उसे जो वहाँ लेके जा रहे हैं शारदा हॉस्पिटल। तो मैंने अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को और अपनी घरवाली को लेके हम जो शारदा हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पर हमारी बेटी जो वहाँ पर हमें मृत मिली।
4: अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइए, समझना चाह रहा हूँ एक चीज़ कि जब इंसान छत से गिरता है तो उसको जो चोट आती है सुसाइड का, वो चोट दूसरे तरह की होती है, उसके बदन पे कट के मार्क्स दिखे हैं।
5: मारा है सर, उसे मार के ही छत से नीचे डाला है उसने, उन्होंने मारा मिल के वहाँ पे। जो
4: आप कहना चाह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है,
5: सुसाइड का क्या मतलब,
4: मर्डर है
5: ये, सुसाइड का क्या मतलब है, ये तो हत्या करके उसे मारा गया, उसके पेट में चाकू लगा हुआ पेचकस या बुलेट लगी हुई है, मारने का क्या मतलब है, कि आत्महत्या का क्या मतलब है, कौन कह रहा आत्महत्या।
4: मॉर्चरी के ठीक बाहर खड़े हैं, उसमें चीजें क्लियर होंगी, पुलिस अपना जी, पुलिस क्या आश्वासन दे रही है आपको, पुलिस की तरफ प्रशासन की तरफ से क्या मैसेज मिला?
5: नहीं, प्रशासन तो जब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद देखते हैं क्या करता प्रशासन, जो अभी तो जो भी है वो बोल ही रहे हैं, बहका रहे हैं कि हाँ करेंगे, बाकी वो भूमाफिया है उसके आगे तक जय के आगे तक उसकी।
4: कौन है भूमाफिया?
5: ये जो मनोज जो है,
4: हाँ
5: ये
4: बेटी के फादर,
5: कम से कम इसके जाके पता करो कि कम से कम 40-50 मामले जो आज भी उसमें थाने में हुए।
4: कोई स्पेसिफिक डिमांड यूपी प्रशासन से?
5: नहीं, यूपी प्रशासन से तो ये है कि जो लड़का है इसका तो एनकाउंटर पूरा होना चाहिए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे थोड़ा हमारा भी ये हो जाए। बेटी तो हमारी चली गई, बाकी हमारे उसके लिए भी प्रशासन को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा।
4: Yes, Vedika, would you like to take it forward? Any questions?
3: Akhila, I just have one question for the father. Of course, this is a very difficult moment for him, but I want you to ask him, sir. मैं आपसे जानना चाहती हूँ, do you regret, sir, कि आपने dowry दिया था पहले शादी के दौरान?
5: पहली शादी में हमने गाड़ी दिया था जी, स्कॉर्पियो फर्स्ट मॉडल एंड गाड़ी दी थी।
3: आपको पछतावा है कि आपने डाउरी दिया था सर?
5: नहीं, पछतावा तो सारा ही है मैडम, अब क्या करना, हमारी तो बेटी चली गई, अब गाड़ी देने से यार उससे क्या हुआ।
3: All right, thank you for joining us there. That's the father of Deepika there speaking with Akhil and telling us that this was not a case of suicide but a case of murder. We leave it at that. We'll slip into a short break. We'll be back with more. We'll tell you more about Prime Minister Modi's visit in a couple of minutes from now and the tensions rising between the US and Iran.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस।

0: The house when Twisha's parents tried to reach out to them over the phone. Nearly 10 minutes later, at around 10:15 p.m., the in-laws finally answered the phone. Moments later, at approximately 10:20 p.m., the family was informed that Twisha was quote-unquote not breathing. She was rushed to the hospital where doctors declared her dead on arrival. So those are the last final moments that we have pieced together from all the information that we have received from the police in this case. Now, yesterday, Twisha's father and cousin spoke to NDTV describing their ordeal.
1: मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी तक पुलिस ने जो भी कार्यवाही करी है उससे परिवार कितना संतुष्ट है और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जो दूसरा पक्ष है वो एक रसूखदार पक्ष है, उनका अपना एक इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड है. क्या वो कहीं ना कहीं इस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की फेयरनेस को, एक जो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको प्रभावित कर रहा है? आशीष जी.
2: यस मैडम, एब्सोल्युटली. द मोमेंट वी रियलाइज्ड दैट आवर डॉटर हैज पास्ड, the moment we got the call that she is no more, the three words that were spoken to us, we immediately started from Delhi, from Ajmer. The family came here, and after coming here, all we are seeing, all we have witnessed is horror when we saw the dead body of my sister, the injuries that she was carrying, the continuous denial in admitting the crime, the repeated and continuous approach of the police to not get the FIR registered, the continuous struggle that we had, the entire family running from pillar to post, sometimes sitting on one thana, sometimes on the other thana, the Women Commission, the Mahila Thana, the Human Rights Commission, the Office of the Commissioner of the Police, we were made to run from pillar to post. And it was only after 3 days, that too at 2:30 in the morning.
3: तो हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही यहाँ पर. इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा केस दिल्ली में ट्रांसफर हो और SIT उसकी जांच उसका दिल्ली में हो, सुप्रीम कोर्ट में, और उसका दोबारा से पोस्टमार्टम हो. बस मेरी ये तीन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला हमारे साथ में, और हमें यहाँ पर डर है. हमें डर है यहाँ पे. परसों भी उस दिन कोर्ट में हमारे ऊपर अटैक हुआ था. कुछ लोग आके हमको कुछ भी बोल रहे, गंदा बोल रहे हैं. मेरी बेटी मतलब कि लड़कियाँ बदतमीज होती है, ऐसी होती है, ऐसे ऐसे करके हमें कि हम एग्रेसिव हों, कुछ बोले उनसे, ऐसे हमारे सामने कमेंट कसे जा रहे हैं ऐसे.
1: कल आप मुख्यमंत्री के OSG से भी मिली थी, आप लोगों ने वहाँ पर भी गुहार लगाई थी कि उसका सेकंड पोस्टमार्टम करवाया जाए और SIT यहाँ पर गठित की जाए. सरकार की तरफ से जो OSG है, उनके तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको
3: वहाँ पे? हमें कोई मतलब थोड़ा ऐसे बोला है, मगर ज़्यादा
4: उनका कोई नहीं था. उन्होंने हमें कोई, हमें जो उम्मीद थी उनसे वो हमें नहीं फुलफिल है. हम सेटिस्फाइड नहीं है. बस हमारा वहाँ से उन्होंने बोला कि उनके ज्यूरिडिक्शन का नहीं है, ये उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, ये सिर्फ जुडिशरी का मैटर है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे हमारी हेल्प. तो हमें वहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिली है. हमारी सारी उम्मीद थी जो CM से, वो हमारी पूरी नहीं हुई है.
3: अभी तक यही लग रहा है सारे लोग उनके ही हैं, हम लोग इधर उधर धूप में भटक रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ में.
1: 7 दिन हो गए हैं, उसके डेड बॉडी एम्स में ही पड़ी हुई है. आप लोग क्या तब तक नहीं लेंगे जब तक सेकंड पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं मिलेगी?
3: मेरी बेटी वहाँ पे ऐसे लग रहे हैं, बोला हमारे से क्या, मेरे को बहुत दुख लग रहा है.
4: मैं और नहीं चाहता अपनी बेटी का डिमिनेशन करना, बट हमारे जो हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि एम्स में उनके अपने लोग हैं यहाँ के. जब हमारे यहाँ की पुलिस हेल्प नहीं करी तो हम कैसे समझ लें कि एम्स में डॉक्टर्स हमारी हेल्प करी होगी, उन्होंने सही रिपोर्ट दी होगी. इसीलिए हमारा सेटिस्फेक्शन, अगर उनको डर नहीं है तो फिर हमारा सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए हमें अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है, अब बताइए ना.
1: बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर परेशान हैं, गुहार लगाकर, पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सबसे थक चुके हैं. लेकिन क्या आप लोग का यही फाइनल फैसला है कि जब तक ये अनुमति नहीं मिलेगी आप लोग डेड बॉडी नहीं लेंगे?
3: हाँ जी, हमें अपना केस दिल्ली में ट्रांसफ़र करना है. यहाँ पर हमें बिल्कुल भी, हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे साथ में न्याय होगा. हम आप लोगों से और जनता से भी अपील करते कि हमारे साथ में न्याय हो, मेरी बेटी के साथ में न्याय हो. आप सब लोग हमें सपोर्ट करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए.
5: तुषा की शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे, इन 5 महीनों के 1 महीने बाद से शादी के जो चैट वगैरह हम लोगों ने देखा है, जो पढ़ा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान थी। 3 दिन पहले भी उसने आपसे कहा था कि मम्मी मुझे आकर ले जाओ।
3: वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करता था, सही हो जाता था। हर एक माँ बाप चाहते हैं, हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए अपनी बेटी को कि भाई सब एडजस्ट करने का ही बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, शुरू शुरू में सब जगह दूसरी जगह प्रॉब्लम साथ ही है। तो अभी है ना 10-15 दिन से इससे ज्यादा वो कर दिया था।
5: उसका क्या अबॉर्शन भी करवाया गया था जबरदस्ती?
3: हाँ जी। और मेरी बेटी को, मेरे हस्बैंड को भी गंदा गंदा बोलता था, बोलता था नाक रगड़वा की माफी मांगवा यार, क्या क्या बोलता था। वो सारी चैट मैंने दे रखी है वहाँ पर।
5: उसके ससुराल वालों की तरफ से एक चैट सामने आई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो भी लगातार ट्विशा को पैसे दिया करते थे, हालांकि वो अपने पिता से भी लेती थी पैसे।
3: कोई भी नहीं पैसे नहीं दिए, बस यही है कि जब वो थोड़े बहुत पैसे डालता हुआ सारे उसमें अपने उसमें ही करवाता हुआ, हमें तो इस बात का कुछ भी मालूम नहीं है।
4: मैडम एक बार बताइए, अगर पैसे देते थे तो कोई लड़की अपनी टिकट के लिए पैसे मांगेगी अपने पेरेंट्स से? उसकी 15 तारीख की टिकट थी आने की, उसे 3,000 रुपए उसके पास टिकट्स के नहीं थे। वो अपने पेरेंट्स से बोल रही थी पापा मुझे पैसे दे दो, मुझे टिकट्स करानी है, पापा से बोलो मुझे पैसे भेज दें।
3: उसको 13 तारीख की टिकट हुई है हमारी, फिर 15 तारीख की उसने करी है, तो वो उसके मोबाइल में ही हो गई, उसने पैसे मांगे, वो वाली चैट मेरे पास में है।
4: अगर ये इतना पैसे देते तो वो 3,000-3,000 रुपए नहीं मांगती हमसे।
5: क्या कुछ चैट वगैरह आपके पास है? हालांकि वो चैट जरूर NDTV के स्क्रीन पर लगातार कल से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अभी आपके पास वो कोई चैट ऐसी है फिलहाल? अभी ये बिल्कुल देखिए, ये तनिषा की सिस्टर है।
0: ऑलराइट, दैट वाज तुषार्स मदर एंड तुषार्स सिस्टर स्पीकिंग टू NDTV. Absolutely distraught at the moment and all reasons to be, but some very big claims being made there by Tusha's family. I have Anurag joining me live. Anurag, we just heard from a very distraught mother of Tusha, and she talks about how they want an SIT probe, how there seems to be influence in the case given the background of the family Tusha was married to. Hence, they want this case to be transferred to Delhi. They also want a second post-mortem to be done.
6: Yes, claims and counterclaims, but the unfortunate part, still the body is lying in the mortuary of AIIMS in Bhopal. And the family yesterday, they had a meeting with the OSD of the chief minister, and after that they said they're not satisfied. They want a second post-mortem to be conducted at AIIMS in Delhi. These were the demands of the family. They want proper investigation, but we have different documents, including the post-mortem report of Tusha, which says that she died due to antemortem hanging by ligature, indicating she was alive when hanged. So, and the report also mentions multiple antemortem injuries over the parts of the body. But one more, sensational claim by the mother-in-law of Tusha Sharma. Unfortunately, she's not there to defend herself, but you have heard her parents, they're saying clearly that the in-laws and the husband Samarthing never used to give any money to Tusha. But we have the screenshots of the payments made by Samarth Singh and the mother-in-law Giribala to Tusha Sharma. And Giribala Singh, in her application for the anticipatory bail, has claimed inside the court that Tusha displayed withdrawal symptoms when deprived of narcotics. She was being treated by psychiatrist Dr. Satyakant Trivedi, a noted psychiatrist of Bhopal. She was also referred to counselor Kakoli Rai. Her behavior reportedly changed significantly after pregnancy and later miscarriage. And they are saying, the in-laws are saying, that no dowry was ever demanded. Tusha received regular financial support through online transfers ranging from 5,000 to 50,000. And one screenshot also says to the tune of 95,000. Her in-laws were actively supporting her treatment and lifestyles. So these claims have sharply escalated tension, with Tusha's family claiming them an attempt to malign her character after death. But these are the claims made inside the court by a retired judge, Giribala Singh.
0: All right, Anurag, do stay with me. I also have Tejshree, and I'm going to come back to you, Anurag. I have more questions for you. That anticipatory bail plea also coming up, as you had mentioned some time back. But Tejshree, we're now getting to know that Thwisha had been messaging her parents, and there is evidence of that as well, where she had told her parents that she's very distressed and that the people that she's living with, her husband and her in-laws, are vile and suspicious. And also goes on to say on a message to her parents on the 7th of May, that they should come and take her away because those people will not let her live, quote unquote. What details can you share with us about her, you know, outreach to her parents over and over again? You can sense the desperation, you can sense the anxiety in those messages.
7: Well, see, Vedika, what we are also understanding is, as you have rightly mentioned, that the day on which this incident took place, days before, yes, Thwisha did extend her family, is what we are understanding as of now. And Thwisha did mention about how, you know, these all incidents are unfolding and how it is getting difficult for her to stay at that place with her in-laws. Not just that, but she had also mentioned about the continuous torture that she has been facing and the threats that her in-laws are giving her. Apart from that, she also, in fact, mentioned to her parents that they should come and take her away. And she is very disturbed. They also mentioned about this because, you know, such kind of incident had really traumatized her. And this could easily be seen, this could easily also be sensed by the kind of texts that she has been, you know, that she has been sending. And also, in fact, she has been talking about how she is feeling stuck and also, in fact, advising her friends and relatives to not to get stuck in this manner because she feels like there is no escape from the kind of situation she's stuck in, is what she feels. And she multiple times reiterated the fact that she's completely disturbed. She's not able to handle herself and she wanted some kind of help. And at that particular point of time, you know, she wanted that the family members should have come and should have rescued her. This is the kind of, you know, message or request she had put in to the parents also. Now needs to be seen, you know, that what happens next, because parents are definitely very much heartbroken. We have seen that how her mother, in fact, was also alleging that how multiple times she was tortured. And in fact, now they are demanding that since the people, the in-laws of Thwisha are highly influential, perhaps that is why the entire interrogation, investigation and the case, and for that matter, the post-mortem should take place here in the national capital. Back to you, Vedika.
0: To stay with me, we also have a police representative's reaction coming in on this big story here on Breaking Ground.
8: तुषार सावन वाले मामले में अभी क्योंकि प्रकरण अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो और जितने टीम द्वारा एसआईटी गठित है तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो फरार हुई है तो उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है, साथ ही साथ उस पर नाम घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है।
9: सर, इसमें अंतिम संस्कार के लिए, क्योंकि अभी तक फैमिली ने बॉडी ली नहीं है, तो फिर अंतिम संस्कार के लिए क्या आप अपील करेंगे कोर्ट में?
8: अभी अंतिम संस्कार के संबंध में प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया था, तो इस पर से जब परिजनों को अवगत कराया गया तो परिजन री पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा सीपी महोदय भोपाल को भी आवेदन दिया गया है और वो अपनी बात कोर्ट में भी रखेंगे। अब जो भी निराश है सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश दिए।
9: प्राइमरी रिपोर्ट में क्या सामने आया है, क्या सुसाइड है या फिर कुछ और भी एंगल निकल कर आए?
8: जो पीएम रिपोर्ट है, डिटेल पीएम रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें कॉज ऑफ डेथ एंटीमार्टम है।
9: सर, इसमें उनकी सास जो हैं गिरवाला सिंह, उनके द्वारा भी कुछ आरोप लगाए गए हैं जिसमें ड्रग एडिक्ट की भी बात आई है, तो फिर क्या ऐसा कुछ भी सामने आया है अभी पीएम?
8: अभी पीएम में तो ऐसी कोई भी चीज़ अभी नहीं आई है और पीएम रिपोर्ट के संबंध में परिजनों को कुछ क्वेरी थी और हम लोगों को इसमें कुछ क्वेरी करनी थी डिटेल में, तो इस संबंध में क्वेरी के लिए हम जो प्रशासन है प्रबंधन उनको भी एक लेटर लिखा गया है और जो लैंग्वेज में मटेरियल है उसके संबंध में भी दिया गया है, संभवतः आगे रिपोर्ट आ जाएगी, उनकी स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी।
10: सर, वो परिवार वाले आरोप भी लगा रहे हैं कि वो पट्टा नहीं दिया गया तब बाद में दिया गया, उसको लेके क्या किया जा रहा है और जो विवेचक है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?
8: लैंग्वेज में मटेरियल के संबंध में तथ्य आए हैं सामने, तो उसमें चूंकि लैगेज मटेरियल उसमें जब्त हो गया था, लेकिन जो तत्कालीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे उनके द्वारा पीएम के साथ वो नहीं दिया गया था, तो इस संबंध में उनकी भूमिका देखी जा रही है और जिस तरीके से आपके सामने निश्चित तौर पर बयान था।
0: Going back to our reporters, we have Anurag joining me as well as Tejshree. Anurag, coming to you, The big question right now is, where is Samarth Singh, the husband of Twisha? He is on the run. We're expecting his anticipatory bail plea hearing to come up. There are some details that have emerged that you have brought to us in terms of the defense that the Singhs are presenting in this case, at a time when you have Twisha's family stating that they want an SIT probe, they want this hearing to be moved to the Supreme Court here in the national capital, and they also want another post-mortem to be conducted in the case.
6: Yes, the bail plea, the anticipatory bail plea hearing of Samarth Singh will start soon here in Bhopal. But you also, a very important information by the, you know, SIT chief Rajneesh, there you must have heard, he has mentioned about that particular belt. And now they are saying that they will take action against the investigating officer, because that belt was not provided to Bhopal AIIMS, so that they should have ascertained that the injury marks on her neck was because of that particular belt or not. So at that time, that was not provided to the Bhopal AIIMS, and the body is still lying there. So the family have few basic questions, and they're not satisfied with the procedure here. They are saying that they want second postmortem in Delhi, in AIIMS Delhi, and then only they will take the body. But the police here in Bhopal are now saying that they will again make a request to claim the body, and if not, they will go ahead with the legal provisions.
0: You know, Anurag, let's also talk about the claims being made by the family members at this point. I'm talking about Twisha's family here. They've been talking about how the timings of the hearing has been changed, how they've been moved from one court to the other, how Twisha's mother was heckled, how bail almost uncontested took place when it came to Twisha's mother-in-law. A lot of concerns being flagged here by Twisha's family.
6: See, the judge recused herself because she worked as a junior to Giribala Singh, and that's why she made a request, and that's why the hearing was transferred to another court. So that is the legal reason for that particular claim made by the family of Twisha Sharma. But yes, the bail plea of Samarth Singh is yet to come, but still it's been almost 5 days since the police have filed the FIR and he was not arrested. So there are a few concerns, there are a few questions as pointed out by the Assistant Commissioner of Police also. So, the family has raised few valid questions.
0: Yes, many. Yes, many valid questions there. There is some breaking news coming in on this story. Let's just bring you the details. The probe is intensifying in Twisha's mystery death. What we're getting to know here on Breaking Ground is that the post-mortem report has revealed anti-mortem hanging. Twisha's family has demanded a second post-mortem, and the police will announce a reward if someone finds the absconding husband, Samarth Singh.
11: जब एफ आई आर हो चुकी है
12: आपने जी, FIR होने के बाद हमारी तुरंत गिरफ्तारी की डिमांड थी, जिसमें गिरफ्तारी के उसी दिन एंटिसिपेटरी बेल लगा दी गई गिरिबाला सिंह जी की, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी कायदे से।
13: SIT गठित हो रही है, उसके बाद
12: एक एक करके लेना सवाल
11: जी, इसमें बताइए।
12: तो जब FIR लॉन्च हो जाती है तो गिरफ्तारी शुरू हो जाती है। यहाँ पर हमें कानून बताया जा रहा है कि हम प्रोसेस में चल रहे हैं, एक बैलेंस बना के चल रहे हैं, तो ये बैलेंस शब्द क्यों यूज़ किया जा रहा है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि

0: बेल की कॉपी लेके घूम रहे हैं सारे ऑल इंडिया कि ये आपके कोर्ट लें, एंटीसिपेटरी बेल दी है इन ग्राउंड्स पे, एज के ग्राउंड पे, रेपुटेशन के ग्राउंड पे। एज और रेपुटेशन के ग्राउंड पर अगर एंटीसिपेटरी बेल मिल रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कानून का मतलब ही खत्म होता है। अब इसके बाद में हम कानूनी प्रोसीजर से जाएं, मतलब एक विक्टिम होने के बाद में मैं इनके काले सख्त कानूनों को फेस करूं। मैं यहां पर अकेला बेटी, मरी हुई बेटी का बाप यहां पर आया हूं, तो मेरे को इतने ज़्यादा कानून और इतने ज़्यादा उससे मेरे को फाइट करना पड़े, तो फिर इस कानून को बनाए क्यों? मुझे अपना जस्टिस लेने के लिए इतनी फाइटिंग करनी पड़ रही, जिसके लिए आप नारी बंधन कह रहे, इसको नारी बंधन अपने एस्टेब्लिश महिला थाना हमारी जीरो FIR लेने के लिए मना कर रहा, जीरो FIR लेने के लिए मना कर रहा, उसके लिए आपको पता है मीडिया कराई करा जब जाकर के उसने हमारी FIR 15 तारीख की रात को FIR लॉन्च की है ना, उसमें भी बहुत त्रुटियाँ हैं। ये सारी चीज़ें आप पूरा अगर प्रोसीजर देखें, पुलिस ने माँ बाप को इन्फॉर्म नहीं किया कि उनकी बेटी की डेथ, उन्होंने कहा कि ये किसी ने कर दिया, आपको इन्फॉर्म यही काफ़ी था, क्या उनकी ऑफिशियल ड्यूटी नहीं थी हमें बताना कि अभी पुलिस कहाँ आई? पुलिस ने बताना चाहिए कि हमको एम्स में बुलाया गया ना, बोर्ड थाना जब एक कदम की दूरी पर था, एक मिनट के अंदर पुलिस वाला भाग करके, आपको मैं बता रहा हूँ 60 सेकंड के अंदर मोर और उससे भी कम समय में इनके घर पे पहुँचा जा सकता था, तो कोई पुलिस वाला फंदे से उतारते टाइम बॉडी क्यों नहीं आया? बॉडी बहुत सारी इसमें है कि बॉडी को आपने स्पेशली CCTV कैमरे के अंदर लेके, आपने क्यों CCTV कैमरे लगाए घर में, कब लगाए थे, क्या आपका प्री प्लांट कुछ था कि ताकि आपको दिखाने की जरूरत पड़ जाएगी? ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने जब ये पूरी, उसके बाद में जब पुलिस आपके घर गई, आपको एम्पल टाइम दिया गया, आपकी सीजिंग इम्प्रॉपर हुई, आपके जितने भी सीजिंग होनी थी फोन्स की, टेलीफोन्स की, बयानों की, वो बुर की धक्के उड़ा दी, आप क्या लाए की उम्मीद कर रहे हैं?
1: सर SIT से बन गई है,
0: SIT तो सर देखिए SIT भी तो उन्हीं लोगों के बीच से बनी है ना कि जिसकी वजह से हम इतना तड़प रहे हैं।
1: तो आप क्या चाहते हैं?
0: हम तो सर इंडिपेंडेंट SIT चाहते हैं, इंडिपेंडेंट
1: SIT से आप संतुष्ट नहीं
0: है? बिल्कुल नहीं है सर, हमें ये चाहिए कि बाहर की निगरानी हो इसमें, सुप्रीम कोर्ट के अंडर SIT का गठन होना चाहिए। इतने रसूखदार लोग हैं सर, कहाँ न्याय मिलेगा सर? इनका लोकायुक्त सर, इनका घर, इनके सारे लोग घर के, इनके सारी जगह सारे डिपार्टमेंट में हायर पोस्ट पर लोग बैठे हैं सारे के सारे, सारे थ्रेट्स आ रहे हैं, फोन्स आ रहे हैं सारी, हमारे को लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में हम खड़े हुए, आपने देखा पुलिस भी इनके साथ।
1: अभी क्या चाहते हैं?
0: अभी तो हम यही चाहते हैं ना कि न्याय मिले सर। ये न्याय कैसे मिलेगा सर अगर इतने लोगों के बीच में हमारी जांच जाए बाहर, इसको रेयरस्ट और रेयर के मान के क्योंकि इन्फ्लुएंस लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहाँ पर कार्रवाई निष्क्रिय हो चुकी है। हम आप देखिए गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक, कोई गिरफ्तारी नहीं। जी जी,
1: जब FIR हो चुकी है
0: आपने जी, FIR होने के बाद हमारी तुरंत गिरफ्तारी की डिमांड थी, जिसमें गिरफ्तारी के उसी दिन एंटीसिपेटरी बेल लगा दी गई गिरीबाला सिंह जी की, तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी कायदे से।
2: SIT भी गठित हो रही है उसके बाद,
0: एक एक करके लेना सवाल
1: जी इसमें बताइए।
0: तो जब FIR लॉन्च हो जाती है तो गिरफ्तारी शुरू हो जाती है, यहाँ पर हमें कानून बताया जा रहा है कि हम प्रोसेस में चल रहे हैं।
3: That is Swisha's father there speaking with the media. He's been talking about the struggles they have been facing over the last few days ever since the death of his daughter. He even claims that they've been receiving constant threats via phone calls and messages, and he goes on to say that we find ourselves trapped in a situation where our very lives are at risk. He even alleges that in this case the police appear to be siding with Swisha's in-laws. Anurag standing by along with Tanush, with Tejshree. Tejshree, I want to understand from you before I go back to Anurag on this. These are very serious claims being made by a father who has had to actually go door to door in terms of seeking justice for his dead daughter. He talks about the fight that will continue, but he feels defeated in many ways because everything seems to be going against them. He's claiming that there have been death threats to him and his family. You've heard from the mother as well, who's spoken about how there seems to be, this seems to be a travesty of justice where power seems to be outrunning justice in this case.
4: Well, absolutely, Vedika. You see, there have been several loopholes that have been highlighted by the father. There are several questions that the father of Trisha is raising. We have just heard that how, you know, father was heartbroken and he was also, in fact, continuously question the system and administration for not taking action on time, number one. Number two, he was also, in fact, mentioning about why there was a delay in filing the FIR, despite the fact

0: that the police station was quite close to their house. Number two, three, in fact, he also highlighted the fact, he's also in fact questioning so as to why there is no zero FIR being, you know, being registered as of now. And also, in fact, he's demanding that an independent probe should take place because the family of the victim believes that the father-in-law, the mother-in-law, for that matter, the accused family is highly influential. And because of that, it could also hamper the investigation. Not just that, they are also, in fact, you know, believing that they could also tamper the evidences is what the father stated. However, they are also, in fact, mentioning again and again that they want that the case should be transferred here to the national capital, for that matter, say it be the postmortem or the investigation or the court or the, you know, court case as well. They do not want anything to happen in the state of Madhya Pradesh because the family could influence is what they are afraid of. Needs to be seen, you know, that what happens next and when the family of Krisha agrees to cremate her body. Back to you.
1: All right, and the father also claiming there that the police didn't inform them about the death of their daughter. Anurag still with us. Anurag, I want you to take us through the details you have on the husband and the mother-in-law. The family of Krisha alleging they're highly influential. Why is that?
2: See, Giribala Singh is a retired judge and Samar Singh is a criminal lawyer in Bhopal. So the family is influential. They have, you know, their relatives are at different senior positions in the government also. So the family is influential. But just for the sake of clarity for the viewers, just a timeline again.
1: Yes.
2: On May 11th, Krisha returned from a beauty parlor. This is what being claimed by the her in-law's family. She spoke to her mother on the phone. During the call, she reportedly sounded distressed. The call disconnected abruptly. Later that night, around 10:30 p.m., she was found hanging on the terrace. Next day, the postmortem was conducted at Bhopal Ames. And the next day, on 13th, the FIR was registered. And since then, Samar Singh is absconding. A police team, is tracking the movement of Samar Singh. And as per the highly placed sources in the police department, they are saying that they are very close to, tracing Samar Singh, but he's yet to be arrested. And that's the question raised by the family members of Krisha, that why he's not being arrested even after the FIR, which was filed 2 days after when Krisha died.
1: Anurag, my question to you also is this. Why is the family demanding a second post-mortem be conducted, that too in the National Capital Region, in New Delhi, in fact? Why are they making that demand when the first post-mortem report is already out?
2: Yeah, as per the first postmortem report, the first postmortem report also clearly says that she died because of anti-mortem hanging by ligature, indicating she was alive when she was hanged. And the report also mentions multiple anti-mortem injuries, wounds, and sustained before the death over parts of the body. So this raises few questions, and the additional commissioner of police Rajneesh Kashyap has also said that they are investigating that why that particular piece of belt was not submitted to Bhopal Ames for the post-mortem. So these are a few serious questions in front of the Bhopal police also, and these are the questions being raised by the family members of Krisha also, and that's why they want a second post-mortem to be conducted at Ames in Delhi.
1: Okay, Tej Shri and Anurag, thanks for joining me live. A very quick recap of the final moments before Krisha's death. Let's just bring it to you. At 10:05 p.m. on the 12th of May, Krisha made a distress call to her mother, like Anurag also just pointed out. And she claimed harassment by her in-laws and shared details of the ordeal she was facing inside her husband's home. During the emotional conversation, the call was suddenly disconnected after Krisha's husband reportedly entered the room while she was talking to her parents. Alarmed by the abrupt silence, the family immediately began making repeated attempts to reach out to her to contact her via the phone line. But there was no response, neither from Krisha nor from any member of the family inside that house in Bhopal. Nearly 10 minutes later, at around 10:15 p.m., the in-laws finally answered the phone. But moments later, at approximately 10:20 p.m., the family was informed that Krisha was, quote-unquote, not breathing. She was rushed to the hospital. We don't know how long it took for the body to be taken to the hospital. That's another big question right there, where doctors declared Krisha dead on arrival. Several big questions there. You have that anticipatory bail plea hearing coming up. The man in the midst of this entire incident, Samarth Singh, is on the run. He is the husband of Twisha. The mother-in-law is out on bail. The family claims that this is an influential family. They want justice. They want this case moved out of Bhopal to New Delhi. They want an SIT probe into it. They want the Supreme Court to hear it. They want a second post-mortem to be conducted. But that's not the only disturbing story where an allegation of dowry has been made. A 14-month-old marriage has ended in tragedy in Uttar Pradesh's Greater Noida. A 25-year-old woman, Deepika, died after allegedly falling from the third floor of her in-law's home. Her family has accused her husband and in-laws of dowry harassment and murder, alleging demands for a Fortuna SUV and 50 lakh rupees in cash. According to the complaint, Deepika had called her family on the 17th of May, which is yesterday, claiming she was being thrashed by her husband and in-laws. Hours later, relatives were informed that she had fallen from the roof and suffered critical injuries. Police have arrested the husband and father-in-law while further investigation continues in this very disturbing case.
3: भैया मैं वो पते ना कुछ भी कहा करो हुयो मेरी की गए
4: अच्छी वाली गई हमारी बेटी तो यहां से
3: भैया मैंने तो अच्छी खुशी अरे मोटा तो कल भी अच्छी बतलाई ओ मेरी लाडो
5: कैसे पता लगी आपको
4: इन्होंने फोन करा था
3: फोन आया उनको ही
4: फोन आया ओ अब तुम्हारी बेटी लीने पर से गई थी
6: आवश्यक विधि कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।
4: हमारी बेटी को कुछ नहीं होता राजी खुशी गई थी यहाँ से उन्होंने फोन करा कि जी तुम्हारी बेटी छत से गिर गई उसके पापा मिलके आए थे 11 बजे रात अच्छा कुछ भी नहीं था राजी खुशी अपनी बेटी से मिलके आए थे हमें रात को फोन आता 11 बजे हम यहाँ से सब जाते 1 बजे फोन करा उन्होंने अब तुम्हारी बेटी गिर गई हमने वहां जाके देखी तो खूब तो उन्होंने मार रखी थी और छत से उठा के नीचे फेंक दी हमें जगह हॉस्पिटल में लेके गए हॉस्पिटल वालों ने ये कह दीजिए ये तो खत्म हो गई अब ये बताओ हमें क्या चाहिए हमारी बेटी मार दी जीते जी ये बताओ है? क्या कुछ नहीं दिया था हमने बहुत तगड़ी शादी करी थी अपनी बेटी की और अच्छे से पाला था उसको और आज उन्होंने मार दी हमारी बेटी की
1: My colleague Akhil now joins me from Noida on this very disturbing story. Akhil, you have the family members there claiming that this is not a case of suicide as alleged by the in-laws, but a case of murder. There has been constant dowry harassment. What's the latest in terms of the probe? We do know that the father-in-law and the husband of Deepika have been arrested.
7: Well, that's right. If you see at this stage, what we have seen that an FIR has already been lodged to the accused. Father has already been held. So two persons have been held so far and their interrogation is going on regarding this entire process. Because earlier what we have seen that the victim's family members, they have alleged that there has been like an incremental dowry which has been going on for the last 14 months. If you see, initially when the marriage has taken place on 11 December 2024, since then they have been demanding dowry step by step. Initially, they have demanded 11 lakh cash and after that what we have got to learn that they have also demanded a Scorpio car and after that they have also given jewelry worth 50 lakh rupees in multiple phases. Like I'm joined by one of the family members over here. Achche, mujhe ye bataiye, shaadi jis waqt hui, us waqt jahez diya gaya, uske baad phir Fortuner car ki demand ki gayi, phir cash maanga gaya, jis waqt shaadi hoti hai, us waqt 50 lakh cash diya gaya. उसके बाद जब कैश मांगा गया तो रुके क्यों नहीं आप लोग पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं की
8: ठीक है करीब 14 महीने पहले शादी की गई थी और जब शुरुआत में शादी होती है तो उस टाइम पे अपनी मर्जी से जो बेटी के लिए जो परिवार देता है बस उस हिसाब से शादी की गई थी कि एक सक्षम परिवार में अगर हम शादी कर रहे हैं तो बेटी के लिए जितना एक पिता कर सकता है उतना उन्होंने किया अब पिछले कुछ महीने से जब इनकी तरफ से इस तरह का प्रेशर आया तो परिवार ने सोचा कि क्योंकि बेटी का घर बसा रहे इसलिए कंप्लेंट तक बात नहीं पहुंची। हमारा प्रयास यही रहा कि एक बार सामने बैठ करके शांति से बात की जाए। इसी क्रम में कल भी जो बेटी के पिता हैं वो कल भी गए थे वहाँ पर, उन्होंने जाकर कल बात भी की और सुलझाने की पूरे मुद्दे को कोशिश की। और उस जैसे ही वो घर लौटे, घर लौटने के करीब आधा या एक घंटे के बाद में ही उनके पास कॉल आ गई कि आपकी बेटी गिर गई है।
7: अभी जो केस का स्टेटस है, मेरे ठीक पीछे मॉर्चुरी सेंटर है, डॉक्टर्स आए हैं, क्या कह रहे हैं, कितने देर लगेंगे पोस्टमार्टम होने में?
8: हम सुबह 6-6:30 बजे के आसपास से यहाँ पर हैं और अभी शायद कोई डॉक्टर नहीं आए क्योंकि दो पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम किया जाना है और पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की मांग भी की गई थी, तो शायद इसी क्रम में अभी ये देरी हो रही है। हालांकि अब तक हो जाना चाहिए था क्योंकि पूरे गांव से लोग और पूरा परिवार रात के 1 बजे से ही परेशान है, तो इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि परिवार पहले से ही कितनी परेशानियों में है।
7: क्योंकि आप देखें यहाँ पे मैं अपने विजय से रिक्वेस्ट करूँगा, ज़रा सिर्फ परिवार नहीं है, आसपास के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अभी यूपी प्रशासन से आपकी क्या मांगे?
8: हमारी मांग है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और क्योंकि जो ये लड़की के ससुर हैं ये राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति हैं और भूमाफिया हैं, तो इनका पुलिस प्रशासन के साथ में संबंध या राजनेताओं से भी संबंध है, तो हमें शक है कि ये इस मामले को प्रभाव में लेने का प्रयास कर सकते हैं, तो इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और इनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाए और एनकाउंटर किया जाए।
7: सो वेदिका, इफ यू सी, इट विल टेक अनदर 3 to 4 hours टू कंप्लीट द पोस्टमार्टम। जनरली व्हाट वी हैव बीन सीइंग ओवर हियर दैट राइट नाउ द पोस्टमार्टम प्रोसेस हैज नॉट इवन स्टार्टेड येट, सो इन द नेक्स्ट 3 to 4 hours इट विल बी द विल गेट द क्लियर पिक्चर दैट आफ्टर दैट वंस द पोस्टमार्टम विल बी डन द बॉडी विल बी हैंडेड ओवर टू द डिसीज्ड फैमिली मेंबर्स एंड आफ्टर दैट फॉर द लास्ट राइट्स द बॉडी ऑफ द डिसीज विल बी टेकन फ्रॉम नोएडा सेक्टर 94 रीजन टूवर्ड्स द ग्रेटर नोएडा वेयर द फैमिली मेंबर लिव्स।
1: एंड अकील विल ब्रिंग यू द डिटेल्स ऑफ व्हाट द पोस्टमार्टम रिपोर्ट स्टेट्स। वेयर अकील आवर कॉलीग देयर एट नोएडा ब्रिंगिंग यू ऑल द लेटेस्ट। ऑल्सो स्पोक टू दीपिका'स ग्रीविंग फादर संजय नागर who is demanding justice for his daughter. Listen in.
5: लड़की को बहुत ही प्रताड़ित किया जाता था और मैं कई बार वहाँ पे गए भी और मैं कल भी वहाँ पे गया था। बाकी उन्हें समझा के बुझा के वहाँ से जैसे ही मैं आधे घंटे बाद मेरे पास फ़ोन आता है और जो फ़ोन आता है वो मनोज का आता है, तो मनोज कहते हैं कि आपकी बेटी जो है वो
7: मनोज कौन है?
5: मनोज है लड़की के ससुर। हाँ,
7: क्या कहते हैं?
5: वो कहते हैं कि आपकी जो बेटी है दीपिका वो गिर गई है। मैंने उन्हें फ़ोन पे तुरंत पूछा कि गिर कैसे गई है, मतलब सीढ़ी पे गिर गई है या बाथरूम में गिर गई है, मैंने उन्हें पूछा, तो वो कहते हैं कि नहीं, तीसरी मंजिल से गिर गई है और हम उसे जो है वहाँ
7: पे रेलिंग लगी हुई थी।
5: हाँ, रेलिंग लगी हुई है, कोई ताकत नहीं की किसी तरह से गिर जाए।
7: वो जो गिरी है तो उसमें उसके बदन पे शरीर पे बहुत ज्यादा चोट है,
5: निशान है, मारपीट के पूरे निशान है और मारने के बाद ही उसे नीचे फेंका गया।
1: All right, we're going to be slipping to a short break. Once we come back, we'll turn our focus to Keralam, the state which has got a new chief minister. In moments from now, we'll bring you more details on V.D. Satheesan.

0: big story here on NDTV. Nobody else has these details. Thank you for all the support. Thank you for the viewership. Thank you for the love.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्टियर मसाला।
4: एक्सेलेंस मेजर्ड बाय दोज हु बिल्ट इट। प्रेजेंटिंग द जूरी ऑफ द एनडीटीवी प्रॉफिट बिजनेस लीडरशिप अवार्ड्स। सुनील भाटी मित्तल चेयरमैन ऑफ द जूरी, फाउंडर एंड चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस। नोएल नवल टाटा चेयरमैन टाटा ट्रस्ट्स। UK Sinha, former chairman SEBI. Kiran Mazumdar Shaw, chairperson Biocon Group. CS Setty, chairperson SBI. Jayant Sinha, former Union Minister of Finance and Civil Aviation. Ramesh Damani, value investor and member of BSE. Cyril Shroff, managing partner Cyril Amarchand Mangaldas. NDTV Profit Business Leadership Awards, honoring excellence. Coming soon.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
2: Across the country,
3: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
6: सबका राजा आर प्योर मसाला।
7: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज़ रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। जॉइन मी गार्गी रावत एज आई ट्रैक ऑल द डेवलपमेंट्स एज दे ब्रेक। लाइव फ्रॉम द NDTV न्यूज़ रूम, weekdays at 4 p.m.

0: Welcome back. Prime Minister Modi is now in Oslo, Norway, the latest stop in his five-nation diplomatic tour, where he was personally received by the Norwegian Prime Minister amid a warm ceremonial welcome. Moments after landing, the Prime Minister was greeted by enthusiastic members of the Indian diaspora, something that's become part and parcel of the Prime Minister's visits abroad. There were chants, tirangas, a rousing reception marking his arrival in Norway. The Norway visit comes after a high-profile two-day trip to Sweden, where the Prime Minister held key talks focused on trade, artificial intelligence, defence cooperation and green transition initiatives. During his visit, Prime Minister Modi was also conferred Sweden's highest civilian honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander, Grand Cross for strengthening bilateral ties and global leadership. At a joint briefing, Prime Minister Modi announced that India and Sweden had elevated ties to a strategic partnership.
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया। भारत और स्वीडन ने के संबंध लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट की मजबूत नींव पर आधारित है। हम दोनों इनोवेशन को विकास का माध्यम मानते हैं, सस्टेनेबिलिटी को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और डेमोक्रेसी को अपनी ताकत मानते हैं। आज की बैठक में हमने इन समानताओं के आधार पर आगे बढ़ने पर चर्चा की। हर क्षेत्र में हमारे बढ़ते सहयोग को देखते हुए हमने हमारे संबंधों को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने का निर्णय लिया। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत हम ग्रीन ट्रांजिशन, रक्षा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज तथा पीपल टू पीपल टाइज जैसे मुख्य स्तंभों पर आगे बढ़ेंगे। आज की तनावपूर्ण वैश्विक स्थिति में भारत और स्वीडन जैसी डेमोक्रेसीज के बीच करीबी सहयोग विशेष महत्व रखता है। विभिन्न तनावों और समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने सदैव डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया है। भारत और स्वीडन सहमत है कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे। इंडिया ईयू एफटीए से इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स और इनोवेटर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे। उर्सुला जी के शब्दों में कहूं तो यह मदर ऑफ ऑल डील्स है। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप और मोबिलिटी एग्रीमेंट से हमारी स्ट्रेटेजिक और पीपल सेंट्रिक पार्टनरशिप को नई गहराई मिली है। इंडिया ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने हमारी साझेदारी को सशक्त बनाया है।
2: The European Union, Sweden and India all recognize the immense potential that lies in deepening our partnership, not least when the world is as complicated and unpredictable as it obviously is today. Prime Minister Modi, your visit marks another milestone in this history of India-Sweden relations. Today we have launched a strategic partnership and a joint action plan for our shared objectives. We upgrade and we modernize existing areas of cooperation, and we expand this cooperation to new areas shaping the future. Innovation, emerging technologies, AI, space, and geospatial technology.
3: Since you hosted me in New Delhi for our groundbreaking EU-India summit, we succeeded indeed in concluding our landmark trade agreement. We call it the mother of all deals. And just look at some of the figures. A shared market of over 2 billion people, that is close to one quarter of global GDP. Over 90% of tariff cuts. Enormous opportunity to grow trade and investment. From here in Gothenburg, Scandinavia's largest trading port, to Mundra port in your home state in Gujarat. And in doing so, creating jobs and prosperity for our people.
0: All right, let's go across to Arjun now for more. And Arjun, the mother of all deals in Sweden. What is expected in Norway now?
4: Absolutely nothing short of that. Another blockbuster expected out of Sweden as the Prime Minister. He recently, just moments ago, in fact, Gargi, touched down in capital Oslo, where he was, in fact, extended a red carpet welcome by his counterpart, Prime Minister Stor. Also in the works of the Prime Minister is a royal attendance, mind you, with King Henry and Queen Sonia of the country. Now, tomorrow is that important meeting, the third edition of the India-Nordic Summit, where, in fact, very critically, the Arctic shipping routes will be discussed. Now, this might very well become India's shortcut to Europe. Apart from that, as the Prime Minister was also mentioning, we heard technology and defence, they remain the cornerstones. We heard yesterday itself that from the Netherlands, India, has been able to get substantial amount of investment when it comes to data centres and other technological advancements. In defence specifically here, India, what it's doing now, it's trying to co-develop technology, which is a major boost for its Atmanirbhar push. Back to you.
0: All right. Thanks so much, Arjun, for joining us with those details. All right. Now, two shocking deaths are dominating the news right now. One in Bhopal and another one that's taken place in Noida. In both cases, young women have died under mysterious circumstances just a few months after getting married. In both cases, there are now allegations emerging of abuse and a possible dowry demands as well. Well, let's now focus on the case involving a young woman, Twisha. And just 5 months after her marriage, the mysterious death of the 33-year-old Noida woman, Twisha Sharma, is raising some serious questions. While her family alleges harassment and foul play, the in-laws have claimed it was a case of suicide. Twisha's father has accused her husband and mother-in-law, who is a retired judge, of being the key accused and claims the family is receiving threats now through calls and messages. The probe has intensified after Twisha's last chat surfaced online, where she wrote, "I'm trapped." Her final messages to her mother were even more chilling, saying, "They won't let me live." Investigators are now examining the crucial 15 minutes between her last call home and news of her death. The families also shared payment screenshots alleging repeated financial transactions after the marriage.
5: तुषार शर्मा वाले मामले में अभी क्योंकि प्रकरण अंदर इन्वेस्टिगेशन है तो और जितने टीम द्वारा एसआईटी गठित है तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य हैं वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं साथ ही साथ जो फरार आरोपी है तो उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है साथ ही साथ उस पर नाम उद्घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है अभी अंतिम संस्कार के संबंध में एम्स प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया था तो इस पर से जब परिजनों को अवगत कराया गया तो वो परिजन री पोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं इस संबंध में उनके द्वारा सीपी महोदय भोपाल को भी आवेदन दिया गया है और वो अपनी बात कोर्ट में भी रखेंगे अब जो भी निराकरण है सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश दिए जाएंगे
0: All right, and we'll continue to track this story closely. We also spoke with Twisha's cousin. Let's listen into what she had to tell us.
6: इस वक्त मेरे साथ ट्रिशा की वो सिस्टर मौजूद है मीनाक्षी, जिनके साथ उन्होंने लास्ट चैट किया था और उसे भी कहा था कि मैं फंस गई हूँ, तुम इस परेशानी या इस बर्बादी में मत फंसना। ट्रिशा की सिस्टर मीनाक्षी, मीनाक्षी एक चैट वायरल हो रहा है जिसमें किसी मीनाक्षी नाम की लड़की से बात हो रही है, वो मीनाक्षी आप हो और क्या कह रही है आपको ट्रिशा?
7: मैम मेरे को सैटरडे नाइट में, मैं उसको बहुत दिन से फ़ोन ट्राई कर रही थी बट वो मुझे बार बार यही बोल रही थी मैं कॉल करूँगी, कॉल करती हूँ, अभी यहाँ पे सब लोग हैं, मैं कॉल करती हूँ। तो उसके एक अचानक से मैंने और उसको अपना एक फ़ोटो भेजा, एक इमोशनल फ़ोटो, तो मेरे को लगा शायद से अब ये कॉल करेगी ये देख के। तो उसने मुझे उस फ़ोटो पर ये रिप्लाई किया, आई एम ट्रैप्ड, तू मत फंसना बस। और फिर मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा आई एम वरीड अबाउट यू, प्लीज़ मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। उसका कोई कॉल नहीं आया। सैटरडे नाइट मेरे पास ये मैसेज आया है, उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास खबर आई है।
6: बहनें सहेलियां होती हैं और जिस तरीके से वो आपसे बात कर रही, क्या उसने शादी के बाद वो उन तमाम तकलीफ़ों को आपको बताया था, वो जिन तकलीफ़ों से वो गुजर रही थी?
7: मैम शादी से पहले मतलब मैं और वो हर रोज़ मिला करते थे, हर रोज़ हम लोग घूमने जाया करते थे, हमारी हर रोज़ बात होती थी। कभी ऐसा मतलब इतना इतना इतना जॉली, इतनी हैपनिंग लड़की थी। और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहती वही फैमिली में यार पता ही है शादी के बाद ये होता है, मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है। ऐसे ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए, क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए। 15 किलो उसका वेट लूज हुआ।
6: कैसे उसको तंग किया करते थे, क्या परेशान करते, क्या सेक्सुअल हैरेस भी उसका पति उसको किया करता था, मारा पीटा करता था, क्या सास भी मारती पीटती थी? उसने आपसे बताया था कभी ये?
7: मैम उसने मेंटली हैरेसमेंट का अपनी मदर को बताया है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था उसको। उसकी जॉब छूट गई थी ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि भोपाल में वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, बट ड्यू टू सम रीज़न उसकी जॉब छूट गई थी। तो उसको इस बात पर भी हैरेस किया जा रहा था कि तू अब तेरे को जॉब कैसे मिलेगी, तू पढ़ी लिखी नहीं है। इतनी एजुकेटेड लड़की को आप बोल रहे हो तू पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब जिसने एक्टिंग करी है, जिसने मॉडलिंग करी है, जिसने मिस पुणे रह चुकी है, उसको आप बोल रहे हो कि तेरे को इंग्लिश नहीं आती बोलनी? मैम ये मतलब ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए उसके बाद उसके ऊपर कि ये प्रूव ही, ये हो ही नहीं सकता कि वो इस तरीके से उसका करेक्टर दिखाया गया है, मतलब हम लोग मान ही नहीं सकते। हम लोगों ने
6: उसके पेट के जो बच्चा था उसके लिए भी कहा गया कि ये बच्चा मेरा नहीं है, समर्थ ने ये भी कहा,
7: इसका प्रूफ भी है, उसने लिखा हुआ है अपनी मदर को क्लियरली कि मम्मी ये मेरे से ऐसे बोल रहा है, ये किसका बच्चा है, मैं कैसे शांत हो जाऊँ, कैसे मैं चुप हो जाऊँ। उसको हम समझा रहे थे कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, कैसे हो जाऊँ, उसकी क्लियरली उसकी चैट है हमारे पास।
0: Alright, so lots of disturbing information really emerging after Twisha's very tragic death. And let's take a look at some of the interactions. These are the final messages that she exchanged with her brother, saying that I am trapped. This is on Insta. This was a chat on Instagram in which she said that I am trapped, bro. Bas tu mat fasna, don't get trapped. Can't talk much. Will call when the time is right. This is a message that she exchanged. Also, her last text to her mother saying that the husband, Samarth, was questioning whose child is it. There you can see those texts that she exchanged with her mother saying, I'm very disturbed, and also that the Samarth, the husband, who is a lawyer, was questioning her pregnancy, saying, whose child is it? Saying, and she messaged her mother, I am very disturbed. So let's just listen into what her mother had to say.
8: हाँ जी, अभी तक तो हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही यहाँ पर, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा केस दिल्ली में ट्रांसफ़र हो और SSIT उसकी जांच उसका दिल्ली में हो, सुप्रीम कोर्ट में, और उसके दोबारा से पोस्टमार्टम हो। बस मेरी ये तीन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला हमारे साथ में, और हमें यहाँ पर डर है, हमें डर है यहाँ पे। परसों भी उस दिन कोर्ट में हमारे ऊपर अटैक हुआ था, कुछ लोग आके हमको कुछ भी बोल रहे, गंदा बोल रहे हैं, मेरी बेटी मतलब कि लड़कियाँ बदतमीज होती है, ऐसी होती है, ऐसे ऐसे करके हमें कि हम एग्रेसिव हों, कुछ बोल रहे हैं उनसे, ऐसे हमारे सामने कमेंट कसे जा रहे हैं ऐसे।
6: कल आप मुख्यमंत्री के OSD से भी मिली थी, आप लोगों ने वहाँ पर भी गुहार लगाई थी कि उसका सेकंड पोस्टमार्टम करवाया जाए और SIT यहाँ पर गठित की जाए, सरकार की तरफ से जो OSD है उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको
8: वहाँ पे? हमें कोई मतलब थोड़ा ऐसे बोला है, मगर ज़्यादा
9: उनका कोई नहीं था, उन्होंने हमें कोई हमें जो उम्मीद थी उनसे वो हमें नहीं फुलफिल है, हम सेटिस्फाइड नहीं है। बस हमारा वहाँ से उन्होंने बोला कि उनके ज्यूरिडिक्शन का नहीं है, ये उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, ये सिर्फ जुडिशरी का मैटर है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे हमारी हेल्प। तो हमें वहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिली है, हमारी सारी उम्मीद थी जो CM से वो

बेटी मार दी जीते जी, ये बताओ क्या कुछ नहीं दिया था हमने? बहुत तगड़ी शादी करी थी अपनी बेटी की और अच्छे से पाला था उसको, और आज उन्होंने मार दी हमारी बेटी।

0: उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, ये सिर्फ ज्यूडिशरी का मैटर है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे हमारी हेल्प, तो हमें वहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिली है। हमारी सारी उम्मीद थी जो सीएम से, वो हमारी पूरी नहीं हुई है।
1: अभी तक यही लग रहा है सारे लोग उनके ही हैं, हम लोग इधर उधर धूप में भटक रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ में।
2: 7 दिन हो गए उसके डेड बॉडी एम्स में ही पड़ी हुई है। आप लोग क्या तब तक नहीं लेंगे जब तक सेकंड पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं मिलेगी?
1: मेरी बेटी वहाँ पे ऐसे लग रहे हैं बुला हमारे से, क्या मेरे को बहुत दुख लग रहा है।
0: मैं और नहीं चाहता अपनी बेटी का डिस्क्रिमिनेशन करना, बट हमारे जो हमें वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि एम्स में उनके अपने लोग हैं, यहाँ के जब हमारे यहाँ की पुलिस हेल्प नहीं करी तो हम कैसे समझ ले कि एम्स में डॉक्टर्स हमारी हेल्प करी होगी, उन्होंने सही रिपोर्ट दी होगी, इसीलिए हमारा सेटिस्फेक्शन। अगर उनको डर नहीं है तो फिर हमारा सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए हमें अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है, अब बताइए ना।
2: बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर परेशान हैं गुहार लगा कर, पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सबसे थक चुके हैं, लेकिन क्या आप लोग का यही फाइनल फैसला है कि जब तक ये अनुमति नहीं मिलेगी आप लोग डेड बॉडी नहीं लेंगे?
1: हाँ जी, हमें अपना केस दिल्ली में ट्रांसफ़र करना है, यहाँ पर हमें बिल्कुल भी हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे साथ में न्याय होगा। हम आप लोगों से और जनता से भी अपील करते कि हमारे साथ में न्याय हो, मेरी बेटी के साथ में न्याय हो, आप सब लोग हमें सपोर्ट करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो
2: निशा की शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे, इन 5 महीनों के 1 महीने बाद से शादी के जो चैट वगैरह हम लोगों ने देखा है, जो पढ़ा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान थी। 3 दिन पहले भी उसने आपसे कहा था कि मम्मी मुझे आकर ले जाओ,
1: वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करता था, सही हो जाता था। हर एक माँ बाप चाहते हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए अपनी बेटी को कि भाई सब एडजस्ट करने का ही बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, शुरू शुरू में सब जगह दूसरी जगह प्रॉब्लम साथ ही है, तो अभी है ना 10-15 दिन से इससे ज्यादा वो कर दिया था।
3: All right, an anguished mother there. We also spoke to Twisha's cousin who described how Twisha's behavior had changed in the days and weeks leading up to her death.
2: इस वक्त मेरे साथ ट्विशा की वो सिस्टर मौजूद है मीनाक्षी, जिनके साथ उन्होंने लास्ट चैट किया था और उसे भी कहा था कि मैं फंस गई हूँ, तुम इस परेशानी या इस बर्बादी में मत फंसना। ट्विशा की सिस्टर मीनाक्षी, मीनाक्षी एक चैट वायरल हो रहा है जिसमें किसी मीनाक्षी नाम की लड़की से बात हो रही, वो मीनाक्षी आप हो और क्या कह रही है आपको ट्विशा?
4: मैम मेरे को सैटरडे नाइट में, मैं उसको बहुत दिन से फ़ोन ट्राई कर रही थी बट वो मुझे बार बार यही बोल रही थी मैं कॉल करूँगी, कॉल करती हूँ, अभी यहाँ पे सब लोग हैं, मैं कॉल करती हूँ। तो उस एक अचानक से मैंने और उसको अपना एक फ़ोटो भेजा, एक इमोशनल फ़ोटो, तो मेरे को लगा शायद से अब ये कॉल करेगी ये देख के, तो उसने मुझे उस फ़ोटो पर ये रिप्लाई किया, आई एम ट्रैप्ड, तू मत फंसना बस। और फिर मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा आई एम वरीड अबाउट यू, प्लीज़ मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। उसका कोई कॉल नहीं आया। सैटरडे नाइट मेरे पास ये मैसेज आया है, उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास खबर आई है।
2: बहनें सहेलियां होती हैं और जिस तरीके से वो आपसे बात कर रही, क्या उसने शादी के बाद वो उन तमाम तकलीफ़ों को आपको बताया था, वो जिन तकलीफ़ों से वो गुजर रही थी?
4: मैम शादी से पहले मतलब मैं और वो हर रोज़ मिला करते थे, हर रोज़ हम लोग घूमने जाया करते थे, हमारी हर रोज़ बात होती थी, कभी ऐसा मतलब इतना इतना इतना जॉली, इतनी हैपनिंग लड़की थी। और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहती वही फैमिली में यार पता ही है शादी के बाद ये होता है, मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है, ऐसे ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए। क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए, 15 किलो उसका वेट लूज हुआ।
2: कैसे उसको तंग किया करते थे, क्या परेशान करते थे, क्या सेक्सुअल हैरेस भी उसका पति उसको किया करता था, मारा पीटा करता था, क्या सास भी मारती पीटती थी, उसने आपसे बताया था कभी ये?
4: मैम उसने मेंटली हैरेसमेंट का अपनी मदर को बताया है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था उसको, उसकी जॉब छूट गई थी ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि भोपाल में वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी बट ड्यू टू सम रीज़न उसकी जॉब छूट गई थी, तो उसको इस बात पर भी हैरेस किया जा रहा था कि तू अब तेरे को जॉब कैसे मिलेगी, तू पढ़ी लिखी नहीं है। इतनी एजुकेटेड लड़की को आप बोल रहे हो तू पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब जिसने एक्टिंग करी है, जिसने मॉडलिंग करी है, जिसने मिस पुणे रह चुकी है, उसको आप बोल रहे हो कि तेरे को इंग्लिश नहीं आती बोलनी? मैम ये मतलब ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए उसके बाद उसके ऊपर कि ये प्रूफ ही ये हो ही नहीं सकता कि वो इस तरीके से उसका करेक्टर दिखाया गया है, मतलब हम लोग मान ही नहीं सकते। हम लोगों ने
2: उसके पेट के जो बच्चा था उसके लिए भी कहा गया कि ये बच्चा मेरा नहीं है, समर्थ ने ये भी कहा,
4: उसका प्रूफ भी है, उसने लिखा हुआ है अपनी मदर को क्लियरली कि मम्मी ये मेरे से ऐसे बोल रहा है, ये किसका बच्चा है, मैं कैसे शांत हो जाऊँ, कैसे मैं चुप हो जाऊँ। उसको हम समझा रहे थे कोई बात नहीं शांत हो जाओ चुप हो जाओ, कैसे हो जाऊँ, उसकी क्लियरली उसकी चैट है हमारे पास।
3: All right, so lots of serious allegations being made by the family members. Let's listen in to what the police have to say concerning the investigation so far.
5: तुषार शाह वाले मामले में अभी क्योंकि प्रकरण अंदर इन्वेस्टिगेशन है तो और जितने टीम द्वारा एसआईटी गठित है तो टीम द्वारा जो भी साक्ष्य हैं वो सब एकत्रित किए जा रहे हैं, साथ ही साथ जो फरार आरोपी है तो उसकी तलाशी के लिए बिल्कुल पुलिस लगातार लगी हुई है, साथ ही साथ उस पर नाम उद्घोषणा की भी कार्रवाई की जा रही है। अभी अंतिम संस्कार के संबंध में एम्स प्रशासन द्वारा थाना प्रभारी को अवगत कराया गया था, तो इस पर से जब परिजनों को अवगत कराया गया तो वो परिजन री पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। इस संबंध में उनके द्वारा सीपी महोदय भोपाल को भी आवेदन दिया गया है और वो अपनी बात कोर्ट में भी रखेंगे। अब जो भी निराकरण है तो सक्षम न्यायालय द्वारा इस संबंध में अग्रिम दिशा निर्देश दिए जाएंगे।
3: Let's go across to Anurag Dwari now for all the very latest. And Anurag, tell us currently where do the investigation, where does the probe currently stand? The families refuse to accept a body and they're wanting that the case be shifted to Delhi and the husband is on the run.
6: SIT has been formed, for probing the various aspects of the case and for tracking Samar Singh, the husband, a special team of... from the Bhopal police, they're saying that they have tracked the moments, but the anticipatory bail hearing is also underway in Bhopal. And for performing the last rites, the additional commissioner of police has said that they have written to the concerned authorities because the family has clearly said that they want a second post-mortem at AIIMS in Delhi, and before that, they're not going to claim the body. So the local police has also written a letter to the AIIMS, and from there, a letter has reached to the Commissioner of Police in Bhopal. So far, the court has granted anticipatory bail to the mother-in-law, retired Judge Giribala Singh.
3: All right, Anurag, and the family continues to be there in Bhopal. As we said, there are, a lot of information now coming out, especially all these messages. What do the police have to say about that? Claims by the family about the kind of messages that she was sending, which clearly show that she was under some sort of distress.
6: Yes. The Bhopal police has said that as far as addicts... they have said that they have found nothing in the postmortem. So, they have no comments to made on that part because remember that is also something, which has happened inside the court premises because Giribala Singh has submitted in her bail plea in anticipatory bail application all sorts of allegations which the family is, clearly is denying that.
3: Right.
6: She was under. She was not under any drug influence, or she never consumed any drugs.
3: Right. This is a fresh angle that has now emerged, and we'll wait to find out more from what the police are saying regarding this allegation of drugs. Now, allegations and counter allegations there. But moving on to another case now that has emerged from Greater Noida. A 14-month-old marriage ended in tragedy in Greater Noida. 25-year-old woman Deepika died after allegedly falling from the third floor of her in-laws' home. However, her family has accused her husband and the in-laws of dowry harassment and murder, alleging there were demands made for a Fortuner SUV and 50 lakh in cash. According to the complaint, Deepika had called her family on the 17th of May, claiming she was being beaten by her husband and her in-laws. And hours later, relatives were then informed that she had fallen from the roof of the house and suffered critical injuries. Police have now arrested the husband and father-in-law while further investigation is underway.
7: कितने लंबे समय से आपकी बेटी को परेशान किया जा रहा था?
8: शादी 3-4 महीने बाद ही शुरू हो गए थे जी।
7: आप लोगों ने डाउरी दी थी, डाउरी में स्कॉर्पियो कार दी, कैश दिया 11 लाख रुपए, जेवरात दिए, उसके बाद भी मांगा जा रहा था।
8: उन्हें फॉर्चूनर गाड़ी चाहिए थी जी, 51 लाख रुपए चाहिए थे।
7: तो आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं दर्ज कराई?
8: नहीं, पुलिस में क्या, तो ये सोच रहे थे एक ना जाने चल जावे, हर आदमी सोचता कि भाई आ गई बात बन जावे, पुलिस में कंप्लेंट तो जब होती है पुलिस में कंप्लेंट तो लास्ट हो गया ना, सारा ही कर दिया उन्होंने। कल तो बहुत कोशिश करी उसे बचाने की कि भाई बात बच जाए।
7: कल आपको इन्फॉर्म किसने किया, बेटी ने इन्फॉर्म किया या परिवार वालों ने इन्फॉर्म किया? कब पहुंचे आप वहां पर अपनी बेटी को देखने के लिए?
8: मैं बेटी का फ़ोन आया था मेरे पास, जो मैं उसके कहने पे मैं गया था और वहां से मिल गए, उनसे बात बात करके, उन्हें समझा के बोल के सब करके जब वहाँ से मैं निकला तो आधे घंटे बाद फिर मेरे आधे पौने घंटे बाद मेरे पास कॉल आती है कि भाई आपकी बेटी दीपिका जो वो गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ गिर गई, जीने पे गिरी है, बाथरूम में गिर गई, कहाँ गिर गई? तो उन्होंने कही वो छत से गिर गई है। तो छत से गिर गई और हम उसे जो वहाँ लेके जा रहे हैं शारदा हॉस्पिटल। तो मैंने अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को और अपनी घरवाली को लेके हम जो शारदा हॉस्पिटल पहुँचे जहाँ पे हमारी बेटी जो वहाँ पे हमें मृत मिली।
9: क्या हुआ आपकी बेटी के साथ?
10: ओ भाई हम वो तो कुछ भी न पता कहाँ हुई है। ओ भाई हम वो न पता कुछ भी भैया मैं वो पते न कुछ भी कहा करो हुयो मेरी की गए
9: अच्छी वाली गई हमारी बेटी तो जहां से
10: भैया मैंने तो
9: दादी खुशी।
10: अरे मोटा तो कल भी अच्छी बतलाई। ओ मेरी लाडो
9: कैसे पता लगी आपको? उन्होंने फोन करा
10: था आया उनको ही फोन आया। ओ
9: अब तुम्हारी बेटी जीने पर से गई
11: भैया गिरफ्तारी हो रही है। देखो एडिशनल कमिश्नर क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमारी लड़की छत से कूद के सुसाइड कर लिया। अभी पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट नहीं आई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उस डॉक्टर भी नहीं आया, थाने से कोई आदमी नहीं आया। अभी हमारे बादलपुर थाने के एसओ भी आई हैं, एसओ जी के जो दरोगा जी हैं वो भी आई हैं। इकोटेक थाने का हमारे पास एक सिपाही नहीं है
12: और वो दिखा रहे हैं ये
11: एडिशनल इस
7: FIR है वो दर्ज कर ली गई है।
11: FIR दर्ज कर ली गई है, हमें क्या पता। ये देखो क्या कह रहे हैं आप। अब मैं दिखा रहा हूँ क्लिप दिखा रहा हूँ आपको, कम से कम क्लिप। हमें क्या उम्मीद होगी?
13: ये रात हमारे पास कॉल आई उसके ससुराल से दीपिका नागर के कि आपकी बिटिया गिर गई है और आप हॉस्पिटल में आ जाइए। तो जब परिवार के लोग शारदा हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ देखा कि बेटी के ऊपर मारपीट के निशान थे बहुत ज़्यादा और वो बेसुध थी। तो डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि ये अब नहीं रही। तो उसके बाद जो ससुराल वाले थे वो वहाँ से भाग गए और बुरी तरह से मारपीट करके उसकी
7: जो शरीर पे जो वुंड्स हैं किस तरह के जख्म जो है किस तरह
13: पूरे शरीर पर कट के निशान भी हैं, मारपीट के निशान हैं, नील पड़े हुए हैं पूरे शरीर पर, काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान हैं। काफ़ी
7: कट के जो लेजन्स के मार्क, कट के मार्क्स अलग होते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान सुसाइड करता है कूदता है, ठीक है, उसके चोट अलग।
13: इसके तो कट के निशान भी हैं, पेट में एक छेद भी हो रखा है जो कि संभवतः या तो गोली मारी गई है या कोई सरिया या पेचकस नुमा कोई चीज़ उसके पेट में दी गई है।
9: हमारी बेटी को कुछ नहीं होता, राजी खुशी गई थी यहाँ से। उन्होंने फोन करा कि जी तुम्हारी बेटी छत से गिर गई, उसके पापा मिलके आए थे 11 बजे रात। अच्छा कुछ भी नहीं था, राजी खुशी अपनी बेटी से मिलके आए थे। हमें रात को फोन आता 11 बजे, हम यहाँ से सब जाते, 1 बजे फोन करा उन्होंने, अब तुम्हारी बेटी गिर गई। हमने वहां जाके देखी तो खूब तो उन्होंने मार रखी थी और छत से उठा के नीचे फेंक दी। हमें जगह हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने कह दी ये तो खत्म हो गई। और ये बताओ हमें क्या चाहिए, हमारी बेटी मार दी जीते जी, ये बताओ है? क्या कुछ नहीं दिया था हमने, बहुत तगड़ी शादी करी थी अपनी बेटी की और अच्छे से पाला था उसको, और आज उन्होंने मार दी हमारी बेटी।
3: All right, let's go across to Akhil now for the very latest. And Akhil, a lot of, you know, disturbing allegations being made by her family there, but tell us more about where the investigation currently stands. What is the police saying?
14: That's right, Gagi. If you see at this stage, what we are getting to learn that a 14-month-old marriage basically took an ugly turn, and in which what we have seen that initially there was a demand of dowry, but that demand did not end because it kept on growing. There was an incremental demand for dowry because initially what we have seen that an Scorpio car was given. Second, if you see, 11 lakh rupees of jewelry were also given. Apart from that, the cash was also given. And this kept on growing. And right now what has happened that for the last 2 to 3 months, the family has been constantly demanding for a Toyota Fortuner car. Apart from Toyota Fortuner car, they were also demanding for their businesses approximately 50 lakh rupees of cash. So there was an incremental process of dowry demand which has been going on. And what we have been seeing that Deepika Nagar kept on requesting requesting her family to meet those demands. And later on, what we have got to learn that last evening, when the things turned from verbal altercation to the physical assault, what we have seen there that Deepika Nagar was also beaten, and later on, late at night at around 12 p.m., what we have got to learn that she fell from the terrace. When the family members, the victim's family member, the deceased family members, they are the ones who called the police. At that stage, what we have got to learn that in the FIR that was filed by the Gautam Budh Nagar police team, there were seven named accused, and out of those seven

0: ईशा के ससुराल वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि ड्रग एडिक्ट भी थी, इस तरह की बातें कह रहे हैं।
1: मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा, 12 तारीख को जो लेडीज 6 बजे ब्यूटी पार्लर जा रही है, क्या वो 10 बजे सुसाइड कर सकती हैं? आप जिसकी 15 तारीख की टिकट है घर जाने की, और 6 बजे
0: घर वालों ने टिकट बुक कर रखी थी,
1: यस 15 तारीख को वो आने वाली थी
0: ट्रेन से फ्लाइट,
1: ये मेरे को आइडिया नहीं है, ट्रेन से आने वाली हुई या फ्लाइट से, और 13 तारीख को उसके घर वाले भी जाने वाले थे, कुछ इशू चल रहा था कि उसे हम ले आए, लेकिन उसके इन लॉज कहते हैं कि अगर आप ऐसे आएंगे, अगर आप ऐसे उसे लेने आएंगे तो उसके बाद उसका उसका उसका इस घर से दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो उसके पेरेंट ने सोचा कि इतनी बात नहीं बढ़ाते हैं, 15
0: घर वालों ने ये बोला कि आते हैं तो हमेशा के लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे,
1: यस अगर आप ऐसे लेने आएंगे तो कभी फिर वापस नहीं आ पाएंगे, एज ए पेरेंट्स वो यही सोचेंगे ना शांति से हो जाए। तो 15 तारीख की टिकट थी, 6 बजे वो ब्यूटी पार्लर गई और सब कुछ अपनी तैयारी कर रही थी 15 तारीख की आने की, अचानक से शाम को 10 बजे उसका फोन आता है घर वालों पे, वो कहती मैं बहुत परेशान हूँ, ये हो रहा है, वो
0: तो अपने मदर से बात कर रही थी 10 बजे दिन ये घटना,
1: यस जिस टाइम हुई घटना, और बात करते करते उसके कमरे में उसका हस्बैंड आया है समर्थ, और उसका फोन कट गया कि एकदम वो आ गए। कटने के बाद 15-20 मिनट उसके घर वाले फोन करते रहे, उनकी इन लॉज को, उनके हस्बैंड को, ट्विशा को, किसी ने रेस्पॉन्स नहीं करा, किसी ने फोन नहीं उठाया, और 20 मिनट
0: आप ट्विशा को कितने वक्त से जानते हैं?
1: मैं वैसे 7-8 साल से जानता हूँ, मेरी फ्रेंड मेरे सोसाइटी में रहती है, उसकी सिस्टर है, तो उसके माध्यम से मैं 7-8 साल से
0: मुलाकात हुई आपकी,
1: मेरी हुई है, मैं उसे मंदिर भी लेके गया हूँ, इस्कॉन मंदिर भी लेके गया हूँ, मैं जानता हूँ, वो भी मुझे जानती थी।
0: बिहेवियर वाइज कैसी थी, कैसा नेचर था?
1: आफ्टर मैरिज बहुत ज़्यादा थम गई थी, बहुत ज़्यादा उसकी चेहरे से हंसी चली गई थी, क्योंकि ये लोग शुरू से ही उसे
0: शादी हुई, तो आपके क्या भाई को या बहन को उन्होंने बताया कि किस तरह की समस्या से वो गुजर रही है या फिर क्या परेशानी है उनके मैरिड लाइफ?
1: मैं बताना चाहूँगा, शादी से पहले नोएडा में जॉब करती थी, लेकिन आफ्टर मैरिज वो भोपाल चली गई, तो उसके बाद उसने जॉब उस समय चेंज करनी थी या कंटिन्यू नहीं करी, तो उसके घर वाले उसे लताड़ते थे कि तू जॉब नहीं करती, तू कुछ नहीं कर सकती, तू बेकार है, तो शुरू से ही हैरेस करना चालू कर दिया था, बाद में
0: हैरेसमेंट लगातार होते रहा। सो सी देयर इज दिस वन पॉइंट इन कन्फैक्ट कमिंग टू लाइट दैट यू नो शी वेंट इनकम्युनिकेडो इज व्हाट द फैमिली मेंबर्स एंड द फ्रेंड्स आर हाईलाइटिंग ऑल्सो। इनफैक्ट लेट अस स्पीक टू सम मोर फैमिली मेंबर्स एंड द फ्रेंड्स हु हैव कम ओवर हियर टू डिमांड जस्टिस फॉर ट्विशा एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड इनफैक्ट व्हाट दे हैव टू स्पीक टू हर व्हाट दे हैव टू यू नो व्हाट दे have to convey the message because one thing is very
2: right. Tejshree there reporting from Jantar Mantar where that protest is taking place, a demonstration demanding justice for Twisha who died under mysterious circumstances, with her family saying that she died by suicide, her in-laws saying that, however her friends and family claiming that it is a mysterious death, and they've said that she was being harassed in the days leading up to her death. Well, let's now tell you about another case, and even as the shockwaves over the Twisha case are taking place and you know all aspects of that case are being looked at, another case has now emerged in Delhi, in Noida, just outside of Delhi in Greater Noida, where a 14-month-old marriage ending in tragedy. A 25-year-old woman in this case, Deepika, died after allegedly falling from the third floor of her in-law's home. Now, her family has accused the husband and in-laws of dowry harassment as well as murder, alleging they had demanded a Fortuner SUV and 50 lakh in cash. According to the complaint, Deepika had called her family on May 17, that's just yesterday, claiming that she was being beaten by her husband and her in-laws. Hours later, the relatives were informed that she had fallen from the roof and suffered critical injuries. Police have arrested the husband and father-in-law while further investigation is underway. Let's listen in to what has been said so far.
3: कितने लंबे समय से आपकी बेटी को परेशान किया जा रहा था?
4: बेटी को शादी के दो तीन चार महीने बाद ही शुरू हो गए थे जी।
3: शादी में जो है आप लोगों ने डाउरी दी थी, डाउरी में स्कॉर्पियो कार दी, कैश दिया 11 लाख रुपए, जेवरात दिए, उसके बाद भी मांगा जा रहा था।
4: उन्हें फॉर्चूनर गाड़ी चाहिए थी जी, 51 लाख रुपये चाहिए थे।
3: तो आपने पुलिस में कंप्लेन नहीं दर्ज कराई?
4: नहीं, पुलिस में क्या, वो तो ये सोच रहे थे एक ना जाने चल जावे, हर आदमी सोचता कि भाई आ गई वो बात बन जावे, पुलिस में कंप्लेंट तो जब होती है, पुलिस में कंप्लेंट तो लास्ट हो गया ना, सारा ही कर दिया उन्होंने। कल से तो बहुत कोशिश करी उसे बचाने की कि भाई बात बच जाए।
3: कल आपको इन्फॉर्म किसने किया, बेटी ने इन्फॉर्म किया या परिवार वालों ने इन्फॉर्म किया? कब पहुँचे आप वहाँ पर अपनी बेटी को देखने के लिए?
4: मैं बेटी का फ़ोन आया था मेरे पास, जो मैं उसके कहने पर मैं गया था, और वहाँ से मिल गए, उनसे बात बात करके, उन्हें समझा के बोल के सब करके, जब वहाँ से मैं निकला तो आधे पौने घंटे बाद मेरे पास कॉल आती है कि भाई आपकी बेटी दीपिका जो वो गिर गई है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई कहाँ गिर गई, जीने पे गिरी है, बाथरूम में गिर गई, कहाँ गिर गई? तो उन्होंने कहा वो छत से गिर गई है।

0: तो छत से गिर गई और हम उसे जो वहाँ लेके जा रहे हैं शारदा हॉस्पिटल। तो मैंने अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को और अपनी घरवाली को लेके हम जो शारदा हॉस्पिटल पहुँचे, जहाँ पे हमारी बेटी जो वहाँ पे हमें मृत मिली।
1: क्या हुआ आपकी बेटी के साथ?
2: ओ भाई हम वो तो कुछ भी न पता कहा हुए है। ओ भाई हम वो न पता कुछ भी भैया मैं वो पते न कुछ भी कहा करो हुयो मेरी की गए
3: अच्छी वाली गई हमारी बेटी तो यहां से
2: भैया मैंने तो
3: अच्छी खुशी।
2: अरे मोटा तो कल भी अच्छी बतलाई। ओ मेरी लाडो
1: कैसे पता लगी आपको?
3: उन्होंने फोन करा था।
2: फोन आया उनको ही। ओ
3: अब तुम्हारी बेटी जीने पर से गेगी
4: भैया। गिरफ्तारी हो रही है, देखो एडिशनल कमिश्नर क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हमारी लड़की छत से कूद के सुसाइड कर लिया। अभी पोस्टमार्टम की कोई रिपोर्ट नहीं आई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, उस डॉक्टर भी नहीं आया, थाने से कोई आदमी नहीं आया। अभी हमारे बादलपुर थाने के एसओ भी आई हैं, एसओ जी के जो दरोगा जी हैं वो भी आई हैं। इकोटेक थाने का हमारे पास एक सिपाही नहीं है।
5: और वो दिखा रहे हैं ये
4: एडिशनल
6: FIR से वो दर्ज कर ली गई है।
4: FIR दर्ज कर ली गई है, हमें क्या पता। ये देखो क्या कह रहे हैं आप। मैं दिखा रहा हूँ क्लिप दिखा रहा हूँ आपको, कम से कम क्लिप। हमें क्या उम्मीद होगी।
7: ये रात हमारे पास कॉल आई उसके ससुराल से, दीपिका नागर के, कि आपकी बिटिया गिर गई है और आप हॉस्पिटल में आ जाइए। तो जब परिवार के लोग शारदा हॉस्पिटल में पहुँचे तो वहाँ देखा कि बेटी के ऊपर मारपीट के निशान थे बहुत ज़्यादा और वो बेसुध थी। तो डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि ये अब नहीं रही। तो उसके बाद जो ससुराल वाले थे वो वहाँ से भाग गए और बुरी तरह से मारपीट करके उसकी
6: जो शरीर पे जो वुंड्स हैं, किस तरह के जख्म जो है, किस तरह
7: पूरे शरीर पर कट के निशान भी हैं, मारपीट के निशान हैं, नील पड़े हुए हैं पूरे शरीर पर, काफ़ी ज़्यादा चोटों के निशान हैं। काफ़ी
6: कट के जो लेजन्स के मार्क, कट के मार्क्स अलग होते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान सुसाइड करता है, कूदता है, ठीक है, उसके चोट अलग।
7: इसके तो कट के निशान भी हैं, पेट में एक छेद भी हो रखा है जो कि संभवतः या तो गोली मारी गई है या कोई सरिया या पेचकस नुमा कोई चीज़ उसके पेट में दी गई है।
3: हमारी बेटी को कुछ नहीं होता, राजी खुशी गई थी यहाँ से। उन्होंने फोन करा कि जी तुम्हारी बेटी छत से गिर गई, उसके पापा मिल के आए थे 11 बजे रात। अच्छा कुछ भी नहीं था, राजी खुशी अपनी बेटी से मिल के आए थे। हमें रात को फोन आता 11 बजे, हम यहाँ से सब जाते, 1 बजे फोन करा उन्होंने, अब तुम्हारी बेटी गिर गई। हमने वहां जाके देखी तो खूब तो उन्होंने मार रखी थी और छत से उठा के नीचे फेंक दी। हमें जगह हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल वालों ने कह दी ये तो खत्म हो गई। अब ये बताओ हमें क्या चाहिए, हमारी बेटी मार दी जीते जी, ये बताओ क्या। कुछ नहीं दिया था, हमने बहुत तगड़ी शादी करी थी अपनी बेटी की और अच्छे से पाला था उसको, और आज उन्होंने मार दी हमारी बेटी।
8: राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग जस्ट आउटसाइड द मॉर्चुरी सेंटर। बिहाइंड मी यू कैन सी द विजुअल्स ओवर हियर। द डिसीज्ड postmortem has already been done. It took approximately 3.5 hours to complete the postmortem. Right now, you can see the ambulance is being just taken out from this mortuary center of sector 94, and it's going towards the residence of the victim. Here, you can see the body of the deceased can be seen through the pan right now. And earlier, what we have seen that in the FIR, if just go by the FIR details, what we have seen that there were 7 accused that have been named in the FIR. But so far, the Gautam Buddha Nagar police team has apprehended 2 individuals. One, the father-in-law of the deceased, and second one, her husband. So right now, the visuals just outside the mortuary center, you can see the victim's family members over here, and they have been constantly demanding for justice. And since morning, they have been waiting over here to get the body. So the entire process was videographed over here. And right now, what we are seeing that the body has been taken in that very one towards the residence of the victim. Video journalist Ashok Mahale, Aqil for NDTV 24/7.
9: All right, so 2 very disturbing cases involving young women, one in Bhopal, one in Noida. We'll continue to track all the developments there. For the moment, slipping into a short break. On the other side, the latest on the Prime Minister's 5-nation diplomatic tour.

0: welcome. You're watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. On the show today, a story that has gripped the nation. Fresh details are emerging in the death of 33-year-old Twisha Sharma, with latest and last chats accessed where she is pleading her mother to save her from her husband and in-laws. She says, "They won't let me live." That's Twisha's last message. We'll take you through more details coming up on this story. Also on the show, Netherlands returns 11th century Chola plates to India during Prime Minister Modi's visit to Netherlands. We'll take you through the key highlights of that as well. But first, a quick check on the headlines. Court hears arguments in Twisha death mystery case. Absconding husband Samarth Singh's lawyer argues there was no dowry demand and labels Twisha extravagant, while the family says this is a fight against an entire system trying to shield the powerful. After death of Twisha Sharma sparked serious allegations, now another case. 25-year-old Deepika was reportedly found dead in her in-laws' house in Greater Noida after allegedly falling from the third floor of the home. Congress-led United Democratic rule begins in Kerala. V.D. Sathisan, along with 20 ministers, take oath.
1: Presented by Canara Bank. Together we can.
0: All right, we're cutting across live to Prime Minister Modi, who is in Norway and is giving out a speech there during his five-nation tour. Take a listen.
2: Constitution Day के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से नॉर्वे जैसे सुदृढ़ और जीवंत लोकतंत्र की यहाँ की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। आज हम दोनों ने इस एग्रीमेंट के प्रॉमिस को आउटकम्स में बदलने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। फ्रेंड, आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी। फ्रेंड्स, रिसर्च एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे। स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट मोबिलिटी में भी हमारा सहयोग और व्यापक होने जा रहा है। फ्रेंड्स, नॉर्वे आर्कटिक रीजन का एक महत्वपूर्ण देश है। आर्कटिक और पोलर रिसर्च में हमारे लंबे समय से सहयोग रहा है। भारत के आर्कटिक रिसर्च स्टेशन हिमाद्री के ऑपरेशन के लिए हम नॉर्वे के आभारी हैं। इसरो और नॉर्वे स्पेस एजेंसी के बीच आज हो रहा एमओयू हमारे स्पेस कोऑपरेशन को भी नया आयाम देगा। इन सभी क्षेत्रों में गहरे सहयोग से हमारे साइंटिस्ट क्लाइमेट चेंज को समझने, फ्रेजाइल इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने और ह्यूमन फ्यूचर को सिक्योर करने में योगदान देंगे। फ्रेंड्स, भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। हमें बहुत खुशी है कि नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे। आज हमने ट्रायंगुलर डेवलपमेंट कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया है। अब हम मिलकर ग्लोबल साउथ के देशों में भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से ह्यूमन डेवलपमेंट में योगदान देंगे। फ्रेंड्स, भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास के समर्थन करते हैं और करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है और टेररिज्म के हर रूप को जड़ से समाप्त करना हमारी साझी प्रतिबद्धता है। एक्सलेंसी, आर्कटिक से आउटर स्पेस तक, ग्रीन शिपिंग से ब्लू इकोनॉमी तक, एनर्जी सिक्योरिटी से लेकर फूड सिक्योरिटी तक हमारा सहयोग नए फ्रंटियर्स को छू रहा है। आइए हम अपनी ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के माध्यम से एक ट्रस्टेड, फ्यूचरिस्टिक और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का नया अध्याय लिखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।
4: थैंक यू। एंड दिस कंक्लूड्स
0: who is in Norway for his fourth leg of his five-nation tour. This is his first bilateral visit by Prime Minister Modi to Norway in 43 years. But core priorities, key agenda when it comes to India and Norway, from trade and investment to energy security and green transition as well, blue economy and maritime cooperation, technology and innovation. These are some of the aspects which are the core agenda and priorities during Prime Minister Modi's visit to Norway. There was, of course, a rousing welcome for Prime Minister Modi in Oslo. India India is now in exclusive Nordic Engagement Club, and there is perhaps focus on trade, clean energy and Arctic cooperation as well. India and EFTA deal also to boost investment and jobs. Remember, Prime Minister Modi is in Norway on the fourth leg of his five-nation tour.

0: highlights of the Twisha case right now. We'll take you through the payments made by Twisha's father. But before that, the last messages that Twisha sent to her mother. First up, she says, they won't let me live. Twisha has accused her in-laws, her husband. These are the last messages to her mother before she was found dead. They will not let me live. Then, Samarth, her husband, asked Twisha, who was pregnant. Samarth asked whose baby I was carrying. There were allegations that Twisha had an illegitimate child while she was pregnant. Another text message that she sent in distress to her mother. Please come, take me away. Her last message. I am very disturbed. She also told her friends that she was feeling anxious. She wanted to work. She did not like anything. Her in-laws did not let her be happy or sad. But let's now take you through Twisha's chat with her brother as well. First up, this is my problem. I will handle it. That's the message she sent to her brother. Then, otherwise it will be that I keep complaining. So she's in a complete doldrums, in a situation of distress that she's sending all these messages to her brother and her mother as well. Another message that Twisha sent to her brother, all of them think I do drugs and that's why I'm in a bad mood. Then, they cannot see that their son has abandoned me. Another message, she says that my mood could be ruined because of this. There were also allegations on Twisha that she's a drug addict and she's carrying an illegitimate child. She also told her brother that she's feeling suffocated, she's feeling stifled. These people will not let me cry nor let me be happy. Another very important message that she sent to her brother before her demise, I am trapped, I feel suffocated. And then they all are very cruel. They have no empathy for the other person and that I feel suffocated here. Nothing, her last message, nothing can go right now. Well, NDTV also spoke with Twisha's grieving mother who demanded justice for her daughter. Take a listen.
1: अभी तक तो हमें कोई उम्मीद नहीं दिख रही यहाँ पर. इसी वजह से हम कह रहे हैं कि हमारा केस दिल्ली में ट्रांसफ़र हो और SSIT उसकी जांच उसका दिल्ली में हो, सुप्रीम कोर्ट में, और उसका दोबारा से पोस्टमार्टम हो. बस मेरी ये तीन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला हमारे साथ में. और हमें यहाँ पर डर है, हमें डर है. यहाँ पे परसों भी उस दिन कोर्ट में हमारे ऊपर अटैक हुआ था. कुछ लोग आके हमको कुछ भी बोल रहे, गंदा बोल रहे हैं. मेरी बेटी मतलब कि लड़कियाँ बदतमीज होती है, ऐसी होती है, ऐसे ऐसे करके हमें कि हम एग्रेसिव हों, कुछ बोलें उनसे, ऐसे हमारे सामने कमेंट कसे जा रहे हैं ऐसे.
2: कल आप मुख्यमंत्री के OSD से भी मिली थी, आप लोगों ने वहाँ पर भी गुहार लगाई थी कि उसका सेकंड पोस्टमार्टम करवाया जाए और SIT यहाँ पर गठित की जाए. सरकार की तरफ से जो OSD है उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला आपको?
1: वहाँ पे हमें कोई मतलब थोड़ा ऐसे बोला है, मगर ज़्यादा
3: कोई नहीं था. उन्होंने हमें कोई हमें जो उम्मीद थी उनसे वो हमें नहीं फुलफिल है. हम सेटिस्फाइड नहीं है. बस हमारा वहाँ से उन्होंने बोला कि उनके ज्यूरिडिक्शन का नहीं है, ये उनके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है, ये सिर्फ जुडिशरी का मैटर है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर पाएंगे हमारी हेल्प. तो हमें वहाँ से कुछ हेल्प नहीं मिली है. हमारी सारी उम्मीद थी जो CM से, वो हमारी पूरी नहीं हुई है.
1: अभी तक यही लग रहा है सारे लोग उनके ही हैं, हम लोग इधर उधर धूप में भटक रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा हमारे साथ में.
2: आज 7 दिन हो गए उसके डेड बॉडी एम्स में ही पड़ी हुई है. आप लोग क्या तब तक नहीं लेंगे जब तक सेकंड पोस्टमार्टम की अनुमति नहीं मिलेगी?
1: मेरी बेटी वहाँ पर ऐसे लग रहे हैं, बोला हमारे से क्या, मेरे को बहुत दुख लग रहा है.
3: मैं बहुत नहीं चाहता अपनी बेटी का डिस्क्रिमिनेशन करना, बट हमारे जो हमें हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फर्स्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि एम्स में उनके अपने लोग हैं यहाँ के. जब हमारे यहाँ की पुलिस हेल्प नहीं करी तो हम कैसे समझ लें कि एम्स में डॉक्टर्स हमारी हेल्प करी होगी, उन्होंने सही रिपोर्ट दी होगी. इसीलिए हमारा सेटिस्फेक्शन, अगर उनको डर नहीं है तो फिर हमारा सेकेंड पोस्टमार्टम के लिए हमें अप्रूवल क्यों नहीं मिल रहा है, अब बताइए ना.
2: बहुत ज़्यादा आप लोग यहाँ पर परेशान हैं, गुहार लगा कर, पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, सबसे थक चुके हैं. लेकिन क्या आप लोग का यही फाइनल फैसला है कि जब तक ये अनुमति नहीं मिलेगी आप लोग डेड बॉडी नहीं लेंगे?
1: हाँ जी, नहीं. हमें अपना केस दिल्ली में ट्रांसफ़र करना है. यहाँ पर हमें बिल्कुल भी हमें किसी से भी कोई उम्मीद नहीं है कि हमारे साथ में न्याय होगा. हम आप लोगों से और जनता से भी अपील करते कि हमारे साथ में न्याय हो, मेरी बेटी के साथ में न्याय हो. आप सब लोग हमें सपोर्ट करें. मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए.
2: तुषा के की शादी को सिर्फ 5 महीने हुए थे, इन 5 महीनों के 1 महीने बाद से शादी के जो चैट वगैरह हम लोगों ने देखा है, जो पढ़ा है कि वो बहुत ज्यादा परेशान थी। 3 दिन पहले भी उसने आपसे कहा था कि मम्मी मुझे आकर ले जाओ।
4: वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करता था, सही हो जाता था। हर एक माँ बाप चाहते हैं, हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए अपनी बेटी को कि भाई सब एडजस्ट करने का ही बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं, शुरू शुरू में सब जगह दूसरी जगह प्रॉब्लम साथ ही है। तो अभी है ना 10-12, 10-15 दिन से इससे ज़्यादा वो कर दिया था।
0: Well, NDTV also spoke with Twisha's cousin Meenakshi. Take a listen to what she had to say and how she was unable to talk with Twisha after her marriage.
2: इस वक्त मेरे साथ ट्विशा की वो सिस्टर मौजूद है मीनाक्षी, जिनके साथ उन्होंने लास्ट चैट किया था और उसे भी कहा था कि मैं फंस गई हूँ, तुम इस परेशानी या इस बर्बादी में मत फंसना। ट्विशा की सिस्टर मीनाक्षी, मीनाक्षी एक चैट वायरल हो रहा है जिसमें किसी मीनाक्षी नाम की लड़की से बात हो रही, वो मीनाक्षी आप हो, और क्या कह रही है आपको ट्विशा?
5: मैम मेरे को सैटरडे नाइट में, मैं उसको बहुत दिन से फ़ोन ट्राई कर रही थी बट वो मुझे बार बार यही बोल रही थी मैं कॉल करूँगी, कॉल करती हूँ, अभी यहाँ पे सब लोग हैं मैं कॉल करती हूँ। तो उस एक अचानक से मैंने और उसको अपना एक फ़ोटो भेजा, एक इमोशनल फ़ोटो, तो मेरे को लगा शायद से अब ये कॉल करेगी ये देख के। तो उसने मुझे उस फ़ोटो पर ये रिप्लाई किया, आई एम ट्रैप्ड, तू मत फंसना बस। और फिर मैंने उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा आई एम वरीड अबाउट यू, प्लीज़ मुझसे बात कर, मुझसे बात कर। उसका कोई कॉल नहीं आया। सैटरडे नाइट मेरे पास ये मैसेज आया है, उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास खबर आई है।
2: बहनें सहेलियां होती हैं और जिस तरीके से वो आपसे बात कर रही, क्या उसने शादी के बाद वो उन तमाम तकलीफ़ों को आपको बताया था, वो जिन तकलीफ़ों से वो गुजर रही थी?
5: मैम शादी से पहले मतलब मैं और वो हर रोज़ मिला करते थे, हर रोज़ हम लोग घूमने जाया करते थे, हमारी हर रोज़ बात होती थी। कभी ऐसा मतलब इतना जॉली, इतनी हैपनिंग लड़की थी, और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहती वही फैमिली में यार पता ही है शादी के बाद ये होता है, मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है। ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए, क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए। 15 किलो उसका वेट लूज हुआ।
2: कैसे उसको तंग किया करते थे, क्या परेशान करते, क्या सेक्सुअल हैरेस भी उसका पति उसको किया करता था, मारा पीटा करता था, क्या सास भी मारती पीटती थी? उसने आपसे बताया था कभी ये?
5: मैम उसने मेंटली हैरेसमेंट का अपनी मदर को बताया है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था उसको। उसकी जॉब छूट गई थी ड्यू टू सम रीज़न, क्योंकि भोपाल में वो वर्क फ्रॉम होम कर रही थी बट ड्यू टू सम रीज़न उसकी जॉब छूट गई थी। तो उसको इस बात पर भी हैरेस किया जा रहा था कि तू अब तेरे को आप कैसे मिलेगी, तू पढ़ी लिखी नहीं है। इतनी एजुकेटेड लड़की को आप बोल रहे हो तू पढ़ी लिखी नहीं है, मतलब जिसने एक्टिंग करी है, जिसने मॉडलिंग करी है, जिसने मिस पुणे रह चुकी है, उसको आप बोल रहे हो कि तेरे को इंग्लिश नहीं आती बोलनी? मैम ये मतलब ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए उसके बाद उसके ऊपर कि ये प्रूव ही, ये हो ही नहीं सकता कि वो इस तरीके से उसका करेक्टर दिखाया गया है।
0: All right, I'm now being joined by Tejshree. She's joining me live from Jantar Mantar, where a protest is taking place for Twisha. Tejshree, we see placards there, justice for Twisha. Take us through what is happening on ground there, because there are two demands of the parents. One, case to be transferred to Delhi, and second, a second post-mortem to take place. Tejshree.
6: Well, absolutely. I would first of all like you to show these very heartbreaking and unfortunate pictures that are unfolding over here at Jantar Mantar, where you can see that she is the sister of Trisha. We'll just try to speak to her. Priyanka ji, 2 मिनट आपसे बात करना चाहेंगे। हम समझते हैं बहुत कठिन समय आपके लिए, लेकिन आप क्या डिमांड करते हैं?
7: मैम उसको यहाँ पे लेकर आओ, उसका पोस्टमार्टम यहाँ करवाइए, उसका केस यहाँ ट्रांसफर करवाइए, और उसके गुनहगारों को सजा दिलवाइए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए।
6: प्रियंका जी, आपकी आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी ट्विशा?
7: मैम बस मेरी उस आखिरी बार मार्च में बात हुई थी, और उसके बाद हमारी बात नहीं हुई क्योंकि हम नहीं चाहते थे वो नई नई शादी हुई है वो डिस्टर्ब हो, बस हमें और कुछ नहीं पता।
6: उसने आपको कब बताया था? आपने कहा था, एक्सक्यूज मी प्लीज, आपने कहा था कि मार्च में मिलेंगे आप उससे, तो मार्च में मुलाकात
7: मिली थी। मैं मिली थी उसके साथ। हाँ मैम मैं जा रही हूँ।
6: क्या कहा उसने?
7: मैम उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसके भाई की उस टाइम शादी थी, तो बस वो हमारे साथ जैसे बहनें रहती है बैठते हैं, बस ऐसे ही उसने हमारे साथ।
6: आपने कुछ मनी ट्रांजेक्शन को लेकर बात की थी, क्या था ये मनी ट्रांजेक्शन आप बता पाएंगे?
7: मैम उसको अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, ज़रूरतों के लिए वो मेरे फूफा जी को बोलती थी, तो मेरे फूफा जी बुआ जी ये लोग उसको पैसे देते थे उसके, जो भी उसको नीड होती थी वो लोग यहाँ से उसके लिए पैसे ट्रांसफर,
6: अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे।
7: जी मैम, जी मैम, जी मैम।
6: शेयर्स भी
7: मेरे भेजा जी ने मैम, उसके अकाउंट में 20 लाख उनको शेयर्स के लिए उसको इसके पास थे। उनको जैसे ये सब चीज़ें पता चली उन्होंने उसको बस प्रेशराइज करना स्टार्ट कर दिया कि अब ये हमें दे देना, हमें दे देना। और उसको थोड़ा डाउट हुआ कि ये लोग इतना क्यों मेरे को फोर्स कर रहे हैं।
6: तब को उसके ससुराल वाले पैसे ट्रांसफर करने के लिए

0: जरूर पता चला है कि उससे ट्रांसफर करवाने के लिए वो लोग फोर्स कर रहे थे।
1: ट्विशा ने ट्रांसफर किया था, ये बात आपको पता चली?
0: नहीं मैम, अभी उस चीज का कोई आइडिया नहीं। अभी मैम घर वाले इस हालत में ही नहीं है कि बात कर पाए।
1: आपकी जब उससे बातचीत हुई थी तब कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था 5 महीने हो चुके, क्या वो परेशान है? क्योंकि शादी के केवल 5 महीने बाद इस तरह की सिचुएशन आना,
0: मैम मुझे आइडिया नहीं है उस चीज़ का। मुझे तो बस ये पता है कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है और हम लोग बस इंसाफ चाहिए उसके लिए।
1: आप लोगों की डिमांड्स क्या क्या हैं? आप उससे, आप उसकी चूंकि सिस्टर हैं और आप ही के सिस्टर से उसकी लगातार बात हो रही थी, आप ही के सिस्टर को उसने बोला था?
0: मेरी छोटी बहन है, हाँ मेरी छोटी बहन को उसने मैसेज किया था। ट्यूसडे उसकी डेथ हुई है, सैटरडे शाम को उसने उसको मैसेज किया था, आई एम ट्रैप्ड ब्रो। वो उसको ब्रो करके ऐसे बात करती थी उन दोनों का।
1: अभी बातचीत आपको बताई गई थी कि ऐसा
0: वो सब चैट न्यूज़ वालों को दी गई है, उसमें शो हो रही है और उसको बोला कि तू मत फंसना। उसने ये भी लिखा है उस चैट में उस मेरी सिस्टर को। फिर उसने, मेरी बहन ने उसको बोला कि हम तेरे साथ हैं, बस उसके बाद उसकी भी बात नहीं हुई। सैटरडे के बाद उसकी भी बात नहीं हुई मैम, किसी को नहीं कुछ बोला। बस लास्ट उसके बाद बुआ जी के साथ हुई, उसके बाद किसी से बात नहीं।
1: लास्ट उनकी मम्मी से बातचीत हुई थी केवल शाम को 5 बजे। कभी कोई
2: तब से था जब से उनकी
1: उनकी
2: मैं उनकी सिस्टर हूँ।
1: अभी उनके सिस्टर हैं, क्या बातचीत हुई थी बताइए?
2: बातचीत का तो यही था कि जब से उनका जॉब छूटा था तब से उन पे ज़्यादा प्रेशर होने लगा था। तो उन्होंने यही बोला था कि
1: प्रेशर करते थे कि जॉब करिए।
0: मेरे फूफा जी को बोलती थी वो कि अभी इसको कौन खिलाएगा, कौन इसकी तो जॉब नहीं है, इसको कैसे करेगी।
2: गिरिबाला सिंह कि यही, ये तो नकारा है, ये कुछ नहीं कर सकती, इसको इंग्लिश नहीं आती, जो बंदी मिस पुणे रह चुकी है, तेलुगु की एक्ट्रेस रह चुकी है, आप उसको ऐसा बोलते हैं। आपको खुद सोचना चाहिए कि आप वेल एजुकेटेड हैं, आप फॉर्मर जज हैं हाई कोर्ट में, तो आप जो न्याय देता है और वही ये सारी बातें बोले अपने घर की बहू के लिए, तो ये कैसा लगेगा और कैसा आगे चल के ये कैसा जा रहा है कि आगे
1: घर इस तरह का दबाव बनाया जा रहा था कि आपको लग रहा है कि ये पूरी एक जो बनी बनाई साजिश थी ऐसा आप लोग कहना चाहते हैं?
3: Right, Tejshree. So that was my colleague Tejshree talking to Twisha's sister, where they've alleged about mental and physical harassment and, of course, demands for dowry. But let's now take you through the courtroom arguments and where things stand. What are Samarth's team saying? So first up, Samarth's legal team has clearly said, before we take you through the graphics, of course, Samarth is absconding right now. There's rupees 10,000 bounty on the absconding husband. Let's now take you through the key arguments. First up, Samarth's legal team says there is no evidence of dowry demand. On the other hand, Twisha's family counsel says that WhatsApp chats contain all the details of the demands and the transactions as well. Second up, Samarth's legal team says Twisha's behavior appeared normal. But Twisha family's counsel says questions must be asked about the last 4 to 5 months and how Twisha was mentally harassed by Samarth and his family. Then, Samarth's team says this could be a case of blackmail. On the other hand, Twisha's family counsel alleges that the house was under the control of the in-laws and that it was the in-laws who continuously harassed Twisha, be it for work or be it for her mood swings or even to the fact, to the point of dowry as well. Another aspect, Samarth's legal team, again adamant that there's been no case of dowry, says no dowry, no cruelty, no dowry death. On the other hand, Twisha's family's counsel says the case involves suspicious circumstances because remember, 15 minutes after Twisha was announced dead, she was on a call with her mother and her family members as well. Another statement is Samarth's legal team says examine Twisha's mental health, medication history as well. Remember, Samarth's family accused Twisha of being a drug addict and saying that her mood swings depends on the kind of drugs that she takes. Twisha's family counsel says that anxiety medication is not unusual and that Twisha was suffering from anxiety as well. Another statement coming from Samarth's legal team says opposing anticipatory bail is not justified because we do know that Twisha's family has opposed the anticipatory bail and they've called highly violent case add more serious charges. But this is not a one-off case that we're seeing today. Another case has emerged from Noida, that of a dowry allegation as well. A 25-year-old girl killed.

0: actually sparked a fresh political showdown. Opposition parties are attacking the centre over the second price hike of CNG prices, which have gone up by 1 rupees per kilogram. In fact, this was the second CNG price hike in Delhi since 15th of May. Congress has actually blamed the government for saying that they are not able to tackle the problem and impact of the Gulf conflict, saying common people are actually suffering while Prime Minister Modi is on a foreign trip. That, of course, is the Congress's big allegation, and the BJP has hit back, accusing Rahul Gandhi of irresponsible remarks, claiming India has actually seen a very minimal fuel price hike as compared to some of the other economies in the world, where a price hike has actually been as high as 44%. We're going to get you some reactions, important political reactions, and then, of course, we broad-based this story. Where exactly do the two positions lie? And more importantly, how is it that it's going to impact you, the viewer? But first up, those political reactions.
1: Diesel aur petrol ke daam itne bada rahe hain. मोदी जी अगर यही इलेक्शन के पहले करते तो मालूम होता था. उन्होंने ये बातें सब छुपा के रख के इन्फ्लेशन, अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में, चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा. इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ाए. तो इससे ये दर्शाता है कि फोर साइटेडनेस हमारे बीजेपी को, सरकार को, मोदी साहब को नहीं है.
2: तेलंगाना सरकार 36-37% वैट कलेक्ट करते हैं हर लोगों के ऊपर. क्यों आप लोग अगर जनता के ऊपर प्रेम है तो क्यों नहीं करते? हम किए ना, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, हम वैट कम किया है अलग अलग स्टेट्स में, आप क्यों नहीं किया है? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी गलत प्रचार करते हैं. राहुल गांधी गैर जिम्मेदारी के साथ, ये रेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना आज भारत का इश्यू नहीं है. सारी दुनिया से आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं. लगभग 40 देशों से भारत सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, 40 देशों से.
3: दाम तो बढ़ेगा ही, अब युद्ध चल रहे तो थोड़ा सा तो हम लोग को एडजस्ट करना ही पड़ेगा. माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कन्वॉय था वो दो गाड़ी में आ गया है. माननीय प्रधानमंत्री बोले हम सिर्फ दो गाड़ी लेकर निकलेंगे, तो हम लोग सबको एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है. हफ्ता में एटलीस्ट 2 डेज की 3 डेज. देश और पृथ्वी अभी एक संकट से जा रहे, इसमें हम लोग को एडजस्ट करना ही है. अभी और आगे का दिन अभी अच्छा हो जाएगा, तो कोई चिंता नहीं.
4: देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई सामान्य है. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ, और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है. ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है, और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है.
0: All right, so there have been hike as far as petrol prices are concerned. There have been hike as far as CNG prices are concerned. How does this actually pinch your wallet? The many aspects of fuel price hike that actually impacts us. First and foremost, petrol and diesel prices have been up by 3 rupees. CNG prices have been up by 2 rupees a kilo. Now, there is going to be impact with regard to essential products, whether it's fruits, vegetables, milk. All of those prices will go up because of the logistic and transportation cost. Groceries and dining is the second bucket that will also, in fact, go up. Packaged goods may become more expensive. Restaurants and commercial kitchens will be hit because, remember, there the prices, they will pass on the price hike. The third bucket that's equally important to understand is transportation costs that will go up for all of us, whether it's we take autos, we take bus, or whether we take cabs. Those fares are going to increase because they will be passed on to the consumer. Delivery and fuel surcharges will also be increased. increased. Take, for instance, school van fees. They are likely to increase because they all run on CNG. If not, then, of course, on diesel. Online deliveries are also likely to see some sort of an increase in prices. Platforms may, in fact, increase the convenience fees that they charge to consumers. And the minimum order value could also increase as well. So those are, of course, the many aspects of how a price rise impacts us. But the premise of this

0: Well, breaking news coming in now as we get back into the show. NDTV has accessed new CCTV footage in the Trisha case. CCTV footage shows that Trisha's last video before her death had surfaced. She is seen going towards the terrace. The video has now been made public. Video has been accessed by NDTV, Trisha's last video. This is the ones that you're seeing on your screens. Her body was found on the same floor in this case that shaken the nation in many ways. Joining me now is Harpreet Kaur, who's been following this very closely. Harpreet, give us the details.
1: बिल्कुल, देखिए त्रिशा का लास्ट वीडियो सामने आया है और ये वही वीडियो है जब वो छत पर दौड़ते हुए जा रही है. उसने हाथ में एक बेल्ट ले रखा है. हालांकि जब वो फांसी पे लटकी मिली थी, ये वही जिम बेल्ट है जो उसके गले में था. वो एक बेल्ट लेकर हुई जाती ऊपर नजर आ रही है और उसके कुछ देर बाद ही अचानक घर में हड़कंप की स्थिति मचती है. दूसरे वीडियो में जैसा कि नजर आ रहा है, उसकी सास गिरीबाला एक कमरे से निकलती है. घर के जो नौकर हैं वो ऊपर की तरफ दौड़ते हैं और फिर त्रिशा का जो शरीर है वो उठाकर नीचे लाते हुए नजर आते हैं. तो ये एक जो लास्ट वीडियो है त्रिशा का, ये सामने आया है. हालांकि इसमें इस बात की पुष्टि हो रही है कि त्रिशा के हाथ में एक बेल्ट है और उस बेल्ट को लेकर वो ऊपर जा रही है. यानी कि जैसा कि त्रिशा के ससुराल वालों का कहना है कि त्रिशा ने खुद फांसी लगाई है, मौत को उसने गले लगाया है और जैसे ही उन्हें पता चला वो शव को नीचे लेकर आए, फौरन CPR दिया लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. लेकिन वहीं परिजनों का कहना है कि इसे आत्महत्या नहीं, हत्या की गई है और अब जो ससुराल वाले हैं वो हत्या करने के बाद आत्महत्या का रूप दे रहे हैं. लेकिन इस वीडियो से बहुत कुछ साफ होता नजर आ रहा है कि त्रिशा ऊपर की तरफ दौड़ रही है, उसके हाथ में ये बेल्ट है और कुछ देर बाद ही उसका जो शरीर है वो घर के नौकर और गिरबाला से नीचे वीडियो लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं. ये त्रिशा का लास्ट वीडियो है.
0: Okay, Tejshri, NDTV's Tejshri is also live with us at the moment. Tejshri, take us through what you are making of this last video of Trisha, as Harshita was pointing out.
2: Well, absolutely. You see, these two videos have surfaced, these CCTV footages from 10th of May, which clearly shows about how Trisha's body was being brought down from the stairs. However, you know, Trisha's mother-in-law just held

0: press conference, and in this particular press conference, she has put forward her statements, and in fact stated that what's a big deal to, you know, bring is it a crime to, you know, just bring a body down, a person who you know, just committed suicide. And in fact she also further stated that they very much expected that these kind of events will be unfolding, and not just that, but she also in fact alleged that Trisha was psychologically challenged, number one. Number two, she also stated that she was taking some kind of drugs. Number three, she stated that Trisha and her son-in-law used to stay in different rooms because it was Trisha who demanded that she wanted space, and perhaps that is why she used to stay in a different room. This is the version of Trisha's mother-in-law, Samad's mother. Apart from that, what Trisha's parents, Trisha's family and friends have to say, they are questioning as to what actually happened and transpired in those 20 minutes is a big question mark, from 10 p.m. to 20 when Trisha was speaking to her mother. What actually happened? And in fact, one more thing has come to light, Veera, that there was a financial transaction that was made of ₹20 lakhs from a father to Trisha, and Trisha's father did purchase some shares for her, which Samant was allegedly forcing to transfer to his account, and also was asking to open a joint account. And also the family members for Trisha are continuously making such allegations that she was subjected to mental torture, physical abuse as well, and that they also had booked a ticket for her on 15th of May. But Trisha's mother did not come, is what the family of Samarth has been alleging. Now we need to see that when Samarth will be caught, all is right. The big question as of now. Back to you.
1: Right, you're making that point. Let's just listen in to what the mother-in-law has said, as you were pointing out to all the details of the accusations that were made. The mother-in-law's, let's just play the mother-in-law's reaction in this case.
2: Unka parivesh hamara bahut farak tha. लेकिन सबर्ट से मैंने जब बात की, इसे देखो उसको अच्छा स्टिमुलस शायद मिलेगा, तो शी इज़ अ ब्राइट गर्ल, अच्छा करेगी यकीनन। मुझे भी ऐसा अंदेशा था, क्योंकि शुरू में आई थी खाना खाने से पहले, तो पहली बार यहाँ मिलने आई थी। इनफैक्ट वो हमारे घर पहले आई थी, तो इवन रोटी का निवाला तोड़ने से पहले सुखिनो भवंतु एंड कुछ, सो वी वर रियली हैप्पी कि एक अच्छी संस्कारवान लड़की आई है, जो थोड़ा सा तो अटपटा लगा था कि कौन लड़की बिना ब्याहे पहले ही घर चली जाती है, पर समय बदल गया है। एंड वी वर हैप्पी, अगर समर्थ की खुशी उसमें थी, उसकी त्विशा की खुशी उसमें थी हमारे लिए, तो सब ठीक था। उसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है, इट्स नॉट ट्रू। ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल, वो थोड़ा सा आई थिंक इट वॉज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी, तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट, अपने आप को प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी, शायद हम देख भी नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने देखो, मैं जब मेंबर सेक्रेटरी थी लीगल सर्विसेज में, मैंने स्वयं यहाँ पर एक PIL, अपने नाम से मेरी एक PIL है जो मैंने लगाया था, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेंटल इलनेस के लिए लोगों के लिए है, वो अभी भी चल रही है। हाईकोर्ट में कुछ डायरेक्शंस हुए हैं। मैंने 40 घंटे की ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म कैदियों के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की कराई, और मुझे उम्मीद थी कि इस बेटी में भी मैं एक परिवर्तन देख सकूँ। शायद दैट वॉज माई फॉल्ट, क्योंकि जब तक हम लोगों ने इसी 5 माह के दरमियान में 5 बार तो दिल्ली गई, एक बार 20 दिन के लिए, कुछ बाकी 7 डेज, कभी 10 दिन, जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था। इट्स पॉसिबल कि कुछ सोर्सेज वहाँ भी रहे होंगे, और ऐसा मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में उसको ग्लैमर की वर्ल्ड में पुश किया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रहते हैं। फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ वी हैड लॉट्स ऑफ होप, और यंग चिल्ड्रन में मैं देखती हूँ बहुत सारी असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये कई बार इट्स पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट। उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि

0: व्हाटएवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी। जो दर्द हमें होता है बिकॉज टुडे देयर पेरेंट्स दे थिंक वी आर यू नो क्रिमिनल्स, द प्रेस द मीडिया एवरीथिंग हैज गॉन अगेंस्ट अस। इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती जाके झूल जाती है इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट, लड़के नहीं झूल पाते हैं सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स। टू बेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंस इज ऑल्सो। मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड शी इज यू आर नीडेड नाउ। 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गए थे एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे। एंड उस बार आई टोल्ड हर लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ। हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया, ही हैज़ अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं। पॉसिबल ही मे बी द सोर्स ऑल्सो ऑफ सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से, और मैं किसी के कैरेक्टर को मैलाइन नहीं कर सकती हूँ बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है। बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, इफ यू वांट आई बुक योर टिकट, आप आ जाइए रहिए बेटी के साथ। नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां होगी, स्टे हियर, शी डिडंट कम। और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे। आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस ना। उसके जीवन काल में उसको चैन मिला बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर यू नो हर लुक्स एंड एवरीथिंग, वो अर्निंग का साधन तब थी एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर। उसके जब भी इसने MTP स्वच्छ आई मीन अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट दिस। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी, उसको दवाइयाँ ऑलिज़ोप्राम विच जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन दैट इज़ 2-3 दिन पहले थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स में थोड़ा शिवरिंग था विच इज़ टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद जैसे 30 तारीख को आई है उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही, पॉसिबल है वो सब कुछ। बट उसके बावजूद भी आई मीन विद ऑल दैट होप हम फिर भी आगे चले उसके साथ। उसका जो एक काउंसलिंग का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि पहले दिन एक बार गई उसने समर्थ को फ़ोन करके कोर्ट में बता दिया आई हैव टेकन दैट MTP पिल। शी टोल्ड मी ऑल्सो उस दिन मुझे लूज मोशन डायरिया थी, उस दिन बाई चांस हम कोर्ट नहीं जा पाए थे। एंड आई सेड लुक यू डन दिस, लेकिन आपका एक यू नो एक नया डायमेंशन होता है वंस यू कैच मदरहुड। तो एक सिंपल वुमन से आप यू नो योर एंड फिर एक बहू एंड एक डॉटर, डेफिनेटली वी ऑलवेज थिंक दैट यू शुड ट्रीट देम एज डॉटर्स, बट एक बहू इज समथिंग सो मच मोर। वो पूरी अपनी जनरेशंस का निचोड़ होती है, वो आगे के लिए एक एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कितना और आगे बढ़े। बट शी डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, उसका जाना इज अ बिग वैक्यूम फॉर अस।
1: Well, that was Trisha Sharma, the 33-year-old woman who was found dead in Uttar Pradesh in Noida, hanging in her maternal home in Katara Hills in Bhopal on the 12th of May. That's her mother-in-law who was speaking there. Tejshree still with us. Tejshree, help us make sense of the different statements and the dimensions as far as this case is concerned. Obviously, one has to take most of these statements, though they seem very emotional, as one of allegations at this stage. What are the police telling you?
2: Well, you see, allegations are being made from both the sides, say it be family of Trisha or family of Samarth as well. Both are narrating their own ordeals and the kind of incidents according to them unfolded. But if we talk about the latest development that has taken place, then the interim bail has been rejected for Samarth and he stands to be absconding as of now, and hence police has also declared an award for someone who, you know, traces him down or tracks him down, number one. Number two, we just heard that, you know, Samarth's mother, who in fact alleged that how Trisha was not mentally stable,

0: नवनिधि जी, आपका स्वागत है। मैं पहले ही बोलना चाहता हूं कि मुझे बहुत अफसोस है त्विशा की डेथ को लेकर। तो पहले मैं ये बोलूंगा कि वी एक्सप्रेस आर डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू यू सर, वी आर वेरी सॉरी टू हियर अबाउट दिस न्यूज़। मेरा पहला सवाल नवनिधि जी, मैं शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूं। समर्थ से मुलाकात कब हुई थी, एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ, और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
1: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई, हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला। और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
0: क्या ये कुछ
1: आ रही है सर अब?
0: जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
1: नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है। एक साल भर, 1.5 साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बात में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिल के फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
0: शादी में क्या दहेज दिया था आपने नवनिधि जी? क्या दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
1: देखिए आजकल के टाइम में दहेज ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज़ बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे।
0: तो ऐसे क्या
1: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
0: जी? तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
1: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमारे लोगों ने जा कर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया, और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर, जिसका मेंशन हमने FIR में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है, उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
0: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए सामने?
1: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था, क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियाँ ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए। इट वॉज़ ए केस ऑफ लाइक दैट, पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे। हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
0: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी नवनिधि जी,
1: भेड़िया
0: जी
1: आना चाहती थी सर। ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
0: लेकिन नवनिधि जी, आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर ऐसे?
1: नहीं, पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई, मतलब

0: तुमको तकलीफ होगी इसे घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, आई वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली, मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
1: आप मान रहे हैं कि आपकी गलती है नवनीधि जी की, हनीमून में जो हुआ था त्विशा को धक्का मारा समर्थ ने और आपने कुछ नहीं किया,
0: मानते हैं कि सर देखिए इंडिकेशन इंडिकेशन पर ऐसा है कि कोई भी आदमी जब इतनी शादी करता है तो ये सोच के नहीं करता है कि अगर कोई आदमी एक गलती कर देगा तो तुरंत आपकी शादी कैंसिल कर देगा, आदमी यही कोशिश करता है, बिटिया लोग यही कोशिश करती हैं कि उनका सुहाग बचा रहे, यही हमारी हिंदू परंपरा है सर, बेटियां सुराग को बचाने के लिए बहुत सारा दुख दर्द सहन कर लेती हैं, बाद में बताती हैं अपने माँ बाप को, एकदम इमीडिएटली शेयर भी नहीं करती हैं बहुत सारी चीज़। अगर आज उसने चैट में जो शेयर किया है और जो उसने हमको वर्बली बोला है तो उसका 20% ही पार्ट समझिए आप उसका, तो शिवा देन पेन वो पर स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उसने मेरे को बोला था पापा आई हैव मेड ए रॉन्ग डिसीजन, मैं यहाँ से छोड़ के आऊँगी और हम लोग अपना बिजनेस करेंगे या जो भी है काम करेंगे एंड आई विल लीड माय लाइफ।
1: और जब जब त्विशा ने ये बोला था और त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी ये आप जानते थे नवनीधि जी, तो आपने उसे वहाँ से तुरंत निकाला क्यों नहीं फिर? ये एक बात नहीं थी, हनीमून के बाद भी काफ़ी सारे टेक्स्ट तो आए थे, कुछ इंसिडेंट्स हुए थे।
0: ऐसा नहीं, काफ़ी बात निकाला पर यह था, मैंने आपको बोला ना कि लड़की का मोटिव हमेशा पॉजिटिव साइड में होता है, लड़की का मोटिव कभी भी ऐसा नहीं होता कि छोटे मोटे या किसी ऐसी दुर्घटना को वो अपने सीने पर लगा करके संबंध तोड़ दे, संबंध तोड़ना लड़की के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है सर उसकी लाइफ का। हाँ वो अब धीरे इतना सहन करने के बाद वो इस स्टेज में पहुँच गई थी कि वो हमने निर्णय उसके ऊपर छोड़ा हुआ था लड़की के ऊपर, मैंने कहा यू आर ट्राइंग यू मस्ट नॉट ट्राई हमने बोला था, बोले पापा आई एम ट्राइंग जस्ट लास्ट टाइम और अब अगर मुझे नहीं मिला तो आई विल लीव डेफिनेटली आई विल मेक ए फाइनल डिसीजन।
1: तो फिर अगर अगर
0: प्रोसेस है सर
1: नवनीधि जी, अगर त्विशा उनके मैरिटल होम को छोड़कर वापस आना चाहती थी आपके पास, तो फिर ये एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया उसने, आपके अंडरस्टैंडिंग में क्यों लिया उसने?
0: उसने जी मेरे आप देखिए ना कि उसने एक्सट्रीम स्टेप लिया कि उसको मार दिया गया या बहुत डूबी है, संदिग्ध है। आज हम PM2 की डिमांड करी है हमने बहुत सीरियसली, अगर आज भी अगर आप देखो जो कोर्ट में जमानत मिली है उसमें पुलिस ने जो दलील दी है कोर्ट को उसमें साफ साफ बोला है कि ये रसूखदार लोग हैं, ये केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनके जो क्लोज रिलेटिव है वो यहाँ के लोकायुक्त हैं सत्येंद्र सिंह जी, इनके हाई कोर्ट में जजेस हैं, इनके लोग हर जुडिशरी में जगह जगह बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, इन्हीं के लोग मेडिकल में बैठे हैं, पूरी फैब्रिकेटेड रिपोर्ट है जो पहली PM रिपोर्ट आई है जो कि फाइंडिंग से मिसमैच कर रही है, इसलिए हमने PM2 की डिमांड की थी जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अप्रूव करने के बाद में कि आपका जो है तुरंत बॉडी भेजी जाए PM2 के लिए, वो रिजेक्ट कर दी गई और अंडर इसी जुडिशरी के लिए डाल दी गई अप्रूवल के लिए, इट मींस जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, अगर वो बॉडी डिकम्पोज हो जाती है साक्ष्य खत्म हो जाते हैं तो इस न्याय प्रक्रिया का कोई भी फायदा नहीं है।
1: नवनीधि जी त्विशा का बॉडी अभी भी मॉर्चुरी में है,
0: स्ट्रॉन्ग है,
1: आपका डिमांड है कि PM2
0: अभी भी मॉर्चुरी में, अभी भी मॉर्चुरी में
1: पोस्टमार्टम हो जाए, समर्थ अभी अब्सकॉन्ड
0: सर, मैं तो मेरा रिक्वेस्ट है
1: नवनीधि जी, समर्थ कहाँ है, उसका बेल डिनाई हो चुका है अभी,
0: ये तो पुलिस से पूछना चाहिए सर, समर्थ इन रसूखदार लोगों के घर पे ही मिलेगा, कहाँ मिलेगा सर, इनको देखना चाहिए, आज पुलिस उसको कस्टडी में नहीं ले पाती है तो ये पुलिस का फेलियर है ना सर।
1: 12th मई की रात 10 बजे आखिरी बात हुई त्विशा से नवनीधि जी, उस वक्त क्या कहा उसने, कोई परेशानी बताई थी उस
0: रात? मेरी रिक्वेस्ट है सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, इस केस को अगर मेरे को आपको न्याय दिलाना है तो मेरे लिए प्लीज़ आवाज़ उठाइए, इस बॉडी को डिस्ट्रॉय होने से बचाइए, डिकम्पोज होने से बचाइए, इसको तुरंत PM2 के लिए दिल्ली भिजवाइए, प्लस सर इसकी स्वतंत्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी,
1: वो तो एनडीटीवी करेगी और कर रही है सर।
0: आप सोचते हैं सर कि ऐसे इसमें मुझे कोई न्याय मिल रहा है? जी जी सर,
1: नहीं, हम तो लगातार करेंगे
0: ऐसी न्याय प्रक्रिया में। आप में विक्टिम का बाप होकर के सर, विक्टिम का बाप होकर मैं खुद विक्टिमाइज हो रहा हूँ आपके जुडिशियल सिस्टम में। सर मैं कैसे सरवाइव करूंगा एक दूसरी जगह?
1: अवनीति जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, मैं आपको वादा देता हूं, अभी नेशनल टेलीविजन पर मैं आपको वादा दे रहा हूं कि एनडीटीवी आपके साथ खड़ा है और जस्टिस लाने तक हम इस स्टोरी को रिपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं आपको नेशनल टीवी 9 PM एनडीटीवी न्यूज पर आपको लाइव ले रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या पहले कभी त्विशा ने अपने इन-लॉज की मारपीट या जुल्म की बात की थी आपसे? कोई पुरानी शिकायत कुछ भी था हनीमून के बाद, ऐसा कुछ भी सामने आया था?
0: बहुत पुरानी शिकायत है सर, हमने उसके व्हाट्सएप चैट्स हैं जो हमने आज कोर्ट में सरेंडर किए हैं साक्ष्य के रूप में। जो मौखिक बात होती है सर वो होती है, पर वो एक इस तरीके का पूरा जो एक सिक्वेंस चला है कि उस लड़की ने सोचा कि ये कैसे भी चेंज हो जाए, ये ऐसी बात ना करें, उसने एक प्रोसेस को झेला है सर। वो बाद में एंड तक उसको प्रोसेस को झेलती रही है सर। वो व्हाट्सएप चैट हमने सबमिट करी है कोर्ट में सर।
1: आपको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं नवनीति जी, ऐसे आपने बताया है मीडिया को, आपको आपका कहना है कि सबूत मिटाए गए, ये आरोप आप किस चीज के आधार पे लगा रहे हैं? आपको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं? आप
0: ये बिल्कुल बिल्कुल इस जी मेरे हमको कोर्ट परिसर में हमको अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस बुलवानी पड़ गई, क्योंकि कोर्ट परिसर में हमारे ऊपर अटैक हुआ, दो बार हमको अटैक किया गया, ये बहुत सारे हमको परेशानी हुई है। और यहाँ पर हम अकेले हैं सर, हमारा कोई नहीं है, आज कोई यहाँ पर लॉयर खड़ा नहीं हो सकता इनके सामने, यही तो लोग हैं, इनके खिलाफ कौन खड़ा होगा सर यहाँ पर? ये सिस्टम के खिलाफ कौन खड़ा होगा सर? आप देख रहे हैं ना कि अप्रूवल देने के बाद में जुडिशरी में डाल दिया गया PMTU का अप्रूवल सर। इट मीन्स जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड सर। और आज जो बेल मिली है सर, किस बिना पर बेल मिली है, इसमें पुलिस ने दलील दी कि ये लोग बहुत रसूख वाले लोग हैं, पुलिस ने बोला सर, और ये साक्षियों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये पुलिस का कहना है, मेरा भी कहना नहीं है सर।
1: नवनीति जी,
0: पहले वाले अक्यूज्ड को क्यों छोड़ दिया गया?
1: गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज हैं, क्या आपको लगता है इसलिए पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेशन में डिले किया है?
0: जी जी सर, रिटायर्ड जज भी हैं, आज भी वो प्रेजेंट में भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, हटाई नहीं गई हैं सर, आज भी वो रन कर रही हैं ऑफिस। अगर कोई आदमी ऑफिस रन कर रहा है उसके खिलाफ आदमी कैसे खड़ा हो सकता है? यहाँ वकील लॉबी नहीं खड़ी हुई, हमें यहाँ वकील नहीं मिले सर। वी आर इन अ वेरी डेंजरस एंड प्रिकेरियस सिचुएशन सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
1: नो, NDTV इज विद यू, दैट्स व्हाई यू आर लाइव।
0: यहाँ पे मुझे मैं को ये नहीं प्रूव करना
1: सर। नवनीति जी, वी अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज वाचिंग यू राइट नाउ।
0: वी आर अंडर वेरी मच प्रेशर।
1: यस यस
0: सर। सर
1: आई वांट टू आस्क यू टू मोर क्वेश्चंस।
0: दिया जाता प्रेशर ऐसे दिया जाता है, एफआईआर लॉन्च नहीं हो रही थी 3 दिन तक सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: यहाँ पर 5 दिन के बाद FIR लॉन्च हो रही है,
1: नवनीति जी
0: की प्रताड़ना हो रही है, ये सब क्या दिखा रहा है सर? CM हाउस में प्रोटेस्ट किया, CM ने हमें 1 मिनट का समय नहीं दिया मिलने का सर।
1: और आपका
0: CM ने हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया सर किसी भी काम का।
1: आपका बेटा एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर भी है, मेरी बात हुई है उनसे भी और मुझे पता चल गया कि कितना काम करना पड़ा एक FIR लॉन्च करने के लिए। लेकिन एम्स में अभी भी नवनीति जी त्विशा का बॉडी पड़ी रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है और दूसरा पोस्टमार्टम क्यों मांग रहे हैं आप स्पेसिफिकली?
0: जी स्पेसिफिकली सर मैं बताऊं, उसमें जो फैक्ट्स लिखे गए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं सर बिल्कुल भी। उसमें बहुत सारी चीजें जो मैच नहीं कर रही हैं, जो हमारी फेंडिंग्स आ रही हैं उसमें बहुत सारी चीजें मैच ही नहीं कर रही हैं सर। उसमें पूरा ये कैकस निकल के आएगा सर, मैं तो कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा जो है आपको वॉम ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जवाब देना पड़ जाएगा इसमें। इसलिए ये PM2 की रिपोर्ट जुडिशरी में डाली गई है कि अप्रूवल ड्यूरी, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको डिले करके, इसको डिकेइंग प्रोसेस में डाल करके, डिकम्पोज करके इसको सत्य को छुपाया जा रहा है।
1: आखिरी सवाल नवनीति जी, आप मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, अब आपकी सरकार से एक ही मांग क्या है? आपने बोला है कि उन्होंने आपको कोई भी अश्योरेंस नहीं दिया है, तो क्या मांग रहे हैं आप उनसे?
0: मिलने का समय ही नहीं दिया सर, मिलने का समय ही नहीं दिया, 1 मिनट के लिए नहीं मिले वो हमसे, कोई अश्योरेंस नहीं आया सर हमारे पास में। और ये मुझे लगता है कि असमर्थता व्यक्त करी या उनके लिए ये केस कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, दूसरी चीज़ें प्रायोरिटीज में हैं उनके। एक गरीब आदमी की बेटी मर जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
1: ओके, नवनिधि शर्मा, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
2: Now I want to show you what the mother-in-law of Twisha Sharma, a retired judge, by the way, named Giribala Singh, has said about Twisha. She held a press conference and I'll show you some clips of what she said. But this is what she's basically said. She said, Pooja Pat was just a show. She basically is saying that her daughter-in-law was an imposter and a liar, that Twisha took an abortion pill, that Twisha consumed large amounts of marijuana, that Twisha called Samarth and told him she had taken a pill, that Twisha visited a psychiatrist and attended counseling as well, that there was psychological pressure from the glamour world because she was a model, a beauty queen, as well as someone who tried to get into the film industry. Twisha had shivering hands and withdrawal symptoms suggesting that she was a drug addict. This is what the mother-in-law is alleging. And that Twisha was taking Ulcerpram medicine, and that her behavior kept changing after her Delhi visit. Young women take extreme steps easily, says the mother-in-law. No FIR has been lodged yet. The husband, the son of the woman you're about to hear, is still absconding. Here's what she's saying.
3: When we had gone to Kakoli Roy ji ke paas hum log saath ko gaye the, jab wo chah rahe the wo first day ki pregnancy ko reverse kare, to wo baar baar wo pooch rahe the why do you want this aur aapne ye kadam kyun uthaya, tab usne mere samne kaha I have consumed a large quantities marijuana. Unke samne usne kabool kiya maine large quantities mein marijuana consume kiya hai. She was on schizophrenic drugs. अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक schizophrenic के अंदर दो लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है सिर्फ WhatsApp चैट से कुछ भी नहीं डिफरेंशिएट हो सकता है। उसका था आई नीड माई स्पेस, मुझे दूरी भी चाहिए, मेरे मायके वाले मुझे डिसओन किए हैं, और मायके वालों के लिए तो इतना बताती थी कि हमको बहुत कम उम्र से उन्होंने धकेल दिया इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री, कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी।
2: And joining me live now is Madhuri Patel. She's a friend of Twisha Sharma's. She was also training for Miss India in 2013. That's where she got to know Twisha. She's a Mrs. Universe from 2023. And from the beauty world, she became friends with Twisha. Madhuri, thank you for agreeing to speak to us tonight here on NDTV. Your first thoughts, your first reaction when you heard about Twisha Sharma's death. Madhuri, welcome.
4: Thank you for inviting me. My first thought when I saw this news was I was shocked to the core, because the Twisha I knew was a very strong, independent girl. The Twisha I knew was somebody who will never take such kind of step. So it was very, very shocking to me and

0: deal with it, as Mr. Kothari said, behind the scenes and perhaps diplomatically. But when it comes to corporations, within the four corners of the law and the American law, if you can settle a matter and move on and get a clean slate, why not? It's an economic cost. It protects, it restores your credibility.
1: Right.
0: It protects your shareholders, and it enables you to work more effectively in an environment where you are obviously keen to work in, which is the United States.
1: Okay. Look, gentlemen, I'm out of time. We'll leave it over there. I'd like to thank you very much for joining us. I'm going to briefly move on to some other news. The Prime Minister has interacted with top leaders from Norway's business and research sectors. Remember, he's on a five-nation tour. He's on nation four right now. In Norway, he travels to Italy next. These are some images which have come in. He's been there as part of the India-Norway Business and Research Summit, also the Nordic Summit, which is focusing on expanding cooperation in key future-oriented sectors. The discussions covered areas such as green energy, offshore wind, green hydrogen, shipping, healthcare technology, robotics innovation, and higher education. Major Norwegian companies have been investing in India, and there's a sense that there is a great deal more which can be achieved.
2: अक्टूबर 2025 में हमने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यानी टेपा लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आज आपको विश्वास से कहता हूं, ये हमारी गारंटी है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। चाहे वो ऑर्कलो का भारत के फूड सेक्टर में निवेश हो, इक्विनोर से भारत को एलपीजी और एलएनजी सप्लाई की बात हो, या यारा का भारत के फर्टिलाइजर क्षेत्र में योगदान। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से कई सीईओस भारत के वाइब्रेंट गुजरात और अन्य इन्वेस्टर समिट में भी बड़े उत्साह के साथ हमेशा भाग लेते रहे हैं। अब हमें इस पार्टनरशिप को, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर इसे न्यू फ्रंटियर की ओर ले जाना चाहिए, और हमें अब एक एक कदम से चलने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें जरा गति भी बढ़ानी होगी और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे तय करने होंगे।
1: Meanwhile, the Prime Minister's ongoing engagement with Nordic leaders marks a significant shift in India's foreign policy. Beyond cultural exchanges, traditional dance performances and high-level bilateral meetings, the visit underscores Delhi's intent to build deep, long-term strategic partnerships with the Nordic region. We'll tell you why and leave you with this report.
3: the geopolitical importance of the

0: $1 billion settlement with the SEC, and now it is the Department of Justice which has permanently brought an end to those allegations. And what were these allegations? Essentially, the allegations were that in India, there were the allegations of a bribe which had been paid by members of the group in securing favorable solar contracts. And therefore, when this group tried to raise money towards this mega project which it had planned in India, there was an alert which was sounded within the legal system and various departments of the legal system in the United States. Because American investors were potentially impacted by this, there was legal action which was taken. Now, many have questioned the premise of that at all because, number one, the allegations in India itself hadn't been proven. Number two, what about jurisdiction in this particular case? Did it actually stand? So last week, the U.S. Securities and Exchange Commission had settled the civil allegations against them, and now the criminal allegations against the two have been settled by the U.S. Department of Justice. In fact, the case has been dismissed with prejudice.
1: Right, absolutely, Vishnu. Thanks for sharing that update with all of us. Shifting our focus to other big stories we've been tracking since morning and a major development in the Twisha death probe. The bail plea of her husband, Samarth Singh, has now been rejected by the court as the probe into the death of Twisha under unnatural circumstances picks pace. Samarth continues to abscond with a Rs 10,000 bounty announced for him and also passport cancellation proceedings initiated against him. Two new CCTV tapes have now emerged, which throws light on the last 53 minutes of Twisha's life at her matrimonial home in Bhopal. In the first CCTV tape, Twisha can be seen going up the stairs. In the other CCTV, it can be seen Twisha is being given CPR and then being taken out. There are claims, there are counterclaims doing the rounds from both the families. Let's now take a look at what exactly happened. Let's now take you through the contrasting claims that are coming in from Twisha's in-laws and what Twisha's family's claims. So, the mother-in-law today gave an interview in which she said she's accused Twisha. She goes on to say puja paath was just a show-off. Now, Twisha's family is perhaps seeking justice after their daughter's death. Twisha sent multiple distressed messages to her family, to her mother and her brother as well. The next claim, mother-in-law, who's a retired judge, claims Twisha took an abortion pill. But in a text message that Twisha sent to her family, she said that Samarth, her husband, asked whose baby I was carrying. There were allegations on Twisha that she was perhaps carrying an illegitimate child. Next up, mother-in-law says Twisha visited a psychiatrist and attended counseling. Her in-laws continuously blamed that she perhaps was having some kind of a mental illness. To which these are some screenshots of the messages that Twisha sent. She said that I'm very disturbed. Come take me away. They don't wish anything nice for me. Then mother-in-law says Twisha had shivering hands, withdrawal symptoms, pardon me, claiming that she was taking drugs, she was taking marijuana, and post that she was having drug withdrawal symptoms. But Twisha sent this message to her brother in which she said that all of them think I do drugs and that's why I'm in a bad mood. The last statement coming out of the mother-in-law, which she says young women take extreme steps easily and that is why she killed herself. That's the claim that Twisha's in-laws are making, that she died by suicide. But this is again a message which Twisha sent to her family in which she said they have no empathy for the other person and that they don't want me to ever be happy. Hence, these are some of the claims, the counterclaims coming out from both the sides of the family. Earlier today, our managing editor, Shivarur, spoke with Twisha's father. Take a look.
2: समर्थ से मुलाकात कब हुई थी, एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
3: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई, हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
2: क्या ये कुछ
3: आ रही है सर अब?
2: जी जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
3: नहीं नहीं जल्दी शादी नहीं हुई है, एक साल भर डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बात में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
2: शादी में क्या दहेज दिया था आपने नवनिधि जी? क्या दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
3: देखिए आज आजकल के टाइम में दहेज ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज़ बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे,
2: तो ऐसे क्या
3: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
2: जी। तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
3: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमने हमारे लोगों ने जा कर के उनको गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने एफआईआर में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
2: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
3: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज़ ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
2: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी नवनिधि जी,
3: बेड़िया
2: जी जी जी
3: आती थी आती आना चाहती थी सर। ये एक एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड। बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हैरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
1: Well, nearly 72 hours since her death came to the limelight, Twisha's mother-in-law, Giribala Singh, a retired judge, has spoken out, blaming her now-dead daughter-in-law over her habits and medication.
4: When we had gone to Kakoli Roy ji ke paas, hum log saath ko gaye the. Jab wo chah rahe the, wo first day ki pregnancy ko reverse kare. To wo baar baar wo pooch rahe the, why do you want this? Aur aapne ye kadam kyun uthaya? Tab usne मेरे सामने कहा, आई हैव कंज्यूम्ड ए लार्ज क्वांटिटीज मारुआना। उनके सामने उसने कबूल किया, मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है। शी वॉज ऑन शिजोफ्रेनिक ड्रग्स। अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक शिजोफ्रेनिक के अंदर दो लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफ्रेंशिएट हो सकता है। उसका था आई नीड माई स्पेस, मुझे दूरी भी चाहिए, मेरे मायके वाले मुझे डिसओन किए हैं, और मायके वालों के लिए तो इतना बताती थी कि हमको बहुत कम उम्र से उन्होंने धकेल दिया इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री, कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी।
1: So you've heard

0: We have seen that there were seven accused that have been named in the FIR, but so far the Gautam Buddha Nagar police team has apprehended two individuals, one the father-in-law of the deceased and second one her husband. So right now the visuals just outside the mortuary center, you can see the victim's family members over here, and they have been constantly demanding for justice, and since morning they have been waiting over here to get the body. So the entire process was videographed over here, and right now what we are seeing that the body has been taken in that very one towards the residence of the victim. Video journalist Ashok Mahale, Akhil for NDTV 24/7.
1: With that, we slip into a very short break, but come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7. ...33-year-old Twisha's death shocks nation. Dowry angle under probe, absconding husband's bail plea rejected. Retired judge mother-in-law blames victim. NDTV accesses heartbreaking chats with Twisha with family and friends. Prime Minister Modi conferred Norway's highest honour. The Grand Cross is the highest grade of the Royal Norwegian Order of Merit, awarded in recognition of exceptional service towards strengthening ties with Norway. Big decision by Chief Minister Shubhendu Adhikari. State government scraps religion-based welfare schemes. West Bengal also planning a review of the OBC list. Tamil Nadu woman crushed to death after elephant falls on her in Karnataka's Dubare camp. State Environment Minister swings into action, orders tourists can only see elephants from 100 feet away. Pakistan deploys troops, jets to Saudi under defense pact amid Iran war. Deployment includes 8,000 troops, JF-17 jets, drones, HQ-9 air defense system.
2: Presented by Canara Bank. Together we can.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।
5: सबका राजा और प्योर मसाला।
6: High rate, check the audio, high rate, check the audio.
7: Let's do it, let's start.
8: Big news that we're breaking first here on NDTV.
9: We know for sure that they have, you know, confirmed their support to him.
8: We've got a picture of the letter.
10: The breaking story, we're jumping straight into it.
11: They do not want to be part of an experiment.
12: Show around and then come to me.
13: At the Nehru Stadium in Chennai.
14: Unconditional support.
9: Crime killer of TVK is here with us.
15: We've got Mr. Dinakaran with us here.
16: Veera, why aren't you also dancing?
9: Vijay is coming out, TVK chief.
8: Big breaking story here on NDTV. Nobody else has these details. Thank you for all the support. Thank you for the viewership. Thank you for the love.
17: Across the country.
18: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones, brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.
19: आपने तो दीदी को एकदम धो डाला।
20: इसमें जनता का जीत है, मोदी जी का जीत है।
21: आज के की खावें झालमुड़ी ना माचेर झोल।
19: How will you celebrate?
20: झालमुड़ी माचेर झोल विद रसगुल्ला।
22: You know, you remember, you promised me that you will come to Kabini and do an interview with me. You like going to the forest?
23: This is a declaration of our state that to the entire country that our Kerala is secular.
24: ये विजय बंगाल की जनता के विशेष करके मातृशक्ति की।
19: One clip that went most viral was the non-interview. Cruz spent some time with him. We have these whistles out for you, and the whistles are for the fact that you got the poll right, which is quite fantastic.
25: We saw you campaigning, ma'am, for the RG Kaur victim's mother as well. You know, that was a telling moment. Do you believe that that incident in some ways was a tipping point?
26: I think that was not the only incident.
27: Tobi poran khule তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে
3: থোড়ে মে জাদা স্বাদ কে হিত তো হে ইসকি খাস বাত
4: বাও মামা ক্যা স্বাদ হে
3: আরে মেরে রাজা
5: সবকা রাজা আর প্যোর মসালা
18: The front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
0: so many attacks.
18: The chaos and cries of disaster zones to fighter jet cockpits and the world's most defining interviews.
0: It's incredible.
18: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
1: Welcome to Left, Right and Center.
18: Hard facts.
2: War-struck country.
18: Hard questions.
2: In the Ukraine.
18: 30 years of trust.
6: In the Kargil area.
7: North Ukraine.
14: In France. In Italy.
15: At Srinagar.
16: France.
28: Vishnu Shom for NDTV.
18: Vishnu Shom. Only on NDTV.
29: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines.
30: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7 with me, Tanisha Avasthi. Lots lined up for you on this edition, but first, as always, the headlines. 33-year-old Twisha's death shocks the nation. Dowry angle under probe. Absconding husband's bail plea has now been rejected. Retired judge mother-in-law now blames the victim. NDTV meanwhile accesses the heartbreaking chat of Twisha with family and friends. Prime Minister Modi conferred Norway's highest honour. The Grand Cross is the highest grade of the Royal Norwegian Order of Merit, awarded in recognition of exceptional service towards strengthening ties with Norway. Big decision by Chief Minister Suvendu Adhikari. State government scraps religion-based welfare schemes. West Bengal also planning a review of the OBC list. Tamil Nadu woman crushed to death after elephant falls on her in Karnataka's Dubre camp. State Environment Minister swings into action, orders tourists can only see elephants from 100 feet away. And Pakistan deploys troops and jets to Saudi under defense pact amid Iran war. Deployment includes 8,000 troops, JF-17 jets, drones, HQ-9 air defense systems. In a major development in the Twisha death probe, the bail plea of her husband Samarth Singh has been rejected by the court as the probe into the death of Twisha under unnatural circumstances picks pace. Samarth continues to abscond with a 10,000 rupees reward announced for him and passport cancellation proceedings initiated against him. Two new CCTVs, meanwhile, have emerged which throws light on the last 53 minutes of Twisha's life. In the first CCTV tape, Twisha can be seen going up the stairs. In the other CCTV, it can be seen how Twisha is being given CPR and then being taken out. There's a claim and counterclaim from both the families. Let's take a look at them.
31: When we had gone to Kakoli Roy ji ke paas hum log saath ko gaye the jab wo chah rahi thi wo first day ki pregnancy ko reverse kare to wo baar baar wo pooch rahi thi why do you want this aur aapne ye kadam kyun uthaya tab usne mere samne kaha I have consumed a large quantities marijuana unke samne usne kabool kiya maine large quantities mein marijuana consume kiya hai. She was on schizophrenic drugs. अगर उसने कुछ कहा भी है क्योंकि एक schizophrenic के अंदर दो लोग बात करते हैं इकट्ठा बात करते हैं क्या सही है क्या गलत है सिर्फ WhatsApp चैट से कुछ भी नहीं डिफरेंशिएट हो सकता है उसका था I need my space मुझे दूरी भी चाहिए मेरे मायके वाले मुझे डिसोन किए हैं और मायके वालों के लिए तो इतना बताती थी कि हमको बहुत कम उम्र से उन्होंने धकेल दिया इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी.
30: You heard what the mother-in-law had to say. Now listen into what Twisha's father had to tell NDTV's Shivarur. Let's take a listen into what he had to say just a short while back.
32: समर्थ से मुलाकात कब हुई थी एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला
0: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई। हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
32: क्या ये कुछ
0: आ रही है सर अब?
32: जी जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
0: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है। एक साल भर डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिल के फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
32: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनीत जी क्या दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
0: देखिए आजकल के टाइम में दहेज है ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे।
32: तो ऐसे क्या
0: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
32: जी? तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
0: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमने हमारे लोगों ने जाकर के उनको गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने FIR में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
32: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
0: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
32: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी
0: जिसमें भेड़िया
32: जी जी जी, जी बोलिए
0: आना चाहती थी सर। ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
30: Well, a life that once seemed filled with glamour, ambition and new beginnings has now ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her in-law's house in Bhopal. Here is her story.
1: A life marked by glamour, reinvention and ambition has ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. There has been a Rs 10,000 bounty announced on her husband Samarth, who is currently absconding. The police are now probing the case as an alleged dowry death.

0: up by 1 rupee per kilogram. This was the second CNG price hike in Delhi NCR since May 15th. Congress has blamed the government for failing to tackle the impact of the Gulf conflict, saying common people are suffering while the Prime Minister is abroad. The BJP has meanwhile hit back, accusing Rahul Gandhi of irresponsible remarks and claiming that India has only seen a minimal fuel price hike despite global disruptions caused by the war. There are reactions that are coming in on that political story. Let's listen in.
1: Diesel aur petrol ke daam itne bada rahe hain. Modi ji agar yahi election ke pehle karte to malum hota tha. Unhone ye baatein sab chupa ke rakke inflation agar iska effect agar logon pe pada to election mein chunav mein isko bahut bada unko dhakka hoga. इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल डीजल गैस सबके दाम बढ़ाए तो इससे ये दर्शाता है कि फोर साइटेडनेस हमारे बीजेपी को सरकार को मोदी साहब को नहीं है.
2: तेलंगाना सरकार 36-37% वैट कलेक्ट करते हैं हर लोगों के ऊपर. क्यों आप लोग अगर जनता के ऊपर प्रेम है तो क्यों नहीं करते? हम किए ना. मोदी सरकार बीजेपी सरकार हम वैट कम किया है अलग अलग स्टेट्स में. आप क्यों नहीं किया है? कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी गलत प्रचार करते हैं. राहुल गांधी गैर जिम्मेदारी के साथ ये रेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना आज भारत का इश्यू नहीं है. सारी दुनिया से आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं. लगभग 40 देशों से भारत सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं 40 देशों से.
3: दाम तो बढ़ेगा ही, अब युद्ध चल रहे तो थोड़ा सा तो हम लोग को एडजस्ट करना ही पड़ेगा. माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कन्वॉय था वो दो गाड़ी में आ गया है. माननीय प्रधानमंत्री बोले हम सिर्फ दो गाड़ी लेकर निकलेंगे. तो हम लोग सबको एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है हफ्ता में एटलीस्ट 2 डेज की 3 डेज. देश और पृथ्वी अभी एक संकट से जा रहे, इसमें हम लोग को एडजस्ट करना ही है. अभी और आगे का दिन अभी अच्छा हो जाएगा तो कोई चिंता नहीं.
4: देश में पेट्रोल डीजल एलपीजी पीएनजी की सप्लाई सामान्य है. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है. एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है. ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है.
0: A tragic incident occurred at an elephant camp in Kodagu district where a woman tourist lost her life after an elephant reportedly fell on her during a clash between two elephants. Now the deceased has been identified as a native of Chennai. The accident took place while elephants were being bathed in the Kaveri River at the Dubari camp. During the bathing session, an elephant named Kanjan allegedly attacked another elephant. In the chaos, one of the elephants lost balance and fell onto the other tourist. The woman got trapped under the elephant and died on spot. M.K. Stalin had us thinking he'd play statesman, a measured note on Vijay's government, almost statesman-like. But that was a week ago when Vijay was being sworn in. Now he's saying the Vijay government could collapse at any time. This from a man who is widely believed to still hold sway over the allies, keeping Vijay afloat as chief minister. The Vijay government aced his flow test last week, but Stalin knows and Vijay knows that numbers on paper and numbers you can actually hold are very different things in Tamil Nadu. Then there is the bombshell. The VCK chief has confirmed what was whispered. DMK and AIADMK were in talks. A grand alliance with the chief minister. And all engineered to deny Vijay the chair, even after VCK had declared support. So what is Stalin actually playing at? Is this psychological warfare keeping Chief Minister Vijay sleeping with one eye open? Or does Stalin genuinely have the levers to pull this government down? The Tamil Nadu chessboard is lit up again. The Vijay government had better keep its watching its back.
5: 1949 தொடங்கிய நம்முடைய கழகம் தொடர்ந்து 52 நடைபெற்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 57 நடைபெற்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 62 நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, அதற்கு பிறகு 67 நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 71 இப்படி தொடர்ந்து நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தல்களில் பல வெற்றிகளை கண்டதுண்டு, பல தோல்விகளையும் நாம் சந்தித்திருக்கிறோம். ஆனால் தோல்வியடைய நேரத்தில் தான் திமுக எப்பொழுதுமே ஒரு ஃபினிக்ஸ் பறவையை போல கிளர்ந்து எழக்கூடிய நிலையில அது வரும். இங்கே கூட பேசியவர்கள் எல்லாம் ஏதோ ஒரு சோகத்தில் இருப்பது போல நான் பார்க்குறேன். நாங்கள் மட்டும் இல்லை, இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய மட்டும் இல்லை, எதிரில் இருக்கக்கூடிய கூட இங்கே சோகமாக உட்கார்ந்து காட்சி பார்க்கலாம்.
0: And just when you thought Tamil Nadu politics could not get any more cinematic, director Venkat Prabhu has entered the frame with a full-on callback to GOAT. The filmmaker met Chief Minister Vijay and gifted him the now iconic TN07CM 2026 number plate, the very one used in the greatest of all time. Yes, the same plate that had fans screaming prediction or promotion back in the year 2024, sharing photos from the meeting on X, Venkat Prabhu wrote, and I quote, "A history is made from a thought to a vision to this moment. Happy to have met our Honorable Chief Minister today and present the very first manifestation of GOAT. This is only the beginning."

0: या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
1: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई, हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
0: क्या ये कुछ
1: आ रही है सर अब?
0: जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
1: नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है। एक साल भर, 1.5 साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बात में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिल के फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
0: शादी में क्या दहेज दिया था आपने नवनीति जी? क्या दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
1: देखिए आजकल के टाइम में दहेज ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज़ बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे।
0: तो ऐसे क्या
1: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
0: जी? तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
1: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमने हमारे लोगों ने जा कर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने FIR में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
0: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
1: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
0: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी नवनीति
1: में, भेड़िया
0: जी
1: आना चाहती थी सर। ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
2: Well, a life that once seemed filled with glamour, ambition and new beginnings has now ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her in-laws' house in Bhopal. Here is her story.
3: A life marked by glamour, reinvention and ambition has ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. There has been

0: ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। ये एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आज आपको विश्वास से कहता हूं ये हमारी गारंटी है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। चाहे वो ऑर्कलो का भारत के फूड सेक्टर में निवेश हो, इक्विनोर से भारत को एलपीजी और एलएनजी सप्लाई की बात हो, या यारा का भारत के फर्टिलाइजर क्षेत्र में योगदान। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से कई सीईओस भारत के वाइब्रेंट गुजरात और अन्य इन्वेस्टर समिट में भी बड़े उत्साह के साथ हमेशा भाग लेते रहे हैं। अब हमें इस पार्टनरशिप को, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर इसे न्यू फ्रंटियर की ओर ले जाना चाहिए और हमें अब एक एक कदम से चलने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें जरा गति भी बढ़ानी होगी और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे तय करने होंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi's ongoing engagement with the Nordic leaders marks a significant shift from India's foreign policy. Beyond cultural exchanges, traditional dance performances and high-level bilateral meetings, the visit underscores New Delhi's intent to build deep, long-term strategic partnerships with the Nordic region. Here is a report on why this matters.
2: The geopolitical importance of the Nordic region has intensified drastically. With Finland and Sweden recently joining NATO, the regional security architecture has been completely rewired, leaving Russia isolated in the Arctic Council. Simultaneously, an expanding Russia-China polar partnership is rewriting global trade and maritime dynamics. The rewired NATO security order leaves Northern Europe highly vulnerable to infrastructure threats. A going Sino-Russian polar alignment is fast-tracking new energy and shipping corridors. As a result, these contested Arctic sea lanes are transforming from scientific zones into arenas of intense global military and resource competition. New Delhi enters this summit aiming to convert occasional friendly dialogue into a permanent, sustained strategic partnership. India is no longer treating these states as isolated markets. Instead, New Delhi wants a deep, structural alliance that aligns Nordic capital and technology with India's massive manufacturing and security needs. India seeks permanent structure alliances to secure trusted technology corridors. This is critical to building resilient global supply chains in AI, semiconductors and batteries, reducing dependence on China. Furthermore, India wants co-developed defense technologies and advanced maritime capabilities to protect its interests. India's goals extend directly into maritime and resource sovereignty. Rapid ice melt in the Arctic opens up the strategic North Sea route. India wants to extend its Chennai-Vladivostok trade corridor onwards to Murmansk and the Nordics to bypass traditional maritime choke points. Environmentally, because polar ice disrupts Indian monsoon, New Delhi is pushing for shared climate data networks. Ultimately, the summit is about a long-term geopolitical pivot. For the Nordics, India offers a trusted democratic anchor in the Indo-Pacific. For India, the strategic partnership secures technology, capital, and vital reins required for the next decade. Bureau Report, NDTV World.
1: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.
3: I've
4: always liked NDTV. It's the most reliable news channel more than anything.
5: TVK headquarters here.
6: Lot of thanks for NDTV. Congratulations to NDTV.
7: Thank the team for their incredible coverage of the Tamil Nadu election so far.
8: Fast moving, but still.

0: Again, just a sampling of what Twisha was saying to her brother. I spoke to Navnidhi Sharma, Twisha's father, with whom she also was sharing texts. And this is what he said to me. And I've asked him a question about what about Twisha's own parents? What about him? What about the mother? Why did they allow Twisha to remain in that house when they knew she was being tortured, when they knew that her honeymoon began by being assaulted by her husband? And joining me live now is young Twisha Sharma's father, Navnidhi Sharma, who has been protesting outside the Chief Minister's residence for the last few days, demanding justice and a fresh post-mortem. Her husband, Samarth, a well-known lawyer in Bhopal, has been absconding. His bail has been denied as well. And Navnidhi Sharma, the father of Twisha, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, आपका स्वागत है. मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है त्विशा के डेथ को लेकर. तो पहले मैं ये बोलूँगा कि वी एक्सप्रेस आर डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू यू सर. वी आर वेरी सॉरी टू हियर अबाउट दिस न्यूज़. मेरा पहला सवाल नवनिधि जी, मैं शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूँ. समर्थ से मुलाकात कब हुई थी? एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
1: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई. हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था.
0: क्या ये कुछ
1: आ रही है सर अब?
0: जी जी आ रही है. क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी? दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
1: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है. एक साल भर, 1.5 साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बात में. हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिलके फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में.
0: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनिधि जी, क्या दहेज की कुछ बात थी? दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
1: देखिए, आजकल के टाइम में दहेज ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए. कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए. आदमी बोलता है, एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे.
0: तो ऐसे क्या
1: समझा जाता है कि ये दहेज ही है?
0: जी, तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
1: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया. हमारे लोगों ने जा कर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए. उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर, जिसका मेंशन हमने FIR में किया है. उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है, उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई.
0: तो उसके बाद आपने क्या किया? जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
1: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था, क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है. इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे. तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने. ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट. हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी. एक्चुअली बेटियाँ ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए. इट वाज़ ए केस ऑफ लाइक दैट. पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे. हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी.

0: बिटिया की भी टिकट हुई जो वो पहुंच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
1: त्विशा तो नोएडा वापस आना चाहती थी
0: है कि जिसमें भेड़िया आना चाहती थी। सर ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड। बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की जो बहू भी, वो भी हैरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
1: लेकिन नवनीत जी, आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर?
0: नहीं, पता नहीं था। बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई मतलब तुमको तकलीफ होगी इससे घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली। मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
1: आप मान रहे कि आपकी गलती है नवनीति जी की, हनीमून में जो हुआ था, त्विशा को धक्का मारा समर्थ ने और आपने कुछ नहीं किया,
0: मानते हैं कि सर देखिए इंडिकेशन इंडिकेशन पर ऐसा है कि कोई भी आदमी जब इतनी शादी करता है तो ये सोच के नहीं करता है कि अगर कोई आदमी एक गलती कर देगा तो तुरंत आपकी शादी कैंसिल कर देगा। आदमी यही कोशिश करता है, बिटिया लोग यही कोशिश करती हैं कि उनका सुहाग बचा रहे, यही हमारी हिंदू परंपरा है सर। बेटियां सुराग को बचाने के लिए बहुत सारा दुख दर्द सहन कर लेती हैं, बाद में बताती हैं अपने माँ बाप को, एकदम इमीडिएटली शेयर भी नहीं करती हैं बहुत सारी चीज़। अगर आज उसने चैट में जो शेयर किया है और जो उसने हमको वर्बली बोला है तो उसका 20% ही पार्ट समझिए आप उसका। तो शिवाज इन पेन, वो पर स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उसने मेरे को बोला था पापा आई हैव मेड ए रॉन्ग डिसीजन, मैं यहाँ से छोड़ के आऊँगी और हम लोग अपना बिजनेस करेंगे या जो भी है काम करेंगे एंड आई विल लीड माय लाइफ।
1: और जब त्विशा ने ये बोला था और त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी, ये आप जानते थे नवनीति जी, तो आपने उसे वहाँ से तुरंत निकाला क्यों नहीं फिर? ये एक बात नहीं थी, हनीमून के बाद भी काफ़ी सारे टेक्स्ट आए थे, कुछ इंसिडेंट्स हुए थे।
0: नहीं, काफ़ी बात निकाला, पर यह था मैंने आपको बोला ना कि लड़की का मोटिव हमेशा पॉजिटिव साइड में होता है। लड़की का मोटिव कभी भी ऐसा नहीं होता कि छोटे मोटे या किसी ऐसी दुर्घटना को वो अपने सीने पर लगा करके संबंध तोड़ दे। संबंध तोड़ना लड़की के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है सर उसकी लाइफ का। हाँ, वो अब धीरे इतना सहन करने के बाद वो इस स्टेज में पहुंच गई थी कि वो हमने निर्णय उसके ऊपर छोड़ा हुआ था, लड़की के ऊपर। मैंने कहा यू आर ट्राइंग, यू मस्ट नॉट ट्राई, हमने बोला था। बोले पापा आई एम ट्राइंग जस्ट लास्ट टाइम, और अब अगर मुझे नहीं मिला तो आई विल लीव डेफिनेटली, आई विल मेक ए फाइनल डिसीजन।
1: तो फिर अगर अगर
0: प्रोसेस है सर,
1: नवनीति जी, अगर त्विशा उनके मैरिटल होम को छोड़कर वापस आना चाहती थी आपके पास, तो फिर ये एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया उसने, आपके अंडरस्टैंडिंग में क्यों लिया उसने?
0: उसने जी मेरे, आप देखिए ना कि उसने एक्सट्रीम स्टेप लिया कि उसको मार दिया गया या बहुत डूबी है, संदिग्ध है। आज हम PM2 की डिमांड करी है हमने बहुत सीरियसली। अगर आज भी अगर आप देखो जो कोर्ट में जमानत मिली है उसमें पुलिस ने जो दलील दी है कोर्ट को, उसमें साफ साफ बोला है कि ये रसूखदार लोग हैं, ये केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इनके जो क्लोज रिलेटिव हैं वो यहाँ के लोकायुक्त हैं सत्येंद्र सिंह जी, इनके हाई कोर्ट में जजेस हैं, इनके लोग हर जुडिशरी में जगह जगह बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, इन्हीं के लोग मेडिकल में बैठे हैं। पूरी फैब्रिकेटेड रिपोर्ट है जो पहली PM रिपोर्ट आई है जो कि फाइंडिंग से मिसमैच कर रही है। इसलिए हमने PM2 की डिमांड की थी जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अप्रूव करने के बाद में कि आपका जो है तुरंत बॉडी भेजी जाए PM2 के लिए, वो रिजेक्ट कर दी गई और अंडर इसी जुडिशरी के लिए डाल दी गई अप्रूवल के लिए। इट मीन्स जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर वो बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, साक्ष्य खत्म हो जाते हैं, तो इस न्याय प्रक्रिया का कोई भी फायदा नहीं है।
1: नवनीति जी, त्विशा का बॉडी अभी भी मोर्चुरी में है,
0: स्ट्रॉन्ग है।
1: आपका डिमांड है कि PM2
0: अभी भी मोर्चुरी में
1: पोस्टमार्टम हो जाए, समर्थ अभी अब्सकॉन्ड

0: मैं तो मेरा रिक्वेस्ट है
1: नवनिधि जी, समर्थ कहाँ है उसका, बेल डिनाई हो चुका है अभी।
0: ये तो पुलिस से पूछना चाहिए सर, समर्थ इन रसूखदार लोगों के घर पर ही मिलेगा, कहाँ मिलेगा सर, इनको देखना चाहिए। आज पुलिस उसको कस्टडी में नहीं ले पाती है तो ये पुलिस का फेलियर है ना सर।
1: 12th मई की रात 10 बजे आखिरी बात हुई त्विशा से, नवनिधि जी उस वक्त क्या कहा उसने, कोई परेशानी बताई थी उस
0: वक्त? रिक्वेस्ट है सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, इस केस को अगर मेरे को आपको न्याय दिलाना है तो मेरे लिए प्लीज़ आवाज़ उठाइए, इस बॉडी को डिस्ट्रॉय होने से बचाइए, डिकम्पोज होने से बचाइए, इसको तुरंत PM2 के लिए दिल्ली भिजवाइए, प्लस सर इसकी स्वतंत्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी।
1: वो तो NDTV करेगी और कर रही है सर।
0: आप सोचते हैं सर कि ऐसे इसमें मुझे कोई न्याय मिल रहा है? जी सर
1: नहीं, हम तो लगातार करेंगे
0: ऐसी न्याय प्रक्रिया में। आप में विक्टिम का बाप होकर के सर, मैं खुद विक्टिमाइज हो रहा हूँ आपके जुडिशियल सिस्टम में सर, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा एक दूसरी जगह?
1: नवनिधि जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, मैं आपको वादा देता हूँ, अभी नेशनल टेलीविजन पर मैं आपको वादा दे रहा हूँ कि NDTV आपके साथ खड़ा है और जस्टिस लाने तक हम इस स्टोरी को रिपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं आपको नेशनल TV 9 PM NDTV न्यूज पर आपको लाइव ले रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या पहले कभी त्विशा ने अपने इन लॉज की मारपीट या जुल्म की बात की थी आपसे? कोई पुरानी शिकायत कुछ भी था हनीमून के बाद, ऐसा कुछ भी सामने आया था?
0: बहुत पुरानी शिकायत है सर, हमने उसके व्हाट्सएप चैट्स हैं जो हमने आज कोर्ट में सरेंडर किए साक्ष्य के रूप में, जो मौखिक बात होती है सर वो होती है, पर वो एक इस तरीके का पूरा जो एक सीक्वेंस चला है कि उस लड़की ने सोचा कि ये कैसे भी चेंज हो जाए, ये ऐसी बात ना करें, उसने एक प्रोसेस को झेला है सर, वो बाद में एंड तक उसको प्रोसेस को झेलती रही है सर, वो व्हाट्सएप चैट हमने सबमिट करी है कोर्ट में सर।
1: आपको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं नवनिधि जी, ऐसे आपने बताया है मीडिया को, आपको आपका कहना है कि सबूत मिटाए गए, ये आरोप आप किस चीज के आधार पे लगा रहे हैं? आपको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, आप ये
0: बिल्कुल इस जी मेरे हमको कोर्ट परिसर में हमको अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस बुलवानी पड़ गई, क्योंकि कोर्ट परिसर में हमारे ऊपर अटैक हुआ, 2 बार हमको अटैक किया गया, ये बहुत सारे हमको परेशानी हुई है, और यहाँ पर हम अकेले हैं सर, हमारा कोई नहीं है, आज कोई यहाँ पर लॉयर खड़ा नहीं हो सकता इनके सामने, यही तो लोग हैं, इनके खिलाफ कौन खड़ा होगा सर, यहाँ पर ये सिस्टम के खिलाफ कौन खड़ा होगा सर? आप देख रहे हैं ना कि अप्रूवल देने के बाद में जुडिशरी में डाल दिया गया PM2 का अप्रूवल सर, इट मीन्स जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड सर, और आज जो बेल मिली है सर, किस बिना पर बेल मिली है, इसमें पुलिस ने दलील दी कि ये लोग बहुत रसूख वाले लोग हैं, पुलिस ने बोला सर, और ये साक्षियों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये पुलिस का कहना है, मेरा भी कहना नहीं है सर।
1: नवनिधि जी,
0: पहले वाले अक्यूज्ड को छोड़ दिया गया,
1: गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज हैं, क्या आपको लगता है इसलिए पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेशन में डिले किया है?
0: जी सर, रिटायर्ड जज भी हैं, आज भी वो प्रेजेंट में भी कंज्यूमर फोरम की हेड है, हटाई नहीं गई है सर, आज भी वो रन कर रही हैं ऑफिस। अगर कोई आदमी ऑफिस रन कर रहा है उसके खिलाफ आदमी कैसे खड़ा हो सकता है? यहाँ वकील लॉबी नहीं खड़ी हुई, हमें यहाँ वकील नहीं मिले सर, वी आर इन अ वेरी डेंजरस एंड प्रिकेरियस सिचुएशन सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
1: नो, NDTV इज विद यू, दैट्स व्हाई यू आर लाइव।
0: यहाँ पे मुझे मैं को ये नहीं प्रूव करना या सर,
1: नवनिधि जी, वी अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज वाचिंग यू राइट नाउ,
0: वी आर अंडर वेरी मच प्रेशर।
1: यस
0: सर
1: आई वांट टू आस्क यू टू मोर क्वेश्चंस।
0: नहीं दिया जाता प्रेशर, ऐसे दिया जाता है FIR लॉज नहीं हो रही थी 3 दिन तक सर।
1: बिल्कुल
0: यहाँ पर 5 दिन के बाद FIR लॉज हो रही है,
1: नवनीति जी
0: की प्रताड़ना हो रही है, ये सब क्या दिखा रहा है सर? CM हाउस में प्रोटेस्ट किया, CM ने हमें 1 मिनट का समय नहीं दिया मिलने का सर,
1: और आपका
0: CM ने हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया सर किसी भी काम का।
1: आपका बेटा एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर भी है, मेरी बात हुई है उनसे भी, और मुझे पता चल गया कि कितना काम करना पड़ा एक FIR लॉज करने के लिए, लेकिन एम्स में अभी भी नवनीति जी त्विशा का बॉडी पड़ी रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, और दूसरा पोस्टमार्टम क्यों मांग रहे हैं आप स्पेसिफिकली?
0: जी स्पेसिफिकली सर मैं बताऊं, उसमें जो फैक्ट्स लिखे गए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं सर बिल्कुल, उसमें बहुत सारी चीजें जो मैच नहीं कर रही हैं, जो हमारी फंडिंग्स आ रही हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें मैच ही नहीं कर रही हैं सर, उसमें पूरा ये कैकस निकल के आएगा सर। मैं तो कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा जो है आपको बम ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जवाब देना पड़ जाएगा इसमें। इसलिए ये PM2 की रिपोर्ट जुडिशरी में डाली गई है कि अप्रूवल ड्यूरी, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको डिले करके, इसको डिकेइंग प्रोसेस में डाल करके, डिकम्पोज करके इसको सत्य को छुपाया जा रहा है।
1: आखिरी सवाल नवनिधि जी, आप मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, अब आपकी सरकार से एक ही मांग क्या है? आपने बोला है कि उन्होंने आपको कोई भी अश्योरेंस नहीं दिया है, तो क्या मांग रहे हैं आप उनसे? हम
0: मिलने का समय नहीं दिया सर, मिलने का समय नहीं दिया, एक मिनट के लिए नहीं मिले वो हमसे, कोई अश्योरेंस नहीं आया सर हमारे पास में। और ये मुझे लगता है कि असमर्थता व्यक्त करी, या उनके लिए ये केस कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, दूसरी चीज़ें प्रायोरिटीज़ में हैं उनके। एक गरीब आदमी की बेटी मर जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
1: ओके, नवनिधि शर्मा, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
2: Now I want to show you what the mother-in-law of Twisha Sharma, a retired judge, by the way, named Giribala Singh, has said about Twisha. She held a press conference and I'll show you some clips of what she said. But this is what she's basically said. She said, Puja Path was just a show. She basically is saying that her daughter-in-law was an imposter and a liar, that Twisha took an abortion pill, that Twisha consumed large amounts of marijuana, that Twisha called Samarth and told him she had taken a pill, that Twisha visited a psychiatrist and attended counseling as well, that there was psychological pressure from the glamour world because she was a model, a beauty queen, as well as someone who tried to get into the film industry. Twisha had shivering hands and withdrawal symptoms suggesting that she was a drug addict. This is what the mother-in-law is alleging. And that Twisha was taking Olsarpram medicine and that her behavior kept changing after her Delhi visit. Young women take extreme steps easily, says the mother-in-law. No FIR has been lodged yet. The husband, the son of the woman you're about to hear, is still absconding. Here's what she's saying.
3: When we had gone to Kakoli Roy ji ke paas hum log saath ko gaye the, jab wo chah rahi thi wo first day ki pregnancy ko reverse kare, to wo baar baar wo pooch rahi thi why do you want this aur aapne ye kadam kyun uthaya, tab usne mere samne kaha I have consumed large quantities marijuana. Unke samne usne kabool kiya maine large quantities mein marijuana consume kiya hai. She was on schizophrenic drugs. अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक schizophrenic के अंदर दो लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफरेंशिएट हो सकता है। उसका था आई नीड माई स्पेस, मुझे दूरी भी चाहिए, मेरे मायके वाले मुझे डिसओन किए हैं, और मायके वालों के लिए तो इतना बताती थी कि हमको बहुत कम उम्र से उन्होंने धकेल दिया इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री, कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी।
2: And joining me live now is Madhuri Patel. She's a friend of Twisha Sharma's. She was also training for Miss India in 2013. That's where she got to know Twisha. She's a Mrs. Universe from 2023. And from the beauty world, she became friends with Twisha. Madhuri, thank you for agreeing to speak to us tonight here on NDTV. Your first thoughts, your first reaction when you heard about Twisha Sharma's death. Madhuri, welcome.
4: Thank you for inviting me. My first thought when I saw this news was I was shocked to the core, because the Twisha I knew was a very strong, independent girl. The Twisha I knew was somebody who will never take such kind of step. So it was very, very shocking.

0: We're jumping straight into it.
1: They do not want to be part of an experiment.
0: Show around and then come to me. At the Nehru Stadium in Chennai.
2: Unconditional support.
3: Giant killer of TVK is here with us.
4: We've got Mr. Dinakaran with us here.
0: Veera, why aren't you also dancing?
3: Vijay is coming out, TVK chief.
0: Big breaking story here on NDTV. Nobody else has these details. Thank you for all the support. Thank you for the viewership. Thank you for the love.
5: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
6: Hello and welcome. You're watching NDTV 24/7 with me, Tanisha Avasthi. Lots lined up for you on this edition, but first, as always, the headlines. 33-year-old Twisha's death shocks the nation. Dowry angle under probe. Absconding husband's bail plea has now been rejected. Retired judge mother-in-law now blames the victim. NDTV meanwhile accesses the heartbreaking chat of Twisha with family and friends. Prime Minister Modi conferred Norway's highest honour. The Grand Cross is the highest grade of the Royal Norwegian Order of Merit, awarded in recognition of exceptional service towards strengthening ties with Norway. Big decision by Chief Minister Suvendu Adhikari. State government scraps religion-based welfare schemes. West Bengal also planning a review of the OBC list. Tamil Nadu woman crushed to death after elephant falls on her in Karnataka's Dubre camp. State Environment Minister swings into action, orders tourists can only see elephants from 100 feet away. And Pakistan deploys troops and jets to Saudi under defense pact amid Iran war. Deployment includes 8,000 troops, JF-17 jets, drones, HQ-9 air defense systems. In a major development in the Twisha death probe, the bail plea of her husband Samarth Singh has been rejected by the court as the probe into the death of Twisha under unnatural circumstances picks pace. Samarth continues to abscond with a 10,000 rupees reward announced for him and passport cancellation proceedings initiated against him. Two new CCTVs, meanwhile, have emerged which throws light on the last 53 minutes of Twisha's life. In the first CCTV tape, Twisha can be seen going up the stairs. In the other CCTV, it can be seen how Twisha is being given CPR and then being taken out. There's a claim and counterclaim from both the families. Let's take a look at them.
7: When we had gone to Kakoli Roy ji ke paas hum log saath ko gaye the jab wo chah rahi thi wo first day ki pregnancy ko reverse kare to wo baar baar wo pooch rahi thi why do you want this aur aapne ye kadam kyon uthaya tab usne mere samne kaha I have consumed a large quantities marijuana unke samne usne kabool kiya maine large quantities mein marijuana consume kiya hai. She was on schizophrenic drugs. अगर उसने कुछ कहा भी है क्योंकि एक schizophrenic के अंदर दो लोग बात करते हैं इकट्ठा बात करते हैं क्या सही है क्या गलत है सिर्फ WhatsApp चैट से कुछ भी नहीं डिफरेंशिएट हो सकता है उसका था आई नीड माई स्पेस मुझे दूरी भी चाहिए मेरे मायके वाले मुझे डिसोन किए हैं और मायके वालों के लिए तो इतना बताती थी कि हमको बहुत कम उम्र से उन्होंने धकेल दिया इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी.
6: You heard what the mother-in-law had to say. Now listen into what Twisha's father had to tell NDTV's Shivarur. Let's take a listen into what he had to say just a short while back.
8: समर्थ से मुलाकात कब हुई थी एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला
9: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था।
8: क्या ये कुछ
9: आ रही है सर अब?
8: जी जी आ रही है। क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी, दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
9: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है। एक साल भर डेढ़ साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बात में, हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिल के फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में।
8: शादी में क्या दहेज दिया था आपने? नवनीति जी क्या दहेज की कुछ बात थी, दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
9: देखिए आज आजकल के टाइम में दहेज है ना, एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज़ बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए। कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए, आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे।
8: तो ऐसे क्या
9: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
8: जी? तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
9: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमने हमारे लोगों ने जा कर के उनको गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने एफआईआर में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
8: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
9: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पर, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियां है ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई जो वो पहुंच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
8: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी,
9: जिसमें भेड़िया
8: जी जी जी
9: आना चाहती थी सर। ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
6: Well, a life that once seemed filled with glamour, ambition and new beginnings has now ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her in-law's house in Bhopal. Here is her story.
2: A life marked by glamour, reinvention and ambition has ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. There has been a rupees 10,000 bounty announced on her husband Samarth, who is currently absconding. The police are now probing the case as an alleged dowry death. While a family has accused her husband and in-laws of harassment and are demanding justice. Trisha's journey reflected multiple identities. Originally from Noida, she entered the modeling world between 2009 and 2012 and later won the Miss Pune title, a breakthrough that opened doors in advertising and entertainment. She also went on to feature in commercial campaigns and Telugu cinema. But like many aspiring artists, sustained success in the movie industry proved difficult. Twisha eventually shifted gears and pursued MBA. According to a professional profile, she worked across marketing, communications, onboarding, and digital education. Beyond her professional achievements, Twisha was also known for her interest in wellness and spirituality. In 2024, during her corporate career phase, Twisha met lawyer Samarth Singh through a dating application, and the couple married on December 12, 2025. However, what appeared to be a modern and promising union soon turned troublesome. According to Twisha's family, within months of the marriage, allegations of dowry harassment and mental distress started surfacing. Her cousin Meenakshi spoke with NDTV and said that she was a jolly and happening girl.
4: इतना जॉली इतनी हैपनिंग लड़की थी और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी तो मैंने उससे पूछा मैंने कहा क्या हुआ कहती वही फैमिली में यार पता ही है शादी के बाद ये होता है मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए 15 किलो उसका वेट लूज हुआ
2: नाउ एज इन्वेस्टिगेटर्स पीस टुगेदर द इवेंट्स लीडिंग अप टू हर डेथ Questions continue to grow around the circumstances of Twisha Sharma's final months. With a husband still absconding and a family seeking accountability, the case has sparked fresh conversations around dowry harassment, mental distress, and the hidden struggles behind seemingly perfect lives. We report NDTV.
6: If you thought that Twisha's case was the only case, think again, because there is another case that's come to light from Noida. A 14-month-old marriage has ended in tragedy in Greater Noida in Uttar Pradesh, where a 25-year-old woman, Deepika, died after allegedly falling from the third floor of her in-law's home. Her family has accused her husband and in-laws of dowry harassment and murder, alleging demands for a Fortuner, SUV and rupees 50 lakh in cash. According to the complainant, Deepika had called her family on May 17, that's just yesterday, claiming that she was being beaten by her husband and in-laws. Hours later, relatives were informed that she had fallen from the roof and suffered critical injuries. Police have now arrested the husband and father-in-law, while further investigation in the case is currently underway.
10: Right now, we are standing just outside the mortuary center. Behind me, you can see the visuals over here. The deceased postmortem has already been done. It took approximately 3.5 hours to complete the postmortem. Right now, you can see the ambulance is being just taken out from this mortuary center of sector 94, and it's going towards the residence of the victim. Here, you can see the body of the deceased can be seen through the pan right now. And earlier, what we have seen that in the FIR, if just go by the FIR details, what we have seen that there were seven accused that have been named in the FIR. But so far, the Gautam Buddha Nagar police team has apprehended two individuals. One, the father-in-law of the deceased, and second one, her husband. So right now, the visuals just outside the mortuary center, you can see the victim's family members over here, and they have been constantly demanding for justice. And since morning, they have been waiting over here to get the body. So the entire process was videographed over here. And right now, what we are seeing that the body has been taken in that very one towards the residence of the victim. Video journalist Ashok Mahale, Akhil for NDTV 24/7.
6: Moving on to some other stories that we're tracking, fuel prices have sparked a fresh political showdown with the opposition attacking the centre over the second price hike of CNG. CNG prices have gone up by 1 rupee per kilogram. This was the second CNG price hike in Delhi NCR since May 15th. Congress has blamed the government for failing to tackle the impact of the Gulf conflict, saying common people are suffering while the Prime Minister is abroad. The BJP has meanwhile hit back, accusing Rahul Gandhi of irresponsible remarks and claiming that India has only seen a minimal fuel price hike despite global disruptions caused by the war. There are reactions that are coming in on that political story. Let's listen in.
11: डीजल और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ा रहे हैं, मोदी जी अगर यही इलेक्शन के पहले करते तो मालूम होता था। उन्होंने ये बातें सब छुपा के रख के इन्फ्लेशन, अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में, चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा। इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ाए, तो इससे ये दर्शाता है कि फोर साइटेडनेस हमारे बीजेपी को, सरकार को, मोदी साहब को नहीं है।
12: तेलंगाना सरकार 36-37% वैट कलेक्ट करते हैं हर लोगों के ऊपर। क्यों आप लोग, अगर जनता के ऊपर प्रेम है तो क्यों नहीं करते? हम किए ना, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, हम वैट कम किया है अलग अलग स्टेट्स में, आप क्यों नहीं किया है? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी गलत प्रचार करते हैं, राहुल गांधी गैर जिम्मेदारी के साथ। ये रेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना आज भारत का इश्यू नहीं है, सारी दुनिया से आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं। लगभग 40 देशों से भारत सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, 40 देशों से।
13: दाम तो बढ़ेगा ही, अब युद्ध चल रहे तो थोड़ा सा तो हम लोग को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कन्वॉय था वो दो गाड़ी में आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री बोले हम सिर्फ दो गाड़ी लेकर निकलेंगे, तो हम लोग सबको एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है, हफ्ता में एटलीस्ट 2 डेज की 3 डेज। देश और पृथ्वी अभी एक संकट से जा रहे, इसमें हम लोग को एडजस्ट करना ही है। अभी और आगे का दिन अभी अच्छा हो जाएगा, तो कोई चिंता नहीं।
14: देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई सामान्य है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं, पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ, और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है, ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है, और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है।
6: A tragic incident occurred at an elephant camp in Kodagu district, where a woman tourist lost her life after an elephant reportedly fell on her during a clash between two elephants. Now, the deceased has been identified as a native of Chennai. The accident took place while elephants were being bathed in the Kaveri River at the Dubari camp. During the bathing session, an elephant named Kanjan allegedly attacked another elephant. In the chaos, one of the elephants lost balance and fell onto the other tourist. The woman got trapped under the elephant and died on spot. M.K. Stalin had us thinking he'd play statesman, a measured note on Vijay's government, almost statesman-like. But that was a week ago when Vijay was being sworn in. Now he's saying the Vijay government could collapse at any time. This from a man who is widely believed to still hold sway over the allies, keeping Vijay afloat as chief minister. The Vijay government aced his flow test last week, but Stalin knows and Vijay knows that numbers on paper and numbers you can actually hold are very different things in Tamil Nadu. Then there is the bombshell. The VCK chief has confirmed what was whispered. DMK and AIADMK were in talks. A grand alliance with the chief minister. And all engineered to deny Vijay the chair, even after VCK had declared support. So what is Stalin actually playing at? Is this psychological warfare keeping Chief Minister Vijay sleeping with one eye open? Or does Stalin genuinely have the levers to pull this government down? The Tamil Nadu chessboard is lit up again. The Vijay government had better keep its watching its back.
15: 1949 தொடங்கிய நம்முடைய கழகம் தொடர்ந்து 52 நடைபெற்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 57 நடைபெற்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 62 நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, அதற்கு பிறகு 67 நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 71 இப்படி தொடர்ந்து நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தல்களில் பல வெற்றிகளை கண்டதுண்டு, பல தோல்விகளையும் நாம் சந்தித்திருக்கிறோம். ஆனால் தோல்வியடைய நேரத்தில் தான் திமுக எப்பொழுதுமே ஒரு ஃபினிக்ஸ் பறவையைப் போல கிளர்ந்து எழக்கூடிய நிலையில அது வரும். இங்கே கூட பேசியவர்களெல்லாம் ஏதோ ஒரு சோகத்தில் இருப்பது போல நான் பார்க்குறேன். நாங்கள் மட்டும் இல்லை, இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடியவங்க மட்டும் இல்லை, எதிரில் இருக்கக்கூடிய கூட இங்கே சோகமாக உட்கார்ந்து காட்சி பார்க்குறோம்.
6: And just when you thought Tamil Nadu politics could not get any more cinematic, director Venkat Prabhu has entered the frame with a full-on callback to GOAT. The filmmaker met Chief Minister Vijay and gifted him the now iconic TN07CM 2026 number plate, the very one used in the greatest of all time. Yes, the same plate that had fans screaming prediction or promotion back in the year 2024, sharing photos from the meeting on X, Venkat Prabhu wrote, and I quote, "A history is made from a thought to a vision to this moment. Happy to have met our Honorable Chief Minister today and present the very first manifestation of GOAT. This is only the beginning."

0: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
1: Launch control, 0 to 100.
2: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes.
3: Good evening and welcome. Thanks very much for joining us here on NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always, on every story that matters to you that you've been talking about, the buck stops here. And today on the show, we're going to talk about the Bhochala verdict and how the aftershocks are being felt even now. People are left wondering, have the floodgates been opened from Babri to Bhochala? That's coming up in just a minute. And at 8:30, we're going to talk about a piece that really has set the cat among the pigeons. Dr. Vikram Sampath, who now argues that it's time to start asking hard questions about the legacy of the Mughals. Were we being told history, taught history in a romanticized fashion? And is it time to start re-examining what historical facts have been fed to us? All of that and much more coming up in the next 1 hour. But first, right at the top, we're going to talk about the Bhochala verdict. And it's been less than a week since the High Court in Madhya Pradesh ruled that Bhochala is a temple and not the Kamal Maula Mosque as was being claimed so far. The days since the judgment have seen a steady stream of visitors flock to Bhochala and offer prayers. It's happening even today. But it is these very images of the people streaming in, of the saffron flag being hoisted, of the puja being done, that have sparked a fear. What next? Will other places of worship, will other mosques also see similar demands now? Arshad Madni of the Jamaat-e-Ulema warned against a growing atmosphere in the country where not just Muslims but Islam itself is now being put on target. He asked why repeated actions are being taken against mosques and madrasas and Islamic symbols are under attack. Former Madhya Pradesh Chief Minister Digvijay Singh too questioned the Bhochala verdict, called it vague, and wondered what its real intent was.
4: Places of Worship Act ka ko उसका एक अलग ही तशरीह कर दी गई है और वो सारा क्योंकि उस ज़माने में जब बिल्कुल जजमेंट आने वाला था तो ये तासुर दिया गया था बिल्कुल सीनियर मोस्ट लोगों की तरफ से पूरे मुल्क में उसमें लीगल फ्रेटर्निटी भी शामिल थी कि भाई ये एक्ट मौजूद है बस ये एक मामला है इसको हो जाने दो ख़त्म हो जाने दो जो भरोसा दिया गया था अब वो कहेंगे कहाँ भरोसा दिया था तो वो तो इस एक्ट की शक्ल में भरोसा मौजूद था अब इसको आप ख़त्म करिए ना ताकत तो है ही है ना तो ख़त्म करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा ठीक तरीके से कर लीजिए ये घुमा फिरा के करने की क्या ज़रूरत है
5: मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था ये ऐसे कई चीजों को खोल देगा तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं आज देख लो आज क्या हो रहा है जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है
6: इसमें थोड़ा सा अध्ययन करने की आवश्यकता है ये एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के किसी भी मस्जिद मंदिर गुरुद्वारा इसके अंदर चर्च इसमें पूजा का कोई प्रावधान कानूनन तौर पे नहीं है ये भोजशाला है या मस्जिद है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका सर्वे किया था उसमें इस बात का उल्लेख किया था कि यहां पर

0: मंदिर का कोई प्रमाण हमें नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी तो मुख्य रूप से केवल हिंदू मुसलमान के अलावा उनका कोई मुद्दा नहीं है।
1: कांग्रेस एक हिंदू विरोधी पार्टी।

0: के हिसाब से नहीं हो रहा है कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे।
1: तो ऐसे क्या
0: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
1: जी। तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
0: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया। हमने हमारे लोगों ने जाकर के उनको गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए। उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने एफआईआर में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
1: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
0: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियाँ हैं ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए। इट वाज ए केस ऑफ लाइक दैट, पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे। हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
1: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी,
0: जिसमें भेड़िया
1: जी
0: आती थी आना चाहती थी। सर ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर। दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
2: Well, a life that once seemed filled with glamour, ambition and new beginnings has now ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her in-laws' house in Bhopal. Here is her story.
3: A life marked by glamour, reinvention and ambition has ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. There has been a Rs 10,000 bounty announced on her husband Samarth, who is currently absconding. The police are now probing the case as an alleged dowry death. While a family has accused her husband and in-laws of harassment and are demanding justice. Trisha's journey reflected multiple identities. Originally from Noida, she entered the modeling world between 2009 and 2012 and later won the Miss Pune title, a breakthrough that opened doors in advertising and entertainment. She also went on to feature in commercial campaigns and Telugu cinema. But like many aspiring artists, sustained success in the movie industry proved difficult. Trisha eventually shifted gears and pursued MBA. According to a professional profile, she worked across marketing, communications, onboarding, and digital education. Beyond her professional achievements, Trisha was also known for her interest in wellness and spirituality. 2024, during her corporate career phase, Trisha met lawyer Samarth Singh through a dating application, and the couple married on December 12, 2025. However, what appeared to be a modern and promising union soon turned troublesome. According to

0: और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एप्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है। यह एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अचीवेबल है, और भारत में आपके इन्वेस्टमेंट को आउटकम्स में बदलना, मैं आज आपको विश्वास से कहता हूं, यह हमारी गारंटी है। यह केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है। आज जब फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी एक प्रकार से ग्लोबल चैलेंज बन गई है, तो भारत और नॉर्वे इनका मिलकर समाधान कर रहे हैं। चाहे वो अर्कलो का भारत के फूड सेक्टर में निवेश हो, इक्विनोर से भारत को एलपीजी और एलएनजी सप्लाई की बात हो, या यारा का भारत के फर्टिलाइजर क्षेत्र में योगदान। मुझे बहुत खुशी है कि आप में से कई सीईओस भारत के वाइब्रेंट गुजरात और अन्य इन्वेस्टर समिट में भी बड़े उत्साह के साथ हमेशा भाग लेते रहे हैं। अब हमें इस पार्टनरशिप को, इसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर इसे न्यू फ्रंटियर की ओर ले जाना चाहिए, और हमें अब एक एक कदम से चलने से कोई बात बनने वाली नहीं है। हमें जरा गति भी बढ़ानी होगी और लक्ष्य भी बहुत ऊंचे तय करने होंगे।
1: Meanwhile, the Prime Minister's ongoing engagement with Nordic leaders marks a significant shift in India's foreign policy. Beyond cultural exchanges, traditional dance performances and high-level bilateral meetings, the visit underscores Delhi's intent to build deep, long-term strategic partnerships with the Nordic region. We'll tell you why and leave you with this report.
2: The geopolitical importance of the Nordic region has intensified drastically. With Finland and Sweden recently joining NATO, the regional security architecture has been completely rewired, leaving Russia isolated in the Arctic Council. Simultaneously, an expanding Russia-China polar partnership is rewriting global trade and maritime dynamics. The rewired NATO security order leaves Northern Europe highly vulnerable to infrastructure threats. A going Sino-Russian polar alignment is fast-tracking new energy and shipping corridors. As a result, these contested Arctic sea lanes are transforming from scientific zones into arenas of intense global military and resource competition. New Delhi enters this summit aiming to convert occasional friendly dialogue into a permanent, sustained strategic partnership. India is no longer treating these states as isolated markets. Instead, New Delhi wants a deep, structural alliance that aligns Nordic capital and technology with India's massive manufacturing and security needs. India seeks permanent structure alliances to secure trusted technology corridors. This is critical to building resilient global supply chains in AI, semiconductors and batteries, reducing dependence on China. Furthermore, India wants co-developed defense technologies and advanced maritime capabilities to protect its interests. India's goals extend directly into maritime and resource sovereignty. Rapid ice melt in the Arctic opens up the strategic

0: होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए, उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने एफआईआर में किया है। उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
1: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
0: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था, क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियाँ ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए, इट वाज़ ए केस ऑफ लाइक दैट। पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे, हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
1: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी,
0: जिसमें बेड़िया
1: जी
0: आना चाहती थी। सर ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड। बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
2: Well, a life that once seemed filled with glamour, ambition and new beginnings has now ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her in-laws' house in Bhopal. Here is her story.
3: A life marked by glamour, reinvention and ambition has ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. There has been a Rs 10,000 bounty announced on her husband Samarth, who is currently absconding. The police are now probing the case as an alleged dowry death. While a family has accused her husband and in-laws of harassment and are demanding justice. Trisha's journey reflected multiple identities. Originally from Noida, she entered the modeling world between 2009 and 2012 and later won the Miss Pune title, a breakthrough that opened doors in advertising and entertainment. She also went on to feature in commercial campaigns and Telugu cinema. But like many aspiring artists, sustained success in the movie industry proved difficult. Trisha eventually shifted gears and pursued MBA. According to a professional profile, she worked across marketing, communications, onboarding, and digital education. Beyond her professional achievements, Trisha was also known for her interest in wellness and spirituality. In 2024, during her corporate career phase, Trisha met lawyer Samarth Singh through a dating application, and the couple married on December 12, 2025. However, what appeared to be a modern and promising union soon turned troublesome. According to Trisha's family, within months of the marriage, allegations of dowry harassment and mental distress started surfacing. Her cousin Meenakshi spoke with NDTV and said that she was a jolly and happening girl.
4: इतना जॉली, इतनी हैपनिंग लड़की थी, और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहती वही फैमिली में, यार पता ही है शादी के बाद ये होता है, मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है, ऐसे ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए, क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि

0: भारत सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं 40 देशों से।
1: दाम तो बढ़ेगा ही, अब युद्ध चल रहे तो थोड़ा सा तो हम लोग को एडजस्ट करना ही पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कन्वॉय था वो दो गाड़ी में आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री बोले हम सिर्फ दो गाड़ी लेकर निकलेंगे, तो हम लोग सबको एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है हफ्ता में एटलीस्ट 2 डेज की 3 डेज। देश और पृथ्वी अभी एक संकट से जा रहे, इसमें हम लोग को एडजस्ट करना ही है। अभी और आगे का दिन अभी अच्छा हो जाएगा, तो कोई चिंता नहीं।
2: देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई सामान्य है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ, और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है।
3: A tragic incident occurred at an elephant camp in Kodagu district where a woman tourist lost her life after an elephant reportedly fell on her during a clash between two elephants. Now the deceased has been identified as a native of Chennai. The accident took place while elephants were being bathed in the Kaveri River at the Dubari camp. During the bathing session, an elephant named Kanjan allegedly attacked another elephant. In the chaos, one of the elephants lost balance and fell onto the other tourist. The woman got trapped under the elephant and died on spot. M.K. Stalin had us thinking he'd play statesman, a measured note on Vijay's government, almost statesman-like. But that was a week ago when Vijay was being sworn in. Now he's saying the Vijay government could collapse at any time. This from a man who is widely believed to still hold sway over the allies, keeping Vijay afloat as chief minister. The Vijay government aced his flow test last week, but Stalin knows and Vijay knows that numbers on paper and numbers you can actually hold are very different things in Tamil Nadu. Then there is the bombshell. The VCK chief has confirmed what was whispered. DMK and AIADMK were in talks. A grand alliance with the chief minister. And all engineered to deny Vijay the chair, even after VCK had declared support. So what is Stalin actually playing at? Is this psychological warfare keeping Chief Minister Vijay sleeping with one eye open? Or does Stalin genuinely have the levers to pull this government down? The Tamil Nadu chessboard is lit up again. The Vijay government had better keep its watching its back.
4: 1949 தொடங்கிய நம்முடைய கழகம் தொடர்ந்து 52 நடைபெற்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 57 நடைபெற்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 62 நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, அதற்கு பிறகு 67 நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 71 இப்படி தொடர்ந்து நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தல்களில் பல வெற்றிகளை கண்டதுண்டு, பல தோல்விகளையும் நாம் சந்தித்திருக்கிறோம். ஆனால் தோல்வியடைய நேரத்தில் தான் திமுக எப்பொழுதுமே ஒரு ஃபினிக்ஸ் பறவையைப் போல கிளர்ந்து எழக்கூடிய நிலையில அது வரும். இங்கே கூட பேசியவர்களெல்லாம் ஏதோ ஒரு சோகத்தில் இருப்பது போல நான் பார்க்குறேன். நாங்கள் மட்டும் இல்லை, இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடிய மட்டும் இல்லை, எதிரில் இருக்கக்கூடிய கூட இங்கே சோகமாக உட்கார்ந்து காட்சி பார்க்குறோம்.
3: And just when you thought Tamil Nadu politics could not get any more cinematic, director Venkat Prabhu has entered the frame with a full-on callback to GOAT. The filmmaker met Chief Minister Vijay and gifted him the now iconic TN07CM2026 number plate, the very one used in the greatest of all time. Yes, the same plate that had fans screaming prediction or promotion back in the year 2024, sharing photos from the meeting on X, Venkat Prabhu wrote, and I quote, "A history is made from a thought to a vision to this moment. Happy to have met our Honourable Chief Minister today and present the very first manifestation of GOAT. This is only the beginning."

0: शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई।
1: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी, तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए?
0: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था, क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है। इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे, तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने। ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट, हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बेटियाँ है ना, बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए। इट वाज़ ए केस ऑफ लाइक दैट, पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे। हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई।
1: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी,
0: जिसमें बेड़िया
1: जी
0: आना चाहती थी। सर ये एक भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है। सर दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है, वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
2: Well, a life that once seemed filled with glamour, ambition and new beginnings has now ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her in-laws' house in Bhopal. Here is her story.
3: A life marked by glamour, reinvention and ambition has ended in tragedy. Trisha Sharma, a former beauty pageant winner, actor and corporate professional, was found dead at her marital home in Bhopal. There has been a rupees 10,000 bounty announced on her husband Samarth, who is currently absconding. The police are now probing the case as an alleged dowry death. While a family has accused her husband and in-laws of harassment and are demanding justice. Trisha's journey reflected multiple identities. Originally from Noida, she entered the modeling world between 2009 and 2012 and later won the Miss Pune title, a breakthrough that opened doors in advertising and entertainment. She also went on to feature in commercial campaigns and Telugu cinema. But like many aspiring artists, sustained success in the movie industry proved difficult. Trisha eventually shifted gears and pursued MBA. According to a professional profile, she worked across marketing, communications, onboarding, and digital education. Beyond her professional achievements, Trisha was also known for her interest in wellness and spirituality. In 2024, during her corporate career phase, Trisha met lawyer Samarth Singh through a dating application, and the couple married on December 12, 2025. However, what appeared to be a modern and promising union soon turned troublesome. According to Trisha's family, within months of the marriage, allegations of dowry harassment and mental distress started surfacing. Her cousin Meenakshi spoke with NDTV and said that she was a jolly and happening girl.
4: इतना जॉली, इतनी हैपनिंग लड़की थी, और शादी के बाद वो मुझसे बात थोड़ा कम कर रही थी, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? कहती वही फैमिली में यार, पता ही है शादी के बाद ये होता है, मेरे को बात करने में थोड़ा वो डर लगता है। ऐसे इंडिकेशन उसने काफ़ी दिए, क्योंकि शादी के बाद ऐसा तो नहीं है कि एकदम से लड़की चुप हो जाए। 15 किलो उसका वेट लूज हुआ।
3: Now as investigators piece together the events leading up to her death, questions continue to grow around the circle.

0: circumstances of Twisha Sharma's final months. With a husband still absconding and a family seeking accountability, the case has sparked fresh conversations around dowry harassment, mental distress, and the hidden struggles behind seemingly perfect lives. We report NDTV.
1: Now, if you thought that Twisha's case was the only case, think again, because there is another case that's come to light from Noida. A 14-month-old marriage has ended in tragedy in Greater Noida in Uttar Pradesh, where a 25-year-old woman, Deepika, died after allegedly falling from the third floor of her in-law's home. Her family has accused her husband and in-laws of dowry harassment and murder, alleging demands for a Fortuner, SUV and rupees 50 lakh in cash. According to the complainant, Deepika had called her family on May 17, that's just yesterday, claiming that she was being beaten by her husband and in-laws. Hours later, relatives were informed that she had fallen from the roof and suffered critical injuries. Police have now arrested the husband and father-in-law, while further investigation in the case is currently underway.
2: Right now, we are standing just outside the mortuary center. Behind me, you can see the visuals over here. The deceased postmortem has already been done. It took approximately 3.5 hours to complete the postmortem. Right now, you can see the ambulance is being just taken out from this mortuary center of sector 94, and it's going towards the residence of the victim. Here you can see the body of the deceased can be seen through the fan right now. And earlier what we have seen that in the FIR, if just go by the FIR details, what we have seen that there were seven accused that have been named in the FIR. But so far, the Gautam Buddh Nagar police team has apprehended two individuals. One, the father-in-law of the deceased, and second one, her husband. So right now, the visuals just outside the mortuary center, you can see the victim's family members over here, and they have been constantly demanding for justice. And since morning, they have been waiting over here to get the body. So the entire process was videographed over here. And right now, what we are seeing that the body has been taken in that very one towards the residence of the victim. Video journalist Ashok Mahale, Aakil for NDTV 24/7.
1: Moving on to some other stories that we're tracking, fuel prices have sparked a fresh political showdown, with the opposition attacking the centre over the second price hike of CNG. CNG prices have gone up by 1 rupee per kilogram. This was the second CNG price hike in Delhi NCR since May 15th. Congress has blamed the government for failing to tackle the impact of the Gulf conflict, saying common people are suffering while the Prime Minister is abroad. The BJP has meanwhile hit back, accusing Rahul Gandhi of irresponsible remarks and claiming that India has only seen a minimal fuel price hike despite global disruptions caused by the war. There are reactions that are coming in on that political story. Let's listen in.
3: Diesel aur petrol ke daam itne bada rahe hain. Modi ji agar yehi election ke pehle karte तो मालूम होता था. उन्होंने ये बातें सब छुपा के रख के इन्फ्लेशन, अगर इसका इफेक्ट अगर लोगों पे पड़ा तो इलेक्शन में, चुनाव में इसको बहुत बड़ा उनको धक्का होगा. इसीलिए उन्होंने ये किया कि इलेक्शन के इमीडिएटली बाद में पेट्रोल, डीजल, गैस सबके दाम बढ़ाए. तो इससे ये दर्शाता है कि फोर साइटेडनेस हमारे बीजेपी को, सरकार को, मोदी साहब को नहीं है.
4: तेलंगाना सरकार 36-37% वैट कलेक्ट करते हैं हर लोगों के ऊपर. क्यों आप लोग, अगर जनता के ऊपर प्रेम है तो क्यों नहीं करते? हम किए ना, मोदी सरकार, बीजेपी सरकार, हम वैट कम किया है अलग अलग स्टेट्स में, आप क्यों नहीं किया है? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी गलत प्रचार करते हैं. राहुल गांधी गैर जिम्मेदारी के साथ, ये रेट बढ़ाना नहीं बढ़ाना आज भारत का इश्यू नहीं है. सारी दुनिया से आज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं. लगभग 40 देशों से भारत सरकार पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, 40 देशों से.
5: दाम तो बढ़ेगा ही, अब यूं चल रहे तो थोड़ा सा तो हम लोग को एडजस्ट करना ही पड़ेगा. माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कन्वॉय था वो दो गाड़ी में आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री बोले हम सिर्फ दो गाड़ी लेकर निकलेंगे, तो हम लोग सबको एकदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना है हफ्ता में एटलीस्ट 2 डेज की 3 डेज। देश और पृथ्वी अभी एक संकट से जा रहे, इसमें हम लोग को एडजस्ट करना ही है। अभी और आगे का दिन अभी अच्छा हो जाएगा, तो कोई चिंता नहीं।
6: देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, पीएनजी की सप्लाई सामान्य है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। इसी तरह सारे पेट्रोल पंप भी नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं पर्याप्त डीजल और पेट्रोल के साथ, और कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। एलपीजी सिलेंडर्स की डिलीवरी नॉर्मल है। ऑनलाइन बुकिंग लगभग 96% है और डीएसी या ओटीपी बेस्ड डिलीवरी लगभग 90% तक है।
1: अ ट्रैजिक इंसिडेंट ऑकर्ड एट एन एलिफेंट कैंप इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट वेयर अ वुमन टूरिस्ट लॉस्ट हर लाइफ आफ्टर एन एलिफेंट रिपोर्टेडली फेल ऑन हर ड्यूरिंग अ क्लैश बिटवीन टू एलिफेंट्स। नाउ द डिसीज हैज बीन आइडेंटिफाइड एज नेटिव ऑफ चेन्नई। द एक्सीडेंट टुक प्लेस व्हाइल एलिफेंट्स वर बीइंग बेथ इन द कावेरी रिवर एट द डुबारी कैंप। ड्यूरिंग द बेथिंग सेशन एन एलिफेंट नेम कंजन एलिजिडली अटैक्ड अनदर एलिफेंट। In the chaos, one of the elephants lost balance and fell onto the other tourist. The woman got trapped under the elephant and died on spot. MK Stalin had us thinking he'd play statesman, a measured note on Vijay's government, almost statesman-like. But that was a week ago when Vijay was being sworn in. Now he's saying the Vijay government could collapse at any time. This from a man who is widely believed to still hold sway over the allies, keeping Vijay afloat as chief minister. The Vijay government aced his flow test last week, but Stalin knows and Vijay knows that numbers on paper and numbers you can actually hold are very different things in Tamil Nadu. Then there is the bombshell. The VCK chief has confirmed what was whispered. DMK and AIADMK were in talks. A grand alliance with the chief minister. And all engineered to deny Vijay the chair, even after VCK had declared support. So what is Stalin actually playing at? Is this psychological warfare keeping Chief Minister Vijay sleeping with one eye open? Or does Stalin genuinely have the levers to pull this government down? The Tamil Nadu chessboard is lit up again. The Vijay government had better keep its watching its back.
7: 1949 தொடங்கிய நம்முடைய கழகம் தொடர்ந்து 52 நடைபெற்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 57 நடைபெற்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 62 நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, அதற்கு பிறகு 67 நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, 71 இப்படி தொடர்ந்து நடைபெற்றிருக்கக்கூடிய தேர்தல்களில் பல வெற்றிகளை கண்டதுண்டு, பல தோல்விகளையும் நாம் சந்தித்திருக்கிறோம். ஆனால் தோல்வியடைய நேரத்தில் தான் திமுக எப்பொழுதுமே ஒரு ஃபினிக்ஸ் பறவையை போல கிளர்ந்து எழக்கூடிய நிலையில அது வரும். இங்கே கூட பேசியவர்களெல்லாம் ஏதோ ஒரு சோகத்தில் இருப்பது போல நான் பார்க்குறேன். நாங்கள் மட்டும் இல்லை, இந்த மேடையில் இருக்கக்கூடியவங்க மட்டும் இல்லை, எதிரில் இருக்கக்கூடிய கூட இங்கே சோகமாக உட்கார்ந்து காட்சி பார்க்குறேன்.
1: And just when you thought Tamil Nadu politics could not get any more cinematic, director Venkat Prabhu has entered the frame with a full-on callback to GOAT. The filmmaker met Chief Minister Vijay and gifted him the now iconic TN07CM2026 number plate, the very one used in the greatest of all time. Yes, the same plate that had fans screaming prediction or promotion back in the year 2024, sharing photos from the meeting on X, Venkat Prabhu wrote, and I quote, "A history is made from a thought to a vision to this moment. Happy to have met our Honorable Chief Minister today and present the very first manifestation of GOAT. This is only the beginning."

0: I feel suffocated. They will not let me live. Mummy, I will go mad here. I can't handle this anymore. These were 33-year-old Twisha's last messages to her mother. Twisha had married Bhopal-based advocate Samarth Singh in December 2025 after meeting him on a dating app a year earlier. But within months, the marriage had allegedly turned toxic.
1: तीन दिन पहले भी उसने आपसे कहा था कि मम्मी मुझे आकर ले जाओ
2: वो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करता था सही हो जाता था हर एक माँ बाप चाहते हैं हमने ऐसे संस्कार नहीं दिए अपनी बेटी को कि भाई सब एडजस्ट करने का ही बोलते हैं कि भाई कोई बात नहीं शुरू शुरू में सब जगह दूसरी जगह प्रॉब्लम साथ ही है तो अभी है ना 10-15 दिन से इससे ज्यादा वो कर दिया था
0: अकॉर्डिंग टू चैट्स शेयर्ड बाय द फैमिली Twisha repeatedly asked her mother to come and take her home. Twisha also alleged mental harassment and claimed her husband accused her of carrying another man's child. According to the family, Twisha made a final phone call to her mother around 10:05 p.m. on the night of the incident. But the call abruptly disconnected after her husband entered the room. Her brother, Major Harshit Sharma, says repeated calls to Twisha, her husband, and her mother-in-law went unanswered. At around 10:20 p.m., the family was informed that Twisha was not breathing. She was rushed to hospital and declared dead.
3: हम चाहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जरूर जाएंगे हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटी की निष्पक्ष जांच हो उसके लिए जांच के लिए उसकी बॉडी हमारा अधिकार है कि उसको एम्स दिल्ली में शिफ्ट किया जाए
0: Twisha was supposed to return to her parents' home in Noida on May 15. She died 3 days before. According to the post-mortem report, Twisha died due to antemortem hanging by ligature. But the report also mentions multiple injuries on her body sustained before death. This detail has intensified the family's suspicion. Twisha's relatives have accused her husband, Samarth Singh, and mother-in-law, Giribala Singh, of murder. The family is now demanding a second post-mortem examination at AIIMS Delhi. Police have registered a case of dowry harassment and abetment to suicide. Meanwhile, Twisha's husband, Samarth Singh, is still absconding. NDTV Bureau Report.
4: And Twisha, by the way, was like any of us, like anyone we know who's gotten married and entered a new home. She used to communicate with her parents and her brother, a serving army officer, by the way, on WhatsApp. And here are Twisha's last texts to her mother, which have become now part of the investigation. Look at what she said on WhatsApp to her mother. They won't let me live. Samarth asked whose baby I was carrying. Please come take me away. These are not suggestions. These are real words of Twisha. I am very disturbed, she said to her mother. They want Papa to rub his nose to the floor and apologize. Mummy, I will go mad here, said Twisha. I cannot handle this anymore. And this is just only a sampling. There are hundreds of texts. This is only a sampling of what Twisha was saying on WhatsApp to her mother. Now take a look at her chat with her brother, who is a serving major in the Indian Army. She says, this is my problem. I will handle it. Otherwise, it will be that I keep complaining. All of them think I do drugs and that's why I'm in a bad mood. They can't see there that their son has abandoned me, that my mood could be ruined because of this. I am feeling stifled. These people won't let me cry nor let me be happy. I am trapped. They are all very cruel. They have no empathy for the other person. I feel suffocated here. Nothing can go right now. Again, just a sampling of what Twisha was saying to her brother. I spoke to Navnidhi Sharma, Twisha's father, with whom she also was sharing texts. And this is what he said to me. And I've asked him a question about what about Twisha's own parents? What about him? What about the mother? why did they allow Twisha to remain in that house when they knew she was being tortured, when they knew that her honeymoon began by being assaulted by her husband? And joining me live now is young Twisha Sharma's father, Navnidhi Sharma, who has been protesting outside the Chief Minister's residence for the last few days, demanding justice and a fresh post-mortem. Her husband, Samarth, a well-known lawyer in Bhopal, has been absconding. His bail has been denied as well. And Navnidhi Sharma, the father of Twisha, joins me one-on-one for the first time. Navnidhi ji, आपका स्वागत है. मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अफसोस है त्विशा के डेथ को लेकर. तो पहले मैं ये बोलूँगा कि वी एक्सप्रेस आर डीपेस्ट कंडोलेंसेस टू यू सर. वी आर वेरी सॉरी टू हियर अबाउट दिस न्यूज़. मेरा पहला सवाल नवनिधि जी, मैं शुरू से स्टार्ट करना चाहता हूँ. समर्थ से मुलाकात कब हुई थी? एक वेडिंग या डेटिंग ऐप पे कनेक्ट कैसे हुआ और आपको ये रिश्ता कब पता चला?
3: डेटिंग ऐप पर ये इनकी मुलाकात हुई. हमें शादी से कुछ 6 महीने पहले, साल भर पहले ये रिश्ते का पता चला और हमने जो है बाद में सब ने रजामंदी करके इस रिश्ते को जो है हमने दे दिया, अप्रूवल दे दिया था.
4: क्या ये कुछ
3: आ रही है सर अब?
4: जी जी आ रही है. क्या कुछ ये जल्दी में हुई थी? दिसंबर 2025 में इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई? कोई दबाव था क्या घर से या उनकी तरफ से कुछ दबाव था?
3: नहीं नहीं, जल्दी शादी नहीं हुई है. एक साल भर, 1.5 साल इनको डेटिंग करते हुए उन्होंने डिस्क्लोज किया है बाद में. हमने फिर अप्रूवल दिया है और शादी में मिल के फिर आराम से शादी हुई दिसंबर में.
4: शादी में क्या दहेज दिया था आपने नवनिधि जी? क्या दहेज की कुछ बात थी? दहेज दिया था आपने, ऐसा कुछ था?
3: देखिए आजकल के टाइम में दहेज ना एक शब्द ऐसा है कि जिसको यूज बगैर किए हुए लोग तरह तरह से डिमांड करते हैं, सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसमें आपके जेब से पैसा निकलवाया जाए. कोई ऐसा नहीं बोलता कि मुझे दहेज के दीजिए. आदमी बोलता है एक सिचुएशन क्रिएट कर दी उसकी कि मेरे आपका मेरा काम आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हो रहा है, कि फलाने चीज़ की कमी दिख रही है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, इसके लिए इतना खर्चा आ रहा है, तो वह खर्चे के नाम पर दिए जाते हैं पैसे.
4: तो ऐसे क्या
3: समझा जाता है कि ये दहेज ही है
4: जी. तो क्या डिमांड्स किए थे उनकी तरफ से?
3: ऐसा एक इवेंट हुआ था जिसमें उन्होंने बोला कि स्टैंडर्ड का ये नहीं है, फलाना नहीं है, इसमें हमारा इतना खर्चा हो गया, फलाना ये हो गया. हमने हमारे लोगों ने जा कर के उनको, गिरिबाला सिंह को समझाया और उस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है ना कि चलो भाई आप थोड़ा बहुत जो भी है हमारे पास आप लीजिए. उनको कैश दे दिया था उस टाइम पर जिसका मेंशन हमने FIR में किया है. उसके बाद उनको उनके जो बेटी का जो जॉब छूटा है उनके ताने शुरू हो गए कि हम तेरे को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे, अपना पैसा हमारे पास कैसे कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है निकल के आई.
4: तो उसके बाद आपने क्या किया जब शादी हो गई थी और त्विशा उनके उनके घर चली गई थी? तो उसके पास दहेज को लेकर क्या कुछ बातचीत हुई, कुछ डिमांड्स आए सामने?
3: कोई ऐसा था कि पहले शुरुआत में थोड़ा सा ठीक चला था क्योंकि शुरू में तो आदमी अचानक से इतना अटैक नहीं करता है. इसका एटीट्यूड शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है, कि एक जो आदमी हनीमून पे जाते टाइम अपनी बीवी को किसी कारण से गुस्सा होकर के धक्का दे सकता है एयरपोर्ट पे. तो बेटिया ने रो करके बोला था कि हैव आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, अपने ब्रदर को फ़ोन करके पूछा उसने. ब्रदर ने बोला नहीं, कई बार आदमी थोड़ा सा इम्पल्सिव हो जाता है कुछ में, तो डोंट टेक इट सीरियसली, इग्नोर दैट. हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए थी. एक्चुअली बेटियाँ ना बहुत सारी चीज़ इग्नोर करती हैं कि अपनी शादी को बचाने के लिए, अपनी डिसीजन को कैरी ऑन करने के लिए. इट वाज ए केस ऑफ लाइक दैट. पर हम एंड में समझ चुके थे कि ये केस आगे चल नहीं पाएगी लाइफ, तो हम तैयार थे. हम बेटी को बुला रहे थे और हमने अपनी टिकट भी करा रखी थी, बेटिया की भी टिकट हुई, जो वो पहुँच नहीं पाई उस डेट तक, जीवित ही नहीं रह पाई.
4: त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी
3: जिसमें बेड़िया
4: जी
3: आती थी आना चाहती थी. सर ये एक
5: एक भेड़िए ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल, इन फ्रंट ऑफ द पीपल दे आर शोइंग देयर रिकॉर्ड, बट इनका अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें, इनकी पहली बहू भी, अगर बेटे पहले बड़े बेटे की बहू भी, वो भी हरासमेंट का केस डाइवोर्स करके जा चुकी थी। तो इनकी जो एटीट्यूड का है प्रॉब्लम, जो इनका एक जो प्रॉब्लम है वो आज से नहीं है, वो पहले से ही है, पर ये इसको ऐसे कैमेलियन ट्रीट करते थे।
6: लेकिन नवनीत जी, आपको आपको ये सब पहले पता नहीं था कि इनका क्रिमिनल माइंडसेट है, उनकी एक दूसरी बहू को डिवोर्स लेकर?
5: नहीं नहीं, पता नहीं था, पता नहीं था, बिल्कुल नहीं पता था। उसने आश्वासन दिलाया था लड़के ने लड़की को कि अगर ऐसी कोई मतलब तुमको तकलीफ होगी इस घर में रहने में, कोई भी परेशानी होगी, आई वी विल टेक इंडिपेंडेंट हाउस आउटसाइड दिस भोपाल और वी विल लिव आवर लाइफ फैमिली। मतलब बहुत सारे एश्योरेंस दिए गए थे जो बाद में वो पलट गया था।
6: आप मान रहे हैं कि आपकी गलती है नवनीति जी की, हनीमून में जो हुआ था, त्विशा को धक्का मारा समर्थ ने और आपने कुछ नहीं किया,
5: मानते हैं कि सर देखिए
6: जी,
5: इंडिकेशन पर ऐसा है कि कोई भी आदमी जब इतनी शादी करता है तो ये सोच के नहीं करता है कि अगर कोई आदमी एक गलती कर देगा तो तुरंत आपकी शादी कैंसिल कर देगा। आदमी यही कोशिश करता है, बिटिया लोग यही कोशिश करती हैं कि उनका सुहाग बचा रहे, यही हमारी हिंदू परंपरा है सर। बेटियां सुराग को बचाने के लिए बहुत सारा दुख दर्द सहन कर लेती हैं, बाद में बताती हैं अपने माँ बाप को, एकदम इमीडिएटली शेयर भी नहीं करती हैं बहुत सारी चीज़। अगर आज उसने चैट में जो शेयर किया है और जो उसने हमको वर्बली बोला है तो उसका 20% ही पार्ट समझिए आप उसका। तो शिवाज इन पेन, वो पर स्ट्रॉन्ग लेडी थी, उसने मेरे को बोला था पापा आई मेड ए रॉन्ग डिसीजन, मैं यहाँ से छोड़ के आऊँगी और हम लोग अपना बिजनेस करेंगे या जो भी है काम करेंगे एंड आई विल लीड माय लाइफ।
6: और जब जब त्विशा ने ये बोला था और त्विशा नोएडा वापस आना चाहती थी, ये आप जानते थे नवनीत जी, तो आपने उसे वहाँ से तुरंत निकाला क्यों नहीं फिर? ये एक बात नहीं थी, हनीमून के बाद भी काफ़ी सारे टेक्स्ट आए थे, कुछ इंसिडेंट्स हुए थे।
5: ऐसा नहीं, काफ़ी बात निकाला, पर यह था मैंने आपको बोला ना कि लड़की का मोटिव हमेशा पॉजिटिव साइड में होता है, लड़की का मोटिव कभी भी ऐसा नहीं होता कि छोटे मोटे या किसी ऐसी दुर्घटना को वो अपने सीने पर लगा करके संबंध तोड़ दे। संबंध तोड़ना लड़की के लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है सर उसकी लाइफ का। हाँ, वो अब धीरे इतना सहन करने के बाद वो इस स्टेज में पहुँच गई थी कि वो हमने निर्णय उसके ऊपर छोड़ा हुआ था, लड़की के ऊपर। मैंने कहा यू आर ट्राइंग, यू मस्ट नॉट ट्राई, हमने बोला था। बोले पापा आई एम ट्राइंग जस्ट लास्ट टाइम, और अब अगर मुझे नहीं मिला तो आई विल लीव, डेफिनेटली आई विल मेक ए फाइनल डिसीजन।
6: तो फिर अगर अगर
5: प्रोसेस है सर,
6: नवनीत जी, अगर त्विशा उनके मैरिटल होम को छोड़कर वापस आना चाहती थी आपके पास, तो फिर ये एक्सट्रीम स्टेप क्यों लिया उसने, आपके अंडरस्टैंडिंग में क्यों लिया उसने?
5: उसने जी मेरे, आप देखिए ना कि उसने एक्सट्रीम स्टेप लिया कि उसको मार दिया गया या बहुत डूबी है, संदिग्ध है। आज हम PM2 की डिमांड करी है हमने बहुत सीरियसली। अगर आज भी अगर आप देखो जो कोर्ट में जमानत मिली है उसमें पुलिस ने जो दलील दी है कोर्ट को, उसमें साफ साफ बोला है कि ये रसूखदार लोग हैं, ये केस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनके जो क्लोज रिलेटिव हैं वो यहाँ के लोकायुक्त हैं सत्येंद्र सिंह जी, इनके हाई कोर्ट में जजेस हैं, इनके लोग हर जुडिशरी में जगह जगह बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हैं, इन्हीं के लोग मेडिकल में बैठे हैं। पूरी फैब्रिकेटेड रिपोर्ट है जो पहली PM रिपोर्ट आई है जो कि फाइंडिंग से मिसमैच कर रही है, इसलिए हमने PM2 की डिमांड की थी, जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अप्रूव करने के बाद में कि आपका जो है तुरंत बॉडी भेजी जाए PM2 के लिए, वो रिजेक्ट कर दी गई और अंडर इसी जुडिशरी के लिए डाल दी गई अप्रूवल के लिए। इट मीन्स जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। अगर वो बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, साक्ष्य खत्म हो जाते हैं, तो इस न्याय प्रक्रिया का कोई भी फायदा नहीं है।
6: नवनीत जी, त्विशा का बॉडी अभी भी मॉर्चुरी में है,
5: स्ट्रॉन्ग है।
6: आपका डिमांड है कि PM2
5: अभी भी मॉर्चुरी में, अभी भी मॉर्चुरी में
6: पोस्टमार्टम हो जाए, समर्थ अभी
5: अब्सकॉर्ड नहीं है। मैं तो मेरा रिक्वेस्ट है
6: नवनीति जी, समर्थ कहाँ है, उसका बेल डिनाई हो चुका है अभी।
5: ये तो पुलिस से पूछना चाहिए सर, समर्थ इन रसूखदार लोगों के घर पर ही मिलेगा, कहाँ मिलेगा सर, इनको देखना चाहिए। आज पुलिस उसको कस्टडी में नहीं ले पाती है तो ये पुलिस का फेलियर है ना सर।
6: 12th मई की रात 10 बजे आखिरी बात हुई त्विशा से,
5: सर ये बहुत
6: जी, उस वक्त क्या कहा उसने, कोई परेशानी बताई थी उस
5: रात? रिक्वेस्ट है सर, सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे सर, इस केस को अगर मेरे को आपको न्याय दिलाना है तो मेरे लिए प्लीज आवाज़ उठाइए, इस बॉडी को डिस्ट्रॉय होने से बचाइए, डिकम्पोज होने से बचाइए, इसको तुरंत PM2 के लिए दिल्ली भिजवाइए, प्लस सर इसकी स्वतंत्र जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी,
6: वो तो NDTV करेगी और कर रही है सर।
5: आप सोचते हैं सर कि ऐसे इसमें मुझे कोई न्याय मिल रहा है? जी जी सर,
6: नहीं, हम तो लगातार करेंगे
5: ऐसी न्याय प्रक्रिया में। आप में विक्टिम का बाप होकर के सर, विक्टिम का बाप हो, मैं खुद विक्टिमाइज हो रहा हूँ आपके जुडिशियल सिस्टम में सर, मैं कैसे सरवाइव करूंगा एक दूसरी जगह?
6: नवनिधि जी, मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ, मैं आपको वादा देता हूँ, अभी नेशनल टेलीविजन पर मैं आपको वादा दे रहा हूँ कि NDTV आपके साथ खड़ा है और जस्टिस लाने तक हम इस स्टोरी को रिपोर्ट करेंगे। इसलिए मैं आपको नेशनल TV 9 PM NDTV न्यूज़ पर आपको लाइव ले रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या पहले कभी त्विशा ने अपने इन-लॉज की मारपीट या जुल्म की बात की थी आपसे? कोई पुरानी शिकायत कुछ भी था हनीमून के बाद, ऐसा कुछ भी सामने आया था?
5: बहुत पुरानी शिकायत है सर, हमने उसके व्हाट्सएप चैट्स हैं जो हमने आज कोर्ट में सरेंडर किए हैं साक्ष्य के रूप में, जो मौखिक बात होती है सर वो होती है, पर वो एक इस तरीके का पूरा जो एक सीक्वेंस चला है कि उस लड़की ने सोचा कि ये कैसे भी चेंज हो जाए, ये ऐसी बात ना करें, उसने एक प्रोसेस को झेला है सर, वो बाद में एंड तक उसको प्रोसेस को झेलती रही है सर, वो व्हाट्सएप चैट हमने सबमिट करी है कोर्ट में सर।
6: आपको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं नवनिधि जी, ऐसे आपने बताया है मीडिया को, आपको आपका कहना है कि सबूत मिटाए गए, ये आरोप आप किस चीज के आधार पे लगा रहे हैं? आपको थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं, आप
5: ये बिल्कुल बिल्कुल इस जी मेरे, हमको कोर्ट परिसर में हमको अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस बुलवानी पड़ गई, क्योंकि कोर्ट परिसर में हमारे ऊपर अटैक हुआ, दो बार हमको अटैक किया गया, ये बहुत सारे हमको परेशानी हुई है, और यहाँ पर हम अकेले सर, हमारा कोई नहीं है, आज कोई यहाँ पर लॉयर खड़ा नहीं हो सकता इनके सामने, यही तो लोग हैं, इनके खिलाफ कौन खड़ा होगा सर, यहाँ पर ये सिस्टम के खिलाफ कौन खड़ा होगा सर? आप देख रहे हैं ना कि अप्रूवल देने के बाद में जुडिशरी में डाल दिया गया PM2 का अप्रूवल सर, इट मींस जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड सर, और आज जो बेल मिली है सर, किस बिना पर बेल मिली है, इसमें पुलिस ने दलील दी कि ये लोग बहुत रसूख वाले लोग हैं, पुलिस ने बोला सर, और ये साक्षियों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, ये पुलिस का कहना है, मेरा भी कहना नहीं है सर।
6: नवनिधि जी,
5: पहले वाले अक्यूज को छोड़ दिया गया,
6: गिरिबाला सिंह एक रिटायर्ड जज हैं, क्या आपको लगता है इसलिए पुलिस ने पहले इन्वेस्टिगेशन में डिले किया है?
5: जी जी सर, रिटायर्ड जज भी हैं, आज भी वो प्रेजेंट में भी कंज्यूमर फोरम की हेड हैं, हटाई नहीं गई हैं सर, आज भी वो रन कर रही हैं ऑफिस, अगर कोई आदमी ऑफिस रन कर रहा है उसके खिलाफ आदमी कैसे खड़ा हो सकता है? यहाँ वकील लॉबी नहीं खड़ी हुई, हमें यहाँ वकील नहीं मिले सर, वी आर इन अ वेरी डेंजरस एंड प्रिकेरियस सिचुएशन सर, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
6: नो, NDTV इज विद यू, दैट्स व्हाई यू आर लाइव।
5: मुझे मैं को ये नहीं प्रूव करना या सर,
6: नवनिधि जी, वी अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी इज वाचिंग यू राइट नाउ,
5: वी आर अंडर वेरी मच प्रेशर।
6: यस यस
5: सर, सर
6: आई वांट टू आस्क यू टू मोर क्वेश्चंस।
5: दिया जाता प्रेशर ऐसे दिया जाता है, FIR लॉज नहीं हो रही थी 3 दिन तक सर,
6: बिल्कुल बिल्कुल,
5: यहाँ पर 5 दिन के बाद FIR लॉज हो रही है,
6: नवनीति जी
5: की प्रताड़ना हो रही है, ये सब क्या दिखा रहा है सर? CM हाउस में प्रोटेस्ट किया, CM ने हमें 1 मिनट का समय नहीं दिया मिलने का सर,
6: और आपका
5: CM ने हमारे को कोई आश्वासन नहीं दिया सर किसी भी काम का।
6: आपका बेटा एक सर्विंग आर्मी ऑफिसर भी है, मेरी बात हुई है उनसे भी, और मुझे पता चल गया कि कितना काम करना पड़ा एक FIR लॉज करने के लिए, लेकिन एम्स में अभी भी नवनीति जी त्विशा का बॉडी पड़ी रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, और दूसरा पोस्टमार्टम क्यों मांग रहे हैं आप स्पेसिफिकली?
5: जी स्पेसिफिकली सर मैं बताऊं, उसमें जो फैक्ट्स लिखे गए हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं सर बिल्कुल भी, उसमें बहुत सारी चीजें जो मैच नहीं कर रही हैं, जो हमारी फेंडिंग्स आ रही हैं उसमें बहुत सारी चीजें मैच ही नहीं कर रही हैं सर, उसमें पूरा ये कैकस निकल के आएगा सर, मैं तो कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा जो है आपको वॉम ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको जवाब देना पड़ जाएगा इसमें, इसलिए ये PM2 की रिपोर्ट जुडिशरी में डाली गई है कि अप्रूवल ड्यूरी, ताकि ये तो अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको डिले करके, इसको डिकेइंग प्रोसेस में डाल करके, डिकम्पोज करके इसको सत्य को छुपाया जा रहा है।
6: आखिरी सवाल नवनिधि जी, आप मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर धरना दे रहे हैं, अब आपकी सरकार से एक ही मांग क्या है? आपने बोला है कि उन्होंने आपको कोई भी अश्योरेंस नहीं दिया है, तो क्या मांग रहे हैं आप उनसे?
5: हम मिलने का समय नहीं दिया सर, मिलने का समय नहीं दिया, एक मिनट के लिए नहीं मिले वो हमसे, कोई अश्योरेंस नहीं आया सर हमारे पास में। और ये मुझे लगता है कि असमर्थता व्यक्त करी, या उनके लिए ये केस कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, दूसरी चीज़ें प्रायोरिटीज़ में हैं उनके। एक गरीब आदमी की बेटी मर जाए तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
6: ओके, नवनिधि शर्मा, हम आपके साथ खड़े हैं, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
4: Now I want to show you what the mother-in-law of Twisha Sharma, a retired judge, by the way, named Giribala Singh, has said about Twisha. She held a press conference and I'll show you some clips of what she said. But this is what she's basically said. She said, Puja Paath was just a show. She basically is saying that her daughter-in-law was an imposter and a liar, that Twisha took an abortion pill, that Twisha consumed large amounts of marijuana, that Twisha called Samarth and told him she had taken a pill, that Twisha visited a psychiatrist and attended counseling as well, that there was psychological pressure from the glamour world because she was a model, a beauty queen, as well as someone who tried to get into the film industry. Twisha had shivering hands and withdrawal symptoms suggesting that she was a drug addict. This is what the mother-in-law is alleging. And that Twisha was taking Ulcer Pram medicine, and that her behavior kept changing after her Delhi visit. Young women take extreme steps easily, says the mother-in-law. No FIR has been lodged yet. The husband, the son of the woman you're about to hear, is still absconding. Here's what she's saying.
7: When we had gone to Kakoli Roy ji ke paas hum log saath ko gaye the, jab wo chah rahe the wo first day ki pregnancy ko reverse kare, तो वो बार बार वो पूछ रही थी व्हाई डू यू वांट दिस और आपने ये कदम क्यों उठाया। तब उसने मेरे सामने कहा आई हैव कंज्यूम्ड लार्ज क्वांटिटीज मारुआना। उनके सामने उसने कबूल किया मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है। शी वाज ऑन शिजोफ्रेनिक ड्रग्स। अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक शिजोफ्रेनिक के अंदर दो लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफ्रेंशिएट हो सकता है। उसका था आई नीड माई स्पेस, मुझे दूरी भी चाहिए, मेरे मायके वाले मुझे डिसओन किए हैं, और मायके वालों के लिए तो इतना बताती थी कि हमको बहुत कम उम्र से उन्होंने धकेल दिया इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री, कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी।
4: एंड जॉइनिंग मी लाइव नाउ इज माधुरी पटेल। शी इज अ फ्रेंड ऑफ त्विशा शर्मास। She was also training for Miss India in 2013. That's where she got to know Twisha. She's a Mrs. Universe from 2023. And from the beauty world, she became friends with Twisha. Madhuri, thank you for agreeing to speak to us tonight here on NDTV. Your first thoughts, your first reaction when you heard about Twisha Sharma's death. Madhuri, welcome.
8: Thank you for inviting me. My first thought when I saw this news was I was shocked to the core, because the Twisha I knew was a very strong, independent girl. The Twisha I knew was somebody who will never take such kind of step. So it was very, very shocking to me, and because we met at such a young age and for similar motive in 2013, what is going on in the news didn't make any sense. So maybe we want unbiased investigation in this particular situation, because there has been, I just saw her mother-in-law's
4: yes.
8: statement, and that's so insensitive. Somebody has just died. We have a proof. See, she's saying she went to psychologist or psychiatrist. But are you not the reason she went for that? I mean, that still proves that they are the one who are doing something. That's why she has to go there. Now, there is no, schizophrenia is such a disease. If somebody has it, they have different personalities. We have known each other for a long period of time. I never seen her having any kind of schizophrenic.
4: Were you in touch with Twisha Madhuri? Were you in touch with her?
8: Sir, I was in touch with her until 2018-19. After that, life goes on. I shifted to different cities and the countries. So I lost touch. But I met her when we were very young. We were in our early 20s. We were connected on socials, not that much, but we were. I knew what kind of girl she is. She was, sorry. And what right now is happening in our country, what her parents are asking is a simple thing, sir. They are only asking to have a fair investigation done. You know the nature of smaller cities, how they are. If you are a bigger person in a smaller city, you are in a way considered a god, you know.
4: Yeah.
8: And to the in the position their in-laws are, and they are well connected, you exactly know how corrupt our country is, how the ground zero investigation can impact the justice for Twisha. So what they are asking is the fair investigation. They want her body to come to Delhi.
4: Yeah.
8: I'm learning everything through the news. From last 2 days, I'm not able to sleep peacefully. Her image, her face is coming in my mind all the time.
4: And you know, Madhuri, today,
8: and, yes.
4: Since NDTV first reported this story 2 days ago, the fact is the entire media has woken up to it now. Twisha's body is still in the morgue right now. For, you know, the last 1 week, her body has been in the morgue. Her parents have been protesting outside the chief minister's office. They want a second post-mortem and a fair investigation. They don't believe, like you rightly said, they don't believe that a fair investigation will happen in Bhopal. And most important of all, Madhuri, is that her husband is absconding. What do you think of that? Her husband is absconding. The police is looking for him right now while the entire media is reporting this story.
8: Exactly the question. Why is he absconding? Why is he not there? If he is really, he has done nothing, why is he not there to actually answer the questions? That also raises the suspicion. Also, the dowry case, the demand, see, we think,